ज्ञान रतन मन मांझिए, बहुड़ना मैला होए, जब लग साहिब मन वसे, तब लग बिघन न होए, नानक सिर दे छुटिए, मन तन साचा सोए, मारू मैला पहला, जोगी जुगत नाम निर्माइल, ताके मैल न राती, प्रीतम नाथ सदा सच संगे, जन्म मरण गत बीती।

ज्ञान स्नानी हर गुण पूजे पाती, एको नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति, जिहवा डंडी एव कट छाबा तोलो नाम अजाची, एको हाथ साओ सबना सिर वनजारे एक पाती, दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूजे जिस एक लिव लागी, जियो रह निबराती, शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती, ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी, गुर बचनी बाहर कर एको नानक पया उदासी। राग मारू मैला पहला कर पंज

जियो जिसनु साचा सिफती लाए गुरमुख विरले किसे बुझाए अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो रहाओ फिर सेती तन प्रेम रचाए गुर के शब्द तथा चित लाए सहज सेती तन खरी सुहेली तृष्णा तिखा निवारी जियो सहसा तोड़े परम चुकाए सहजे सिफती तनख चढ़ाए गुर के शब्द मरे मन मारे सुंदर जोगा तारी जियो हौ मैं जलिया मनो विसारे।

बाबा देहे वसा सच गावा, जाते सहजे सहज समावा राव, बुरा पला किछ आपस ते जानिया, ए सगल विकारा हे फुरमाया खसम का हुआ, वरते एहो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है, इंद्री किस्ते होई आपे खेल करे सब करता, ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लिव लागी, दुबदा तदे विनाशी ज्योतिष पाना सो सत्कर्मान्या, काटी जम की फांसी पणत नानक लेखा मांगे कवना, जाचू का मन अभिमाना तास तास धर्म राय जप्त है, तय सच्चे की सरना मारू मैला तीजा, आवन जाना नाथी है निज करवासा होए, सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए, ए मन हर जियो चेत तू मनो तज विकार, गुर के शब्द ते आए तू सच लगी प्यार, रहाओ एथे नावो पुल्या फिर हथ किताऊ ना पाए, जोनी सब पुआयन बिष्टा माए समाए, वड पागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए, आंदिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मिलाए, आपे सृष्ट सब साजियन आपे नदर करे, नानक नाम वडियाया जय पावे तेंदे, मारू मैला तीजा पिछले गुने बख्साए जियो अब तू मार्ग पाए, हर की चरणी लाग रहा विच्चों आप गवाए, मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए, सदा हर चरणी लाग रहा एक मन एक है भाई रहाओ, ना मैं जात ना पत है ना मैं त्यो न थाओ, शब्द भेद प्रम कटिया गुरु नाम दिया समझाए, यो मन लालच करदा फिरे लालच लागा जाए, तंदे पूर्व आप्या जमपुर चोटा खाए, नानक सब किछ आपे आप है दूजा नाही कोए, भगत खजाना बख्शियों गुरमुखा सुख होए, मारू मैला तीजा सच रते से टोल लो से विरले संसार, तिन मिलिया मुख उजला जप नाम मुरार, बाबा साचा साहिब हृदय समाल, सतगुर अपना पुछ देख लेहो वखर पाल रहाओ, एक सच्चा सब सेम दी तुर पाग मिलावा होए, गुरमुख मिले से ना विछड़े पावे सच सोए, एक पगती सार न जाननी मनमुख परम पुलाए, ओना विच आप वर्तदा करना किछु न जाए, जिस नाल जोर न चले खले की चै अरदास, नानक गुरमुख नाम मन वसै ता सुन करे साबास, मारू मैला तीजा मारू ते शीतल करे मनूरों कंचन होए, सो साचा साला ही है तिस जेवर अवर न कोए, मेरे मन अंदिन त्याए हर नाओ, सतगुर के बचन अराध तू अंदिन गुण गाओ, रहाओ गुरमुख एक को जानिए जा सतगुर दे बुझा।

सतगुरु प्रसाद जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर शरण परे दालद पंच सुदा में मिलियो भगती पाए तरे भगत वचल हर नाम कीर्तारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदे त्रू प्रहलाद बिदर दासी सुत गुरमुख नाम तरे रहाओ कल युग नाम प्रदान पदार्थ भगत जना उदरे नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दोख गए चमरे गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किलबिक पाप तरे जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे बेसुआ रवत अजामल उदरियो मुख बोले नारायण नर हरे नाम जपत उग्र सैन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे जन को आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उदरे जन नानक हर कृपा धारी उर्धरयो नाम हरे मारू महला चौथा सिद्ध समाध जप्यो लिव लाई साधक मुन जपिया जति सती संतोखी त्याया मुख इंद्रादिक रविया शरण परे जप्यो ते पाए गुरमुख पार पया मेरे मन नाम जपत करया तन्ना जट बाल्मीक बटवारा गुरमुख पार पया रहाओ सुर नर गण गंधर्वे जप्यो रिख बपुरे हर गाया शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो मुख हर हर नाम जपया हर हर नाम जिना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत न पाया वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडत हर गाया नाम रसाल जिना मन वस्या ते गुरमुख पार पया अनत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया गुर तार कृपा हर नाम दृढ़ायो जन नानक नाम लया।

कर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा। हर भाव लगा बैरागिया वडपागी हर मन राख, मिल संगत सरदा उपजै गुर शब्दी हर रस चाख। सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख, मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख। गुरपुरे हर पाया हलत पलत पत राख, रहाओ हर हर नाम त्याये हर कीरत गुरमुख चाख। तन तरती हर बीजिए विच संगत हर प्रव राख, अमृत हर हर नाम है गुरपुरे हर रस चाख। मन मुख तृष्णा पर रहे मन आशा देह दिस बहुलाख, बिन नामे त्रिग जीव दे विच बिस्ता मन।

हर हृदय सदा सदा समाली। हर हर नाम जपो मेरे जीड़े, जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ। सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर दिलो पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो। नवे छिद्र स्रवें अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जियो। माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सत गुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लंगावे जियो। तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे। सब किल विकाटे हर तेरे, हर तन राखो हर तन संचो। हर चलदिया नाल सखाई जियो, जिसनो कृपा करे सो त्यावे। नित हर जप जापे, जप हर सुख पावे। गुर प्रसादी हर रस पावे, जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ। निर्भव निरंकार सतनाम, जग में श्रेष्ठ उत्तम काम। दुश्मन दूत जम काल ठे मारो, हर सेवक नेर ना जाई जियो। जिस ऊपर हर का मन मानिया, सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया। जे उसका बुरा कहे कोई पापी, तिस जम कंकर खाई जियो। सब में एक निरंजन करता, सब कर कर वेखे अपने चलता। जिस हर राखे तिस कौन मारे, जिस करता आप छड़ाई जियो। हौं अंदिन नाम लई करतारे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे। दस अठ चार वेद सब पूछो, जन नानक नाम छड़ाई जियो। मारू मैला पंजवा, कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद, डर पे तरत आकाश नखत्रा। सिर ऊपर अमर करारा, पौन पानी बैसंतर डर पे इंद्र विचारा। एका निरपव बात सुनी, सो सुखिया सो सदा सुहेला। जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ, दे तार अर देवा डर पे। सिद्ध साधक डर मोया, लख चौरासी मर मर जन में फिर जोनी जोया। राजस सातक तामस डर पे, केते रूप उपाया। छल बपुरी ए कौला डर पे, अत डर पे धर्म राया। सगल समग्री डरे व्यापी, बिन डर करने हारा। कहो नानक भगतन का संगी, भगत सो है दरबारा। मारू महला पंजवा, पांच बरख को अनाथ त्रू बारिक। हर सिमरत अमर अटारे, पुत्र हेत नारायण कहो। जम कंकर मार बिदारे, मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे। मोहे दीन अल्प मत निर्गुण, परयो शरण द्वारे रहाओ। बाल्मीक सुपचारो तरयो, बद्धिक तरे बिचारे। एक निमख मन माहे अराद्यो, गजपत पार उतारे। कीनी रखिया भगत प्रहलादे, हर नाखस नखे बिदारे। बिदर दासी सुत पयो पुनीता, सगले कुल उजारे। कवन पराध बतावो अपने, मिथ्या मोह मगनारे। आयो साम नानक ओट हर की, लीजे पूजा पसारे। मारू महला पंजवा, वित्त न वित्त प्रमयो बहु पांते। अनक जत

ए विद खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए। तुम दातार बड़े प्रभ समरथ मांगन को दान आए। त्याग्यो सगला मान मैता दास रेण शरणाए। कहो नानक हर मिल पए कै महा आनंद सुख पाए। मारू मैला पंजवा कवन थान तीरो है नामा कवन बस्त अंकारा कवन चेहन सुन ऊपर छोयो।

ठाकुर तिस्ते मुख नहीं मोरे हो। सहज आनंद रखियो गृह पीतर उठ उआ हूँ कौ दौरे हो। आज्ञा में पूख सोई कर सूखा सो घर नहीं जाने हो। जो जो हुक्म पयो साहिब का सो माथे ले माने हो। पयो किरपाल ठाकुर सेवक का सवरे हल्त पलाता तन सेवक सफल उह आया। जिन नानक खसम पछाता मारू मैला पंजवा खुलिया कर्म कृपा पई ठाकुर कीर्तन हर हर गाई। श्रम था का पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई। अब मोह जीवन पदवी पाई चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई राव। काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बैराई। सद हजूर हाजर है नाजर कतै न पयो दुराई। सुख शीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाई। पावन पतत किए खिन पीतर मैं मां कथन न जाई। निरपो पय सगल पै खोए गोविंद चरण उठाई। नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिन सुलिवलाई। मारू मैला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक तिसको कबू न गाव सिरे। छोड़ जाए खिन पीतर ताको हुआ को फिर तावसरे। अपने प्रभु को क्यों ना समार सने बैरी संग रंग रस रचिया।

प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसार्यो अज्ञानथ। होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म अकारथ। रे नर ऐसी करें इआनथ तज सारंग तर परम तू पूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ। रहाओ तरणी तर त्याग नीच कुल सेवें हौ हौ करत बिहावथ। फोकट कर्म करें अज्ञानी मनमुख अंध कहावथ। सत होता असत कर्मा।

सूद वै सब एक है नाम तरानत, गुरु नानक उपदेश कहत है, जो सुने सो पार परानत, मारू मैला पंजवा, गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए, विसार हर जियो बिखे पोगे तपत थम गल लाए, रे नर काए पर ग्रह जाए, कुचल कठोर काम गर्दव तुम, नहीं सुनियो तर्म राय रहाओ, विकार पाथर गले बांधे, निंद पोट सिराए, महासागर समुद्र लंगना पार न पर ना जाए, काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो, नेत्र रखे फिराए, शीस उठावन न कबहू मिले, महादुत्तर माए, सूर मुक्ता शशि मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए, स्वभावत जैसे बैसंतर अल्पत, सदा निर्मलाए, जिस कर्म खुलिया तिस लया पर्दा, जिन गुर पै मनिया सुभाए, गुर मंत्र अवखद नाम दीना, जन नानक संकट जोन न पाए, रे नर इन बिद पार पराए, त्याए हर जियो होए।

आया था। अनुपौ अचरज रूप प्रपेखिया, मेरा मन छोड़ न कतहु जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था, मोल अमोल न पाया जाई। कर कृपा गुरु दिवाया था रहाओ, अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्यो, तैं अमृत नाम चुआया था। तोट नाही मन तृष्णा बूझी, अखुट पंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे, अकड़ कड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खेलाया था। कहो नानक परम गुरु।

ताओ लागा गोविंद स्यों काल पाई खाए, खेत मेरे जमिया निखुट न कबू जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ न कतू जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आधाए। मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने तयो प्रगास।

जिन गुरु मिल हर हर गाया, ऊंच मूंच अपार स्वामी अगम दरबारा, नामो वडियाई सोबा नानक खसम त्या।

जिस होवै भाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नह आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंत न पारा वारा जन नानक सद बलिहारा।

मात गर्भ में जिन प्रत पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया। कोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब टकिए। चरण कमल उर अंतर तारो, दिखिया बनते जियो उधारो। करण पला मिटे बिल्लाटा, जप गोविंद परम पौ फाटा। साध संग बिरला को पाए, नानक ताके बल बल जाए। राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरे तिसका निस्तारा रहाओ। मिथ्या वस्त सत्य पर मानी, हित लायो सठ मूर अज्ञानी। काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता। अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता। कृष्ण ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला। आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला। पाए ठगोरी आप बुलायो, नानक कीर्त ना जा।

आई प्रभु विसरत नरक में पाया तें मात ना बंद ना मीत ना जाया जिसको होत कृपाल स्वामी सो जन नानक पार गिरामी प्रमत प्रमत प्रभु सरनी आया दीना नाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस ही निस्तारण अंधकूप से काडनहारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन तारिया मां अगन ते आत उबारिया जप तप संजम इस्ते किछ नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही नाम दे मांगे दास तेरा हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा मारू महला पंजवा कत को डह कावो।

का आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई अपने को कृपा करियो इस नाम से आई नानक दीन नाम मांगे दुखिया परम चुकाई मारू मैला पंजवा मेरा ठाकुर अप

तारन बल बल बले बल जाय। ऐसा कोई पेट है संत जित हर हरे हर प्याय। मोको कोई न जानत कहियत दास तुम्हारा, यह ओट आधारा।

अतल अथयो देवा मोहन अलख अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू मेला पंजवा तृप्त अघाए संता गुरजाने जिन मंता ताकि किस कह न जाई जा को नाम बढ़ाई लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो राव अवगत सो मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो तेखत सगल त्यानो तजियो मन ते अभिमानो ने चल तिनका ठाणा गुर ते मैल पछाणा आन दिन गुर मिल जागे हर की सेवा लागे पूरन तृप्त अथाए सह समाज सुभाए हर पंडार हाथ आया नानक गुर ते पाया मारू मैला पंजवा कर छीवा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियान पा मिल साध त्याग गुमान और सब किछ मिथ्या रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम मिटे अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपुरो जाम राव दुख दीन ना पाओ बिना पे मिले सुख विश्राम गुर प्रसाद नानक बखाने हर भजन तत् ज्ञान मारू मैला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे के पुत्र मित्र विलास बनता टूटते एहने मेरे मन नाम नित नित लेहे जलत नाही अगन सागर सुख मन तन देहे राव देख छाया जैसे बिन सत पवन चूलत में हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरे काम आवत एहे मारू मैला पंजवा पुरख पूरन सुखे दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिन सह व्यापत उसन नसी।

नाम इक रस रंग नामा नाम लागी लियो नीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो मारू मैला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखे लगन देत न

सूर सगले तेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू मैला पंजवा। पतित पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ महापौजल।

हुआ। पंच तात कर पुतला किया, साहे कै फुरमायड़े जी देही विच जियो आए पया। जिथे अगन पखे परहारे, उरद मुख मां गुबारे, सास सास समाले सोई, उठे खसम छड़ाए लया। विच्चों गर्भे निकल आया, खसम विसार दुनी चितलाया, आवे जाए पुवाये जोनी, रहन न कितनी खाए बया। मेरवा रख लेन आपे, जी जंग सब किसके थापे, जन्म पदार्थ जिन चलिया, नानक आया सो परवान थिया। मारू मैं

तुमरो प्रदान है। कटकटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थाने, आवे न जावे संगे समावे पूरन जाता काम है। भगत जना का राखना आरा संत जीवे जब प्रा

हर को नाम सदा सुखदाई, जा को सिमर अजामल उद्रियो, गनताहू गत पाई रहाओ। पंचाली को राजसभा में दाम नाम सुधियाई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जे नर जस कृपा निदगायो, ताको पयो सहाई, कहो नानक में यही प्रोस है, गही आम शरणाई।

काल फास जब घर में मेली ते सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट में को अब हो सहाय जो संपत अपनी कर मानी छिन में पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जग सब न गाई मारू मैला नामा माई में मन को मान न त्यागो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो राव जम को दंड पड़ो सिर ऊपर तब सोवत कह जाग्यो कहाँ होत अब कह पछताए छूटत नाहीं भाग्यो ए चिंता उपजी कट में जब गुर चरणन अनुरागियो सुफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभु जस में पाग्यो मारू अच्छा।

हर सच्ची रख बहु कहा प्रम था के देखा साचो साहिब निर्मलो मन माने एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख पारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए गुरमति नाम उधारा गुरपूर पूरी मत है पूरे शब्द विचारा अठहठ तीर्थ हर नाम है किल विस्का तनहारा जल बिलोवे जल मत है तत लोड़े अंध ज्ञाना गुरमति जद मच्छी है अमृत पाये नाम निदाना मन मुख तत न जाननी पशु माए समाना हो मैं मेरा मरी मर मर जम मैं वारो वार गुर कै शब्दे जे मरे फिर मरे न दूजी वार गुरमति जग जीवन मन वसे सब कुल उदाहरण हार सच्चा वखर नाम है सच्चा वापारा लाहा नाम संसार है गुरमति विचारा दूजे पाए कार कमावनी नित तोता है सारा साची संगत थान सचे सच्चे करवारा सच्चा पोजन पाओ सच सच नाम अधारा सच्ची बाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा रस भोगन पाप साइया दुख सुख संगारा मोटा नाव तराइए गल औगुण पारा मानस दात न होवई तू दाता सारा अगम अगोचर तू तनी अवगत अपारा गुर शब्दी दर जोई है मुक्ते पंडारा नानक मेल न चूकई साके वापारा मारू मैला पहला बिख बोयथा ला दिया दिया समुंद मंझार कंदी दिस ना आवई ना उरवार न पार वंजी हाथ न केवटू जल सागर सराल बाबा जग पाथा महाजाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल रहाओ सतगुरु है बोए था शब्द लंगावन हार सिखे पवन न पाव को ना जल ना आकार सिखे सच्चा सच नाए पव जल तारण हार गुरमुख

आवागौन निवारया ज्योति ज्योत मिलाए, गुरमति सहज उपजे सच्चे रह समाए। सप पिड़ाई पाये दिख अंतर मन रोस, पूरब लिखिया पाये किसनो दी जय दोष। गुरमुख गारण जे सुने मने नाव संतोख, मागर मच्छ पाये कुंडी जाल बताए। गुरमत फाखा पाये फिर पछोताए, जमन मरण न सुजई कीर्तना मेटा जाए। हों मैं बिख पाए जगत उपाया, शब्द वसै बिख जाए। जरा जोय ना सकई सच रहे लिवलाए, जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हो मैं जाए। तंदे तामत जग बांदिया ना बूझे विचार, जमन मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गवार। गुरु राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार, सुहट पिंजर प्रेम के बोले बोलन हार। सच चुगे अमृत पिए उडे ताए कावार, गुर मिले खसम पछाणिए कहो नानक मोख द्वार। मारू मैला पहला शब्द मरे ता मार मरे, पागो किस तै जाओ जिस तै डर तै पागी है अमृत ता को नाओ। मारे राखे एक तू दीजो नाई खाओ, बाबा मैं कुचील काचो मत हीन। नाम बिना को कछ नहीं गुरपुर है पूरी मत कीन। रहाओ अवगण सुगर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज शब्द सुख उपजे बिन पागा तन नाहे, जिनके नाम ना मनवसे से बांधे दुख सहाए। जिन्नी नाम विसारिया से कित आए संसार, आगे पाछे

फूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए, गुरबिन दाता को नहीं कीमत कह न जाए। साजन देखा ता गल मिला साज पठायो लेख, मुख तिमाने तन खरी गुरमुख आखी देख। खुद पावे तू मन वसे नदरी कर्म विशेख, भूख प्यासे जे पवे क्या तिस मांगो दे। बीजे सूजे को नहीं मन तन पूरन दे, जिनकी आतिन देखिया आप वडाई दे। नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप, नार ना पुरख ना पंखनु साचो चतुर स्वरूप। जो तिस पावे सोती है तू दीपक तू धूप, गीत साध चाखे सुने बाद साध तन रोग। सच पावे साचो चवे छूटे सोग विजोग, नानक नाम ना विसरे जो तिस पावे सो होग। मारू मैला पैला साची कार कमावनी होर लालच बाद, इह मन साचे मोहया जेवा सत्साद। बिन नामे को रस नहीं होर चले दिखलाद, ऐसा लाला मेरे लाल को सुन खत्म हमारे। ज्यों फुरमावे त्यों चला सच लाल प्यारे राव। हम दिन लाले चाकरी गोले सिर मीरा, गुरबचनी मन वेचिया शब्द मन तीरा। गुर पूरे साबास है काटे मन पीरा, लाला गोला तनी को क्या कहो वड्याई है। ताने बक्से पूरा तनी सत्कार कमाई है, विछुड़िया को मेल ले गुर को बल जाई है। लाले गोले मत खरी गुर की मतनी की, साची सुरत सुहावनी मनमुख मत पी की। मन तन तेरा तू प्रभु सच तीरथ पुर की, साचे बैसन उठना सच भोजन पाखिया। चित सच्चे वित्तो सच्चा साचा रस चाखिया, साचे कर साचे रखे गुरबचन सुवाखिया। मन मुख को आलस करो साचे उजाड़ी, साथा चुगे नित जोगड़ी लग बंद बिगाड़ी। गुर प्रसादी मुक्त होए साचे निज तारी, अनहत लाला बेदिया प्रभेत प्यारी। बिन साचे जियो जल बलो झूठे वेकारी, बाद कारा सब छोड़िया साची तरकारी। जिन्नी नाम विसारिया तिन्ना ठोर न ठाओ, लाले लालच त्यागिया पाया हर नाओ। तू बख्शे ता मेल ले नानक बल जाओ। मारू मैला पैला लाले गारव छोड़िया गुर के पैसे तुभाई, लाले खसम पछाणिया वड्डी वड्याई। खसम मिले सुख पाया कीमत कह न जाए, लाला गोला खसम का खसम वड्याई। गुर प्रसादी उबरे हर की शरणाई रहाओ, लाले नो सिरकार है उर खत्म फुरमाई। लाले हुकम पछाणिया सदा रह रजाई, आपे मीरा बक्सले वड्डी वड्याई। आप सच्चा सब सच है गुर शब्द बुझाई, तेरी सेवा सो करे जिसनो लह तू लाई। बिन सेवा किने न पाया दूजे परम खुआई, सो क्यों मनो विसारी है नित देवे चले सलाया। जियो पिंड सब तिसदा साओ तिने विक पाया, जा कृपा करे ता सेवी है सेव सच समाया। लाला सो जीवत मरे मर विच्चों आप गवाए, बंधन टूटे मुक्त होए तृष्णा अग्न बुझाए। सब में नाम निदान है गुरमुख को पाए, लाले विच गुण किस नहीं लाला अवगणियार। तुझ जेवर दाता को नहीं तू बख्शनहार, तेरा हुक्म लाला मन्ने के करनी सार। गुर सागर अमृत सर जो इच्छे सो फल पाए, नाम पदार्थ अमर है हृदय मन वसाए। गुर सेवा सदा सुख है जिसनो हुक्म मनाए,
सोइना रूपा सब तात है माटी रल जाई। बिन नावे नाल न चलई सतगुर बूझ बुझाई। नानक नाम रते से निर्मले साचे रहे समाई। मारू मैला पहला हुक्म पया रहना नहीं तुर फाटे चीर है। तेहो मन अवगुण बांधया सो दे शरीर है। पूरे गुर बख्शाई है सब गुने फकीर है। क्यों रही है उठ चलना बुद्ध शब्द बिचारा। जिस तू मेले सो मिले तुर हुक्मा पारा रहा। जो तू राखे त्यों रहा जो दे सो खाओ। जो तू चलावे त्यों चला मुख अमृत नाओ। मेरे ठाकुर हथ वड्याईया मेले मन चाओ। कीता क्या साला ये कर देखे सोई। जिनकी आसो मनोसे मैं अवर न कोई। सो साचा साला ये साची पत होई। पंडित पढ़ न पहुंचई बहु आल जंजाला। पाप पुन दे संग में खुद आज

मेरे प्रभु पावन से उजले सब मैल परी जाए, मैला उजर तांतिये पारस संग पी जाए, वन्नी साचे लाल की किन कीमत की जाए, पेची हाथ न लबई तीरथ नहीं दाने, पूछो वेद परंतया मूठी विन माने, नानक कीमत तो करे पूरा गुर ज्ञाने, मारू महला पहला मन मुख लहर कर तज विगूचै, अवरा के कर हेरै, गृह धर्म गवाए सत गुरु ना पेटै, दुर्मत कूमन के रै, दिसंतर पवे पाठ पढ़ थाका, तृष्णा होए वधेरै, काकी पिंडी शब्द ना चीनै, उदर परै जैसे टोरै, बाबा ऐसी रवत रवै सन्यासी, गुर कै शब्द ए

आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महा बिकती रहे माया का देवाना किस न मिटे हुक्म न बूझे पतुआ माए समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन कृष्णा उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्याप्या चितलाया पर नारी सिख करे कर सबदना चीने लंपट है बाजारी अंतर दिख बाहर निबराती ताजम करे खुआरी सो सन्यासी जो सतगुर सेवे विच्चों आप गवाए साधन पोजन की आस न करे अचिंत मिले सो पाए बके न बोले खिमा तन संग्रह तामस नाम जलाए तन गिर ही सन्यासी जोगी जे हर चरणी चितलाए आस निराश रहे सन्यासी एक क्यों लिवलाए हर रस्ती वे ता सांत आवे निज कर ताड़ी लाए मनवा न डोले गुरमुख बूझे तावत वर्ज रहाए गृह शरीर गुरमती खोजे नाम पदार्थ पाए ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ नाम रते विचारी खानी बाणी गगन पताली जनता जो तुम्हारी सब सुख मुक्त नाम तुन बाणी।

पहला मात पिता संयोग उपाय रखत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे। संसार पव जल क्यों तरे गुरुमुख नाम निरंजन पाले अफरियो पार अपार करे रहाओ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करो हरे। तू दाता दयाल सदै सिर एनिस दास संवार करे चार पदार्थ ले जग जन्मिया शिव शक्ति कर वास करे लागी पूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरे करन पलाव करे नहीं पावे चित उत टूंडत थाक परे काम क्रोध अंकार व्यापे कूड कुटंब स्यों प्रीत करे खावे पोगे सुन सो देखे पहर दिखावे काल करे बिन गुर सब दिन आप पछाने बिन हर नाम ना काल टरे जे कामो हों मैं कर पूले मेरी मेरी करते छीन खड़े तन तन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद पया जो बन तन चुकिया कफ कंठ बिरु दो नैनो नीर तरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम ना हृदय हरे सुरत गई काली हूँ तोले किसे न पावे रखियो करे विसरत नाम ऐसे दुख लागे जम मार समारे नरक खरे पूरब जन्म को लेख न मिटई जन्म मरे का को दोष तरे दिन गुर बाद जीवन होर मरना दिन गुर सबदे जन्म जरे खुशी खुआर पै रस पोगण फोकट कर्म विकार करे नाम विसार लोभ मूल खोयो फिर धर्म राय का दंड परे गुरमुख राम नाम गुण गावे जा को हर प्रभ नदर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुर गोविंद हरे हर सिमरो गुरु बचन समारो संगत हर जन पाव करे हर जन गुर प्रदान द्वारे नानक तिन जन की रे।

मैं गल अवगुण मुठड़ी बिन फिर चूर मराओ तेयड़े फिर समला सौरड़े करवास सुख संबंध सुहागनी फिर पाया गुण पास लेख निहाली पटकी कापुर अंग बनाए फिर मुत्ती डोहागनी तिन दुखी रहन विहाए।

सुनेहो सात अनकंत पछाणिया सुख सुखी निस देहो पत्तन कूके पातनी वंजो तुक विलाड़ पार पवंदड़े डिठ में सतगुर बोहत चाड़ हिक नी लद्या हिक लद गए हिक पारे पर नाल जिन्नी सच वणंजिया से सच्चे प्रभ नाल ना हम चंगे आखिए बुरा न दिसै कोए नानक हो मैं।

मैं एक जोत दो ना हो मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही ना गुरुद्वारे ना पाए बिन सतगुर पल्ले ना पाए सतगुर कह पाने मन

जियो एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख तृष्णा पुख गवाए आपन लिया किछु ना पाए कर कृपा कल तारी जियो अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने कर आया अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नजर तुम्हारी जियो गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचों गवाए सतगुर बाजो सब तंग कमावे देखो मन विचारी जियो एक परम पूले फिरे अंकारी इकना गुरमुख हो मैं मारी सच्चे शब्द रते बैरागी और परम पुले गावारी जियो गुरमुख जिन्नी नाम न पाया मनमुख बिरसा जन्म गवाया अगे बिन नामे को बेली नाही बूझे गुर विचारी जियो अमृत

कार्तिजा अष्टपदियां इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। लख चौरासी परमते दुर्लभ जन्म अब पायो, रे मूड़े तू हो छह रस लपटायो, अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या तू उर्जायो राव। रतन जवे हर बंजन आयो कालर लाद चलायो, जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर चीतना आयो, अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो, जहां जाना सो थान विसार्यो एक निमख नहीं मन लायो, पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर्जायो, जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो, जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो। मारू महला पंजवा कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग, हर नाम रख

देखना कही मोख मुक्त द्वार जा कै संत रिदा भंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखण हार दुख दर्द कलेश बिन सहें जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिख न पोहे ताहे रिद्ध सिद्ध नवनिद जाके अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधिक देव मुन जन वेद करें उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचे नहीं अंत पारावार अनिक प्राचत मिटे खिन में हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान स्नान बल बुद्ध शुद्ध प्राण सर्व सु संतना की रास बिसर नाही निमक मन ते नानक की अरदास मारू मेला पंजवा शस्त्र तीखन काट डार्यो मन ना की नो रोस काज ओआ को

बैसो श्रम ना रहो शरीर महासागर ने व्या पैख ने उतरो तीर चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत दिष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन ना मनी विपरीत ऊंच नीच विकार सुकृत संलगन सब सुख छत्र मित्र सत्र ना कछु जाने सर्वजी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार विनाश पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन न पयो विखाद शीत मंद सुगंध चल्यो सर्वथान समान जहां सा किछ ता लागयो तिल न शंका मान सुभाए अभाए जो निकट आवे शीत ता का जाए आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुभाए चरण शरण सनाथ एहो मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाओ नानक पै प्रभ कृपाल मारू महला पंजवा कर चौथा अष्टपदियां इको अंकार सतगुर प्रसाद चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर चांद।

काम क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगननी का हर जस गुर से मांगना, जागना जागननी का हर कीर्तन में जागना, लागना लागननी का गुर चरणी मन लागना, ए विद तिसे प्राप्ते जाके मस्तक पागना, कहो नानक तिस सब किछ नीका जो प्रभ की शरणागना। मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना रहाओ, तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना, संत कृपा ते हृदय वासे दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुद्ध परगासे दुर्मत दुख सजावना, दर्शन पेटत होत पुनीता पुनरप गर्भ न पावना, नौ निद रिद सिद पाई जो तुमरे मन पावना, संत बिना मैं साओ न कोई अवर न सूजे जावना, मोहे निर्गुण को कोई न राखे संता संग समावना, कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मध्य हर हर रावना। मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ, पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना, पहनना रखपत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना, पोगना मन मदे हर रस संत संगत में लीवना, बिन तागे बिन सुई आनी मन हर पगति संग सीवना, मात्या हर रस में राते तिस बहुर न कबहू औखीवना, मिलियो तिस सर्व निधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना, सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोय पीवना। मारू महला पंजवा, कर अठवा अंजुलिया इको अंकार सतगुर प्रसाद, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दोहु व्यवस्था ते जो मुक्ता सोई सुहेला पालिए, ग्रह राज में नरक उदास करोदा बहुविध बे

बिन गुरु मुक्त ना होइए मीता। साध संग टूटे हो बंधन एको एक निहालिए, कर्म करे ता बंदा ने करे ता निंदा, मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुरु प्रसाद सुख दुख समझाने, कट कट राम हे आलिए। संसार में सहसा व्यापे, अकत कथा अगोचर नहीं जापे, जिसे बुझाए सोई बूझे, ओ बालक वांगी पालिए। छोड़ बह तो छूटे नाही, जो संचय तो पौ मन माही, किस ही में जिसकी पत राखे, तिस साधु चोर टालिए। जो सूरा तिस ही होई मरना, जो पागे तिस जोनी फिरना, जो वरताए सोई पल माने, बुझ हुक्मे दुर्मत जालिए। जित जित लावे तित तित लगना, कर कर वेखे अपने जचना, नानक के पूरन सुख दाते, तू देता नाम समालिए। मारू महला पंजवा, बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त उदोत पया उठ चले, ज्यो ज्यो औद विहानिया। पाप करेंदर सर पर मुठे, अजराइल फड़े फड़ कुठे, दो जग पाए सिरजन हारे, लेखा मंगे बाणिया। संग न कोई पया बेबा, माल जोबन तन छोड़ वजे सा, करण करीम ना जातो करता, तिल पीड़े ज्यो कानिया। खुश खुश लेंदा वस्त पराई, वेखे सुने तेरे नाल खुदाई, दुनिया लब पया खात अंदर, अगली गल ना जानिया। जम जम मरे मरे

अमृत नाम दान नानक को गुण गीता नित वखाणिया। मारू सोलहे महला पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद। साचा सच सोई अवर न कोई जिन सिर जी तिन ही फुन गोई। ज्यो पावे त्यो राखो रहना तुम स्यो क्या मुकराई है। आप उपाए आप खपाए आपे सिर सिर तंदे लाए। आपे विचारी गुणकारी आपे मार्ग लाई है। आपे दाना आपे बीना आपे आप उपाए पतीना। आपे पौन पानी बैसंतर आपे मेल मिलाई है। आपे सतसूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा। काल जाल जम जोहे न साके साचे स्यों लिवलाए।

आपे पावरफुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच कच करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी, आप पति जय गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक्से, आपे दे ले पाई है। आपे तनक आपे सरबाना, आपे सुगढ़ स्वरूप से आना, कहता बकता सुनता सोई, आपे बनत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उधर संजोगी तरती माता, रैन दिनस दोयदाई दाया, जग खेले खेल आई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला,

सहज रस अंतरमाने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरुगम ज्ञाना, जोदी सह तुझ माहे समाना, नानक नीच पिखिया दर जाते है, मैं दीजे नाम बढ़ाई है। मारू महला पहला, आपे तरती तौल आकाशं, आपे साचे गुण प्रगातं, जति सती संतोखी आपे, आपे कार कमाई है। जिस करना सो कर कर वेख है, कोई न मेटे साचे लेख है, आपे करे कराए आपे, आपे देवड़े आई है। पंच चोर चंचल चित चाले, पर कर जो है कर नहीं पाले, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूजे त्रिभुवन सूजे, मनसा मार मने क्यों लूजे, जो तुद सेवे से तुद ही जे, निरपव बाल सिखाई है। आपे सुर्ग मच पयाला, आपे ज्योत स्वरूपी बाला, जटा बिकट बिकराल स्वरूपी, रूप न रेख्या काई है। वेद कटे भी पेद न जाता, ना तिस मात पिता सुत प्राता, सगले सैल उपाय समाए, अलख ना लखना जाई है। कर कर था की मीत कनेरे, कोई न काटे अवगुण मेरे, सुर नर नाथ साहिब सबना सिर, पाए मिले पहु जाई है। पूले चूके मार्ग पावे, आप पुलाए तू है समझावे, बिन नावे मैं अवर न दीसे, नामो गत मित पाई है। गंगा जमुना केल किदारा, काशी कांति पुरी द्वारा, गंगा सागर बेणी संगम, अठसठ अंक समाई है। आपे सिद्ध साधिक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अगली प्रभ आपे, परम पेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला, आप अपुल ना कबहू पुल्ला, आपे मेहर दया पत दाता, ना किसे को बैर आई है। जिस बख्शे तिस देवड़ आई, सबसे दाता तिल ना तमाई, परपुर तार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या काला ही अगम अपार है, साचे सिरजनहार मुरार है, जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिले मेल आई है। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार है, उबे सेवे अलख अपार है, होर केती दर्दी से बिललांदी, मैं गणत ना वै काई है। साची कीरत साची बाणी, होर नदी से वेद पुराणी, पूंजी साच सच्चे गुण गावा, मैं तर होर ना काई है। जुग जुग साचा है भी होसी, कौन न मुआ कौन न मरसी, नानक नीच कहे बेनंती, दर देखू लिवलाई है। मारू महला पहला, दूजी दुर्मत अन्नी बोली, काम क्रोध की कच्ची चोली, कारवार सहज न जाने छोहर, बिन फिर नींद न पाई है। अंतर अगन जले पड़कारे, मन मुख तक के कुंडाचारे, बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाये, साचे हाथ बढ़ाई है। काम क्रोध अंकार निवारे, तत्सर पंच शब्द संगारे, ज्ञान खड़ग ले मन स्यो लूजे, मन सामने समाई है। माँ की रकत पिता बिंद तारा, मूरत सूरत कर अपारा, जोत दात जेती सब तेरी, तू करता सब ठाई है। तुझ ही किया जमन मरना, गुर ते समझ पड़ी।

तावत राखे ठाक रहाया, कमल विगास हरे सर सुबर, आत्म राम सखाई है, मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना पर थाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई है, आप उपाया जगत सवाया, जिन सिरिया तिन संदेलाया, सच्चे उप

नानक नाम रते बैरागी, निज कर ताड़ी लाई है मारू महला पहला, आद जुगादी अपर अपारे, आद निरंजन खत्म हमारे साचे जो

सच नाम सच्ची वड्याई साच तखत वड़ाई है। सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वरते गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परख है साच हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुर पूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगे साच निवासा माने हुक्म रजाई है। सत युग साच कहे सब कोई सच वरते साचा सोई मन मुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है। त्रेत धर्म कला इक चूकी तीन चरण इक दुबदा सूकी गुरमुख होवे सो साच वखाणे मन मुख पचे अवाई है। मन मुख कदे ना दर

कर्म तर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ सब सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न होई, परपंच कर परमाई है। माया ममता चोदी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, एनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यो बन आई है। एक जप तप कर कर तीर्थ नावे, जो तुद पावे तिवे चलावे, हठ निग्रह अब चीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में इक कल राखी, बिन गुर पूरे किन न पाखी, मन मुख कूड़ वरते वरतारा, बिन सतगुर परम न जाई है। सतगुर वे परवाह सिरंदा, ना जमकान ना छंदा बंदा, जो तिस सेवे सो अविनाशी, ना तिस काल संताई है। गुर में आप रखिया करता रे, गुरमुख कोट असंख उधारे, सर्व जिया जग जीवन दाता, निरपव मैल न काई है। सगले जाते गुर पंडारी, आप निरंजन अलखा पारी, नानक साच कह प्रभ जाते, मैं दीजे साच रजाई है। मारू महला पहला, साचे मेले शब्द मिलाए, जात पाना सहज समाए, त्रिभुवन ज्योत करी परमेश्वर, अवर न दूजा पाई है। जिसके चाकर तिसकी सेवा, शब्द पति जय अलख।

की लिव गुरमत जाती, मनमुख सोए रहे से लूटे, गुरमुख साबत पाई है। कूड़े आवे कूड़े जावे, कूड़े राती कूड़ कमावे, शब्द मिले से दरगे पैदे, गुरमुख सुरत समाई है। कूड़ मुठी ठगी ठगवाड़ी, ज्यो वाड़ी ओजार उजाड़ी, नाम बिना किस साधना लागे, हर बित्रे दुख पाई है। पोजन साच मिले आघाई, नाम रतन साची वड़ियाई, चीने आप पछाने सो।

परब न जाए। पच पच मुए अचेत न चेते, अजगर पार लदाई है, बिन बात विरोध है कोई नाही, मैं दिखा लियो तिस्ताला ही, मन तन अर्प मिले जग जीवन, हर स्यों बनत बनाई है, सब की गत मित कोई न पावे, जे को वड्डा कहाए वडाई खावे, साचे साहिब तोट न दाती, सगली तिन्हें उपाई है, वड्डी वड्याई वे परवाहे, आप उपाय दान समाहे, आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलिया सहज रजाए है, एक सोगी एक रोग व्यापे, जो किछ करे सो आपे आपे, भगत पाओ गुर की मत पूरी, अनहद शब्द लखाई है, एक नांगे भूखे पवे पवाए, एक हट कर मरे ना कीमत पाए, गत अवगत की सार न जाने, बूझे शब्द कमा

गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मन मुख राम ना जपे आवाई, पच पच बूढ़े कूर कमावे, कूर काल बैराए है, हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सोसाज कमावे, नानक साच मिले मन पावे, गुरमुख कार कमाई है, मारू मैला पहला, आपे करता पुरख विदाता, जिन आपे आप उपाय पछाता, आपे सतगुर आपे सेवक, आपे श्रेष्ठ उपाय है, आपे नेड़े नाही दूरे, बूझे गुरमुख से जन पूरे, तिनकी संगत एहन सलाहा, गुर संगत ए बड़ाई है, जुग जुग संत पले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे, उस्तत करें पर हर दुख दालद, जिन नाही चिंत पर आई है, ओए जागत रहे न सूते दिसे, संगत कुल तारे साथ परिसे, कलमल मैल नाही ते निर्मल, ओए रहे भगत लिवलाई है, बूजो हर जन सतगुर बाणी, जिह जो बन साथ है देह पुराणी, आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप हृदय ते आई है, छोड़ो प्राणी कूर कबाड़ा, कूर मारे काल उछाहारा, साकत कूर पचे मन हो मैं, दोहो मार्ग पचे पचाई है, छोड़ो निंदा तात पर आई, पर पड़ दज्जे सांत नाई, मिल सत्संगत नाम सलाहो, आत्म राम सखाई है, छोड़ो काम क्रोध बुरे आई, हौ मैं तंद छोड़ो लंकटाई, सतगुर शरण परो ता उबरो, क्यों तरिये पवजल पाई है, आगे बिमल नदी अगन बिखेला, तिथे अवर न कोई जियो इकेला, पड़ पड़ अगन सागर दे

साच पछाणो अंदर दूर नाही देखो करनंदर विघन नाही गुरमुख तरकारी क्यों पावजल पार लंगाई है देही अंदर नाम निवासी आपे करता है अविनाशी ना जियो मरे न मारिया जाई कर देखे शब्द रजाई है ओ निर्मल है नाही अंधियारा ओ आपे तख्त बह सचियारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्मे आई जाई है गुर के सेवक सतगुर प्यारे कोई बैसे तख्त सो शब्द विचारे तत् लहे अंतर्गत जाने सत्संगत साथ वडाई है आप तरे जन पितरा तारे संगत मुक्त सो पार उतारे नानक तिस का लाला गोला जिन गुरमुख हर लिवलाई है मारू मैला पहला केते जुग वरते गुबारे ताड़ी लाई अपर अपारे तुंदू कार निरालम बैठा ना तद तंद पसारा है जुग छत्ती तिने वर्ताए ज्यो तिस पाना तिवे चलाए तिसे शरीक न दिसे कोई आपे अपर अपारा है गुप्ते बूजो जुग तत्वारे कट कट वर्त उदर मजारे जुग जुग एका एकी वर्त कोई बूजे गुर विचारा है बिंद रक्त मिल पिंड सरिया कौन पानी अग्नि मिल जिया आपे चोज करे रंग महली होर माया मोह पसारा है गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी आपे जाने अंतर जामी सास सास सच नाम समाले अंतर उदर मजारा है चार पदार्थ ले जग आया शिव शक्ति करवा

काली हुफुन तौले आए विणनावे घट गया गवाए दुर्मत अंधला बिनस बिनासे मूठे रोए पुकारा है आप विचार न रोवे कोई सतगुर मिले ता सोजी होई बिन गुर बजर कपाट न कूले शब्द मिले निस्तारा है बिरद पया तन सीजे देही राम न जपई अंत स्नेही नाम विसार चले मुँह काले दरगे झूठ खुआरा है नाम विसार चले कूड़ियारो आवत जात पड़े सिर छारो सौरड़े कर वास न पाए पेयड़े सिर मारा है खाजे पैजे रली करीजे बिन अब पगती बाद मरीजे सर अफसर की सार न जाने जम मारे क्या चारा है परवृत्ति नरवृत पछाने गुर के संग शब्द कर जाने किस ही मंदा आँख न चले सच खरा सच आरा है साच बिना दर्श जय न कोई साच शब्द कह जय पत होई आपे बख्श ले तिस पावे हों मैं गर्भ निवारा है गुर कृपा ते हुकम पछाने जुगे जुगंतर की बिद जाने नानक नाम जपो तर तारी सत तारे तारण हारा है मारू मैला पहला हरसा मीत नाही मैं कोई जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीना है गुर सर्वर हम हंस प्यारे सागर में रतन लाल बहुत सारे मोती मानक हीरा हर जस गावत मन तन पीना है हर अगम अगाओ अगाद निराला हर अंत न पाये गुरु गोपाला सतगुर मत तारे तारण हारा मेल ले रंग लीना है सतगुर बाजो मुक्त किने ही ओ आद जुगादी राम स्नेही दरगे मुक्त करे कर कृपा बक्से अवगुण की ना है सतगुरु दाता मुक्त कराए सब रोग गवाए अमृत रख पाए जम जागात नहीं कर लागे।

श्रेष्ठ उपाय रहे प्रभ छाजे, पौन पानी बैसंतर गाजे, मनुआ डोले दूत संगत मिल, सो पाए जो किछ की ना है, नाम विसार दोख दुख सही है, हुकुम पया चलना क्यों रही है, नरक कूप में गोते खावे, जो जल से बाहर मीना है, चौरासी नरक साकत पोगाये, जैसा की तै तैसो पाये, सतगुर बाजो मुक्त न होई, केत बांदा ग्रफ दीना है, खंडे तार गली अत पीड़ी, लेखा ली जय तिल जो पीड़ी, मात पिता कलत्र फुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त न कीना है, मीत सके केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त पराई।

हर हर नाम वखर ले चलो, दर्शन पावो सहज महलो। गुरमुख खोज लहे जन पूरे, क्यों समदर्शी की नाहे। प्रभ बेअंत गुरमत को पावे, गुर कै शब्द मन को समझावे। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

असुर संहारण राम हमारा, कट कट रमैया राम प्यारा, नाले अलख ना लखिए मूले, गुरुमुख लिख विचारा है। गुरुमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा सब पार उतारी, अगन पानी सागर अत गहरा, गुरु सतगुर पार उतारा है। मन मुख अंगले सोजी नाही, आवे जाए मरे मर जाही, पूरब लिखिया लेख ना मिटे, जमदर अंध खो

दुख कनेरे नरक पचे अज्ञान अंधेरे कर्म राय की बाकी लीजे दिन हर का नाम विसारा है सूरज तपे अगन बिख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आशा मनसा कूर कमावे रोग बुरा बुरे आ रहा है मस्तक पार कलर सिर पारा क्यों कर पव जल लंगस पारा सतगुरु बोहित आप जुगादी राम नाम निस्तारा है पुत्र कलत्र जग हेत प्यारा माया मोह पसरिया पाफारा जम के फाहे सतगुर तोड़े गुरमुख तत् विचारा है कूड़ मुठी चाले बहुराही मन मुख दाजे पड़ पड़ पाही अमृत नाम गुरु वरदाना नाम जपो सुख सारा है सत गुर तुठा थच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए कंडा पाए ना गडई मूले जिस सतगुर राखण हारा है खेहू खेर ले तन छीजे मन मुख पाखर सैल न पीजे करण पलाव करे बहु तेरे नरक सुरग अवतार।

कूकर सूकर कहीं है कूड़ियारा, पौक मरे पौ पौ पौहारा, मनसा चूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगे हारा है। सतगुरु मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे के, हर तन नाम अमोलक देवे, हर जप दरगे प्यारा है। राम नाम साधु शरणाई, सतगुरु बचनी गत मित पाई, नानक हर जप हर मन मेरे, हर मेले मिलन हारा है। मारू मेला पहला कर रहो रे मन मुगद आने, राम जपो अंतरगत प्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, क्यों पावो मुक्त द्वारा है। जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख जाहे दुखा फुन आगे, राम नाम जप गुरमुख जीड़े, एहो परम तत्व विचारा है। हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा, ऐनस राम रहो रंग राते, यो जप तप संजम सारा है। राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में ए रस कोलो, गुरमत खोज लहो कर अपना, बौड़ना गर्व मजारा है। सच तीरथ नावो हर गुण गावो, सत विचारो हर लिवलावो, अंत काल जम जोहे न साके, हर बोलो राम प्यारा है। सत गुरु पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना, जिसको सतगुर मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है। पंच तत् मिल काया कीनी, तिसमें राम रतन लैचीनी, आत्म राम राम है आत्म, हर पाये शब्द विचारा है। सत संतोख रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुर शरणाई, आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुरु संगत के हो निस्तारा है। साकत पूर कपट महते का, हैनस निंदा करे अनेका, बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्व जोनी नरक मजारा है। साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबू मुके, बाकी तर्म राय की लीजे, फिर अफरियो पार अफारा है। बिन गुर साकत कहो को तरिया, हो मैं करता पव जल परिया, बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिए पार उतारा है। गुर की दात न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई, जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है। गुर ते फूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो, साकत मूड अचेत न चेते, दुख लागे ता राम पुकारा है। सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए, किसको दोष दे तू प्राणी,

हर की भगत करो जन पाई, अकथ कथो मन मने समाई, उठ चलता ठाक रखो कर अपने, दुख काटे काटन हारा है, हर गुरु पूरे की ओट पराती, गुरुमुख हर लिव गुरुमुख जाती।

आरे तू समरथ दयाल मुरारी, तेरे चोज न जाने कोई, तू पूरा पुरख विदाता है, तू आद जुगाद करे प्रतपाला, कट कट रूप अनूप दयाला, ज्यो तुद पावे तिवे चलावे, सब तेरो किया कमाता है, अंतर ज्योत पली जग जीवन, सब कट पो गए हर रस पीवन, आपे ले वे आपे दे वे, तिहो लोई जगत पित दाता है, जगत उपाय।

ला राम नाम बिन मुक्त न सूजे आज काल पच जाता है। सतगुरु बाजना बेली कोई एथे उथे राखा प्रभु सोई राम नाम देवे कर कृपा क्यों सलल सलल मिलाता है। फूले सिख गुरु समझाए उजड़ जांदे मार्ग पाए जिस गुरु सेव सदा दिन राती दुख पंजन संग सखाता है। गुर की भगत करे क्या प्राणी ब्रह्म इंद्र महेश न जाने सतगुर अलख कहो क्यों लखिए जिस बख्शे तिसे पछाता है। अंतर प्रेम परापत दर्शन गुरबाणी स्यो प्रीत सो प्रसन एनत निर्मल जोत सबाई काट दीपक गुरमुख जाता है।

तिन कट कट अंतर ब्रह्म पचाना। नानक हर जस हर जन की संगत दी जय। जिन सतगुरु हर प्रभ जाता है। मारू महला पहला साचे साहिब सिरजन हारे। जिन कर चतर करे विचारे आपे करता कर

भक्त न होई, सच नाम जप लाहा है, पढ़े मनमुख पर विद नहीं जाना, नाम न बूझे परम पुलाना, लेके वड्डी

जिन गुरु पूरे तत न पाये सच सूचे सच रहा है सब काला है सुन सुन आख है आपे दाना सच पराख है जिनको नदर करे प्रभ अपनी गुरमुख सब चलाहा है सुन सुन आख है कीर्ति बाणी सुन कही है को अंत न जाने जा को अलख लखाए आपे अकथ कथा बुधता है जन्मे को वाजे वादाए सोह लड़े अज्ञानी गाए जो जन्मे तिस सर पर मरना कृत पया सिर सहा है संजोग विजोग मेरे प्रभ किए सृष्ट उपाय दुखा सुख दिए दुख सुख ही ते

जिस तन पल्ले शब्द सचै ओ महा है। काकी सौदी तोता आवे गुरमुख वणज करे प्रभु पावे। पूंजी साबत रात सलामत चूका जम का फाहा है। सब को बोले आपन पाने मनमुख दूजे बोल न जाने। अंदले की मत अंदली बोली आए गया दुख ताहा है। दुख में जन्मे दुख में मरना।

तारा डाल छोड़ तत्मूल पराता मन साचा ओ माहा है। हर के लोग नहीं जम मारे ना दुख देखे पंथ करारे। राम नाम कथ अंतर पूजा और न दूजा कहा है। ओढ़ न कथने सिफ सजाई।

कौन पानी अग्नि इकवासा, आपे की तो खेल तमाशा, बल्दी जल निवरै कृपा ते, आपे जल निद पाएंदा, तर्क उपाय तरी तरमशाला, उत्पत परलो आप निराला, पवने खेल किया सब थाई, कला खिंच टहाएंदा, तार अठारे मालन तेरी, चौर तुले पवने ले फेरी, चंद सूरज दो दीपक राखे, सत कर सूर समाएंदा, पंखी पंच उडर नहीं तावे, सफल्यो बिरख अमृत फल पावे, गुरमुख सहज रवे गुण गावे, हर रस चोग चुगाएंदा, तिल मिल चिल के चंद न तारा, सूरज किरण न बिजल गैनारा, अकथी कथो चेहन नहीं कोई, पूर रहा मन पाएंदा, पसरी किरण ज्योत उजियाला, कर कर देखे आप दयाला, अनहद ऋण चुनकार सदा सुन, निरपो कै करवाएदा, अनहद वाजे परम पौ पाजे, सगल व्याप रहा प्रभ छाजे, सब तेरी तू गुरमुख जाता, दरसो है गुण गाएदा, आप निरंजन निर्मल सोई, अवर न जाना दूजा कोई, एक अंकार वसे मन पावे।

कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे, वे प्रवाह अखुट पंडार है। तू दयाल कृपाल सदा प्रभ, आपे मेल मिलाएगा, आपे देख दिखावे, आपे आपे थाप उठापे, आपे आपे जोड़ विछोड़े करता, आपे मार जीवाएगा। जेती है तेती तुद अंदर, देखे आप बैठ बिज मंदर, नानक साच कह बेनंती, हर दर्शन सुख पाएगा, मारू महला पहला दर्शन पावा।

जो किछ करे सो आपन पाणे, लख चौरासी जी उपाए, पाणे सह लवाएंदा, जो तिस पावे सो नेचो होवे, मन मुख आप दनाए रोवे, नामो पुल्ला ठौर न पाए, आए जाए दुख पाएंदा, निर्मल काया उजल हंसा, तिस विच नाम निरंजन अंसा, सगले दुख अमृत कर पीवे, बहुर दुख न पाएंदा, बहु साधो दुख प्राप्त होवे, ओगो रोग सो अंत विगोवे, हरखो सोग न मिटई कभू, बिन पाणे परमाएंदा, ज्ञान विहूनी पवे सबाई, साचा रव रहा लिव लाई, निरपौ शब्द गुरु सच जाता, ज्योति ज्योत मिलाएंदा, अटल अडोल अतोल मुरारे, खिन में चाहे फिर उसारे, रूप न रेख्या मित नहीं कीमत, शब्द पेद पति आएंदा, हम दासन के दास प्यारे, साधित साच पले विचारे, मन्ने नाओ सोई जिन जासी, आपके साथ जिड़ाएंदा, पल्ले साच सचे सच्यारा, साचे पावे शब्द प्यारा, त्रिभुवन साच कला तर थापी, साचे ही पति आएंदा, वड्डा वड्डा आखे सब कोई, गुरबिन सोजी किने न होई, साच मिले सो साचे पाए, ना विछड़ दुख पाएंदा, तुरु विचुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन में मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस देव डियाई, मेल न पच्छो ताएंदा, आपे करता आपे पुगता, आपे तृप्ता आपे मुक्ता, आपे मुक्त दान मुक्ति सर,

नहीं जात न जन्मा ना सो दुख सुख पाएगा ना तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी योगी जंगम पेख न कोई ना को नाश कहाएगा जप तप संयम ना व्रत पूजा ना को आख वखाने दूजा आपे आप उपाय विदसे आपे कीमत पाएगा ना सुच संयम तुल

ममता जाल काल नहीं माते ना को किसे त्याएंदा निंद बिंद नहीं जियो ना जिंदो ना तद गोरख ना माचिंदो ना तद ज्ञान त्यान कुल ओपत ना को गणत गणाएंदा वरन पेख नहीं ब्राह्मण खत्री देव ना देहोरा।

ना को शेख मसाए कहा जी रैयत राव ना हो मैं दुनिया ना को कहन कहाएंदा पाओ ना पगती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती आपे साओ आपे वनजारा साचे एवो पाएंदा वेद कतेब ना सिमरत शास्त्र पाठ पुराण उदय नहीं आस्त कहता बक्ता आप अगोचर आपे अलख लखाएंदा जात पाना ता जब उपाया बाज कला आदान रहाया ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए माया मोह वधाएंदा विरले को गुर शब्द सुनाया कर कर देखे हुक्म सवाया खंड ब्रह्मंड पत

नानक साच रते बिस्मादी बिस्म पए गुण गाएंदा मारू मैला पहला आपे आप उपाय निराला साचा थान कियो दयाला पौन पानी अग्नि का बंधन काया कोट रचाएंदा नौ कर खापे खापन हार है दसवें वासा अलख अपार है सायर सप्त परे जल निर्मल गुरमुख मैल न लाएंदा रव सच दीपक जोत सबाई आपे कर वेखे वडियाई जोत स्वरूप सदा सुखदाता सच्चे सोभा पाएंदा गर्म है हाट पटन।

पंडार है, सर्व कला ले आपे रहया, गुरमुख किसे बुझाएंदा, नदर करे पूरा गुर पेटे, जम जम धार न मारे फेटे, ज्यो जल अंतर कमल बिगासी, आपे बिरसते आएंदा, आपे वर्ख है अमृत तारा, रतन जवे हर लाल अपारा, सतगुर मिले ता पूरा पाये, प्रेम पदार्थ पाएंदा, प्रेम पदार्थ लह अमोलो, कभी न काटस पूरा तोलो, सच्चे का व्यापारी होवे, सच्चो सौदा पाएंदा, सच्चा सौदा बिरला को पाए, पूरा सतगुर मिले मिलाए, गुरमुख होए सो हुकम पछाने, माने हुकम समाएदा, हुक्मे आया हुक्म समाया, हुक्मे दीसे जगत उपाया, हुक्मे सुर्ग मच पयाला, हुक्मे कला रहाएदा, हुक्मे तरती तौल सिर पारंग, हुक्मे पौन पानी गैनारंग, हुक्मे शिव शक्ति करवासा, हुक्मे खेल खिलाएदा, हुक्मे आडाने आगासी, हुक्मे जल फल त्रिभुवन।

हुक्मे सास गिरा सदा सुन, हुक्मे देख दिखाएदा, हुक्म उपाए दस अवतारा, देव दानव अगणत अपारा, माने हुक्म सो दरगह पै जाए, साथ मिलाए समाएदा, हुक्मे जुग शक्ति गुदारे, हुक्मे सिद्ध साधक विचारे, आप नाथ नथी सब जाकी, बख्शे मुक्त कराएदा, काया कोट करे महराजा, नेब खवास पला दरवाजा, मिथ्या लोभ नाही करवासा, लब पाप पछताएदा, सत संतोख नगर में कारी, जत सत संयम शरण मुरारी, नानक सहज मिले जग जीवन, गुर शब्दी पत पाएदा, मारू महला पहला, सुन कला अपरंपर तारी, आप निरालम अपर अपारी, आपे कुदरत कर कर देखे, सुनो सुन उपाएदा, कौन पानी सुने के साजे, श्रेष्ठ उपाय काया गणराजे, अगन पानी जियो जोत तुम्हारी, सुनने कला रहाएदा, सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय, सुनने वर्ते जुग सवाए, इस पद विचारे सो जन पूरा, इस मिलिए परम चुकाएदा, सुनो सपत सरोवर खापे, जिन साजे विचारे आपे, तित सत सर मनुआ गुरमुख नावे, फिर बहुर जोन न पाएदा, सुनो चंद सूरज गहनारे, किसकी ज्योत त्रिभुवन सारे, सुनने अलख अपार निरालम, सुनने ताड़ी लाएदा, सुनो तरत आकाश उपाए, जिन थम्मा राखे सच काल पाए, त्रिभुवन साज में खुली माया, आप उपाय खपाएदा, सुनो खाणी सुनो बाणी, सुनो उपजी सुन समाणी, कुछ कुछ चलत किया सुर करते, विस्माद शब्द देखाएदा, सुनो रात दिन सदोय किए, ओ पत खपत सुखा दुख दिए, सुख दुख ही ते अमर अतीता, गुरमुख निज कर पाएदा, सामवेद ऋग जुजर असर बन, ब्रह्मे मुख माया है त्रै गुण, ताकि कीमत कह न सके को, त्यों बोले ज्यों बोलाएदा, सुनो सप्त पताल उपाय, सुनो पवन रखे लिवलाए, आपे कारण किया परंपर, सब तेरो किया कमाएदा, राज्य तम सत कल तेरी छाया, जन्म मरण हो मैं दुख पाया, जिसनो कृपा करे हर गुरमुख, गुण चौथे मुक्त कराएदा, सुनो उपजे दस अवतारा, श्रेष्ठ उपाय किया पासारा, देव दानव गण गंधर्व साजे, सब लिखिया कर्म कमाएदा, गुरमुख समझे रोग न होई, हे गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुगे जुगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त पया पत पाएदा, पंच तत् सुनो परिदासा, दे संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा पला दोई मस्तक लीखे, पाप पुन भी जाएदा, उत्तम सतगुरु पुरख निराले, शब्द रते हर रसमत वाले, रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये, पूरे पाग मिलाएदा, इस मन माया को न्यो कनेरा, कोई बूझो ज्ञानी करो निवेरा, आशा मनसा

अंदर जुगत समाई रहे हो निरालम राया। जग तिस की छाया जिस बाप न माया, ना तिस पैन ना प्राव कमाया। ना तिस ओपत खपत पुल जाती, ओ अजरावर मन पाया। तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निरा।

निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द सिखाया। उत्तम जन संत पले हर प्यारे हर रसमाते पार उतारे। नानक रेण संत जन संगत हर गुर प्रसादी पाया। तू अंतर जामी जी सब तेरे तू दाता हम सेवक तेरे। अमृत नाम कृपा कर दी जय।

किया आत्म राम पाए सुखतिया कर्म करतूत अमृत फल लागा हर नाम रतन मन पाया ना किस भूख प्यास मन मान्या सर्व निरंजन कट कट जान्या अमृत रस राता केवल बैरागी गुरमत पाए सुवाया अध्यात्म कर्म करे दिन राती निर्मल ज्योत निरंतर जाती सब दिर साल रसन रस रसना बेन रसाल बजाया बेन रसाल बजावे सोई जाकी त्रिभुवन सोजी होई नानक बूजो ए विद गुरमत हर राम नाम लिवलाया ऐसे जन विरले संसारे गुर शब्द विचारे रह निरारे आप तरह संगत कुल तारे तिन सफल जन्म जन

रचाया चतुर दस हाथ दीवे दो साखी सेवक पंच नाही बिचाखी अंतर वस्त अनूप निर्मोलक गुर मिले हर तन पाया तख्त बह तख्त की लायक पंच समाए गुरमत पायक आद जुगादी है भी होसी सहसा परम चुकाया तख्त सलाम होवे दिन राती क्यों सात वडाई गुरमत लिव जाती नानक राम जपो तर तारी हर अंत सखाई पाया मारू मैला पहला हर तन संचोरे जन पाई सतगुरु सेव रहो सरनाई तस्कर चोर ना लागे ताको तुन उपजे शब्द जगाया तू एकंकार निरालम राजा तू आप सवारे जन के काजा अमर अडोल अपार अमोलक।

दसवें पुरख अतीत निराला आपे अलख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुक्म चलाए सच निशाना नानक खोज लहो कर अपना हर आत्म राम नाम पाया। सर्व निरंजन पुरुष।

सच्चे मेल निवास निरंतर आवन जान चुकाया नामन चले न पौन उड़ावे जोगी शब्द अनाहद वावे पंच शब्द चुनकार निरालम प्रभ आप

दुख पै पंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे साथी जम फासी, नानक हर प्रभ सो को पंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाने, आपे जाने आप पछाने, सब किसका चोट सबाया, आपे साव आपे वनजारा, आपे परखे परखनहारा, आपे कस कसवटी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रभ तारी, कट कट रव रहा बनवारी, पुरख अतीत वसै ने केवल, गुरु पुरख है पुरख मिलाया, प्रभ दाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मेटे एक दिखाए, आशा माए निरालम जोनी, अकल निरंजन गाया, हों में मेट शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जस हर गुण लाहा, सत्संगत सच फल पाया, मारू मैला पहला, सच कहो सच्चे कर रहना, जीवत मरो पव जल जग करना, गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा, मन हर जप पार लंगाया, हों मैं ममता लोभ विनाशन, नौ दर मुक्ते दसवें आसन, ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आप उपाया, गुरमत लेवो हर लिव करिए, अकल गाए जम से क्या डरिए, जत जत देखो तत तत तुम ही, अवर ना दुतिया गाया, सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जिते लग तरना, अकत कठ है देख है अपरंपर, कुन गर्व ना जो नी जाया, सच बिन सत्संतोख ना पावे, बिन गुरु मुक्त ना आवे जावे, मूल मंत्र हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया, सच बिन पाव जल जाए न तरिया, एहो समुंद अथा मां बिक परिया, रह अतीत गुरमत ले ऊपर, हर निरपो कै कर पाया, झूठी जग हित की चतराई, बिलम न लागे आवे जाई, नाम विसार चले अभिमानी, उपजे बिन खपाया, उपजे बिन से बंधन बंदे, हों मैं माया के गल फंदे, जिस राम नाम नाही मत गुरमत, सो जमपुर बंद चलाया, गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई है, बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है, गुरमत लेहो तरो पवज उतर, मुक्त पहे सुख पाया, गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे, गुरमत सायर पाहन तारे, गुरमत लेहो परम पद पाई है, नानक गुर परम चुकाया, गुरमत लेहो तरो सच तारी, आत्म चीनो हृदय मुरारी, जम के साहे काटे हर जप अकल निरंजन पाया, गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत अगन निवार समाई, मनमुख नाम जपो जग जीवन, रिद अंतर अलख लखाया, गुरमुख बूझे शब्द पति जय, उस्तक निंदा किसकी की जय, चीनो आप जपो जगदीशर, हर जगन्नाथ मन पाया, जो ब्रह्मंड खंड सो जानो, गुरमुख बूझो शब्द पछाणो, कट कट पोगे पोगन हारा, रह अतीत सवाया, गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊचा, श्रवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंगाया, मारू मेला पहला, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज हो निचिंदा, क्रम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया, नित दामन जो चमक चंदायन देखे, ऐनस ज्योत निरंतर देखे,

देख अदित रहो लिव लागी। सब त्रिभवन ब्रह्म सबाया, अमृत रस पाए तृष्णा पौ जाए, अनपौ पद पावे आप गवाए। ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा, निर्मल शब्द कमाया, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा। अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग हर जस दीजे। हर जपिए अंत न पाया, अंतर नाम प्राप्त हीरा। हर जपते मन मन से तीरा, दुकट कट पौ पंजन पाई है। बाहुर जन्म न जाया, भगत हेत गुर सब तरंगा। हर जप नाम पदार्थ मंगा, हर पावे गुर मेल मिलाए। हर तारे जगत सवाया, जिन जप जपियो सतगुर मत वाके। जम कंकर काल सेवक पगता के, उत्तम संगत गत मित उत्तम। जग पौजल पार कराया, ए पौजल जगत शब्द गुर तरिय। अंतर की दुविधा अंतर जरिय, पंच बाण ले जम को मारे। गगन अंतर तनख चढ़ाया, साकत नर शब्द सुरत क्यों पाये। शब्द सुरत बिन आये जाये, नानक गुरमुख मुक्त परायण। हर पूरे पाग मिलाया, निरपौ सतगुरु है रखवाला। भगत परापत गुरु गोपाला, सुन आनंद अनाहद वाजे। गुरु शब्द निरंजन पाया, निरपौ सो सिर नाही लेखा। आप अलेख कुदरत है देखा, आप अतीत अजोनी संभो। नानक गुरमत सो पाया, अंतर की जब सतगुर जाने। सो निरपौ गुर शब्द पछाने, अंतर देख निरंतर बूझे। अंत न मन डोलाया, निरपौ सो अब अंतर वसया। एनस नाम निरंजन रसिया, नानक हर जब संगत पाये। हर सहजे सहज मिलाया, अंतर बार सो प्रभु जाने। रह अलिप्त चलते कर आने, ऊपर आद सर्ब तिहु लोई। सच नानक अमृत रस पाया, मारू मैला पहला। कुदरत करने हार अपारा, जीते का नाही क्यों चारा। जी उपाय रिजक दे आपे, सिर सिर हुक्म चलाया। हुक्म चलाए रहा पर पूरे, किस नेड़े किस आखा दूरे। गुप्त प्रगट हर कट कट देखो, वर्ते काक सबाया। जिसको मेले सुर समाए, गुर शब्दी हर नाम से आए। अनद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले परम जाया। मन तन तन से नाम प्यारा, अंत सखाई चलन वारा। मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया। जिसको नजर करे गुर पूरा, शब्द मिलाए गुरमत सूरा। नानक गुर के चरण सरेवो, जिन पूला मार्ग पाया। संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा। जाचक सेव करे दर हर के, हर दर गए जस गाया। सत गुर मिले ता महल बुलाए, साची दर गए गत पत पाए। साकत ठोर नाई हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया। सेवो सत गुर समुंद अथाहा, पावो नाम रतन तन लाहा। विख्या मल जाए अमृत सर नावो, गुर सर संतोख पाया। सतगुर से वो संत न की जय, आशा माए निराश रही जय। संसार दुख बिना सन से वो, फिर बहुर रोग न लाया। साचे पावे तिस वडी आए, कौन सो दूजा तिस समझाए। हर गुर मूरत एका वर्त है, नानक हर गुर पाया। वाच्य है पुस्तक वेद पुराना, इक बह सुने सुनावे काना। अजदर कपट कहो क्यों खुले, बिन सतगुर तत न पाया। करें विपूत लगावे पस में, अंतर क्रोध चंडाल सोहो में। पखंड की ने जोग न पाये, बिन सतगुर अलख न पाया। तीरथ वर्त नेम करें उद्याना, जत सत संजम कथे ज्ञाना। राम नाम बिन क्यों सुख पाये, बिन सतगुर परम न जाया। न्योली करम प्रियंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मनहाठी। पाखंड तरम प्रीत नहीं।

नानक आत्म राम सभाया, गुर सतगुर अलख लखाया, मारू सोले मैला तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हुक्मे सहजे सृष्ट उपाय, कर कर वेखे अपनी वड्याई, आपे करे कराए आपे, हुक्मे रहा समाई है। माया मोह जगत गुबारा, गुरमुख बूझे को विचारा, आपे नजर करे सो पाए, आपे मेल मिलाई है। आपे मेले देवड्याई, गुर प्रसादी कीमत पाई, मनमुख बहुत सुरे दिलांदी, दूजे पाए खुआई है। हौ मैं माया विचे पाई, मनमुख पूले पत गवाई, गुरमुख होवे सो नाए राचे, साचे रहा समाई है। गुर ते ज्ञान नाम रतन पाया, मन सामार मन माहे समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है। सतगुर सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम शब्द सुख पाए, अंतर प्यार पगति राता, सहज मते बन आई है। दुख निवारण गुर से जाता, आप मिलिया जग जीवन दाता, जिसनो लाए सोई बूझे, पौ परम शरीरों जाई है। आपे गुरमुख आपे देव, सच्चे शब्द सतगुर सेवे, जरा जम तिस जोहे न साके, साचे स्यो बन आई है। तृष्णा अग्न जले संसारा, जल जल खपे बहुत विकारा, मन मुख ठौर न पाए कबहू, सतगुर बूझ बुझाई है। सतगुर सेवन सेवड पागी, साचे नाम सदा लिव लागी, अंतर नाम रविया ने केवल, तृष्णा शब्द बुझाई है। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख विरले किने पछाणी, सच्चे शब्द रते बैरागी, आवन जान रहाई है। शब्द बुझे सो मैल चुकाए, निर्मल नाम वसे मन आए, सतगुर अपना सद ही सेवे, हो मैं विच्चों जाई है। गुर ते बूझे तांदर सूझे, नाम विहूणा कस कस लूझे, सतगुर सेवे की वड्याई, कृष्णा फूख गवाई है। आपे आप मिले ता बूझे, ज्ञान विहूणा किछु न सूझे, गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द वजाई है। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया।

अंग दिन नाम रवै दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है मन मुक्तात दूजे है लागा जन्मत की नाम वो अपागा आवत जात बिरथा जन्म गवाया बिन गुरु मुक्त ना होई है काया कुसुद हो मैं मल लाई।

संगारे मर मरजम में शब्द ना विचारे अंतर माया मोह गुबारा जो सुपने शुद्ध ना होई है। एक पंचा मार शब्द है लागे सतगुर आए मिलियावट पागे अंतर साथ रहे रंग राते सहज समावे सोई है। गुर की चाल गुरु ते जापे पूरा सेवक शब्द जापे सदा शब्द रवे कट अंतर रसना रस चाखे सच सोई है। हम मैं मारे शब्द निवारे हर का नाम रखे उधारे एक बिन हो होर ना जाना सहजे होए सो होई है। बिन सतगुर सहज किने नहीं पाया गुरमुख बूझे सत समाया सच्चा सेव शब्द सच राते हो मैं सब देखोई है। आपे गुण

बच्चा मन पीवे पाए सुवाई है। पर पंडित अवरा समझाए पर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुरु से वे नाम न पाए, परखा के सांत न आई है। एक पसम लगाए फिर पेक तारी, बिन शब्द हूँ मैं किन मारी, हम दिन जलत रहे दिन राती, परम पेक परमाई है। एक ग्रे कुटुम्ब में सदा उदासी, शब्द मोए हर नाम निवासी, हम दिन सदा रहे रंग राते, तह पाए भगत चित लाई है। मन मुख निंदा कर कर विगुता, अंतर लोभ पहुंचे जिस कुत्ता, जम काल तिस कदे न छोड़े, अंत गया पछताई है। सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नाम है मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुरु को नाम न पाए, प्रभ ऐसी बंत बनाई है। एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी, एक ऐनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है। स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सो लूझे, साचे शब्द रते करंगी, साचे शब्द मिलाई है। आपे सिरजे दे वड्याई, आपे पाने दे मिलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ क्यों फुरमाई है। सतगुरु सेवे से जन साचे, मन मुख सेव ना जानन काचे, आपे करता कर कर वेखे।

का मुख बोले दुर्मत नाम न पाई है अवगणियारी कंस न पावे मन की झूठी झूठ कमावे फिर का साव न जाने मूरख बिन गुरबूझ न पाई है दुर्मत खोटी खोट कमावे सिगार करे फिर खत्म न पावे गुणवंती सदा पिर रावे सदगुर मेल मिलाई है आपे हुक्म करे सब वेख है इकना बख्श ले तुर लेख है हम दिन नाम रते सच पाया आपे मेल मिलाई है हम मैं तात मुह रस लाई गुरमुख लिव साची सहज समाई आपे मेल है आपे कर वेख है बिन सतगुर बूझ न पाई है एक शब्द विचार सदा जन जागे एक माया मोह सोए रहे अपागे आपे करे कराए आपे होर करना किछु न जाई है काल मार गुर शब्द निवारे हर का नाम रखे उधारे सतगुरु सेवा के सुख पाया हर के नाम समाई है दूजे पाए फिरे देवानी माया मोह दुख माए समानी बहुते पेक करे नहीं पाए बिन सतगुरु सुख न पाई है किसनो कहिए जा आप कराए जित पावे तित राह चलाए आपे मेहरवान सुखदाता ज्यों पावे तें चलाई है आपे करता आपे पुगता आपे संजम आपे जुगता आपे निर्मल मेहरवान मधुसूदन जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है सेवड पागी जिन्नी एको जाता कट कट वस रहा जग जीवन दाता इक है गुप्त प्रगट है आपे गुरमुख परम पहु जाई है गुरमुख हर जियो एको जाता अंतर नाम शब्द पछाता जिस तू दे सोई जन पाए नानक नाम वडाई है मारू महला तीजा सत्साला ही गहर गंभीर है सब जग है तिस ही कैसीर है सब कट भोग वै सदा दिन राती आपे सुख निवासी है सच्चा साहिब सच्ची नाही गुर प्रसादी मन वसाई आपे आए वस्या कट अंतर टूटी जम की फांसी है किस सेवी तै किस सलाही सतगुर सेवी शब्द सलाही सच्चे शब्द सदा मत उत्तम अंतर कमल प्रगासी है देही काची कागद मिकदारा बूंद पवे बिन सह कहत न लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूझे जिस अंतर नाम निवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पोजन सच आधारा सदा तृप्त पवित्र है पावन जित कट हर नाम निवासी है हों तिन बलिहारी जो साचे लागे हर गुण गावे अंदिन जागे साचा सुख सदा तिन अंतर रसना हर रस राशि है हर नाम चेता अवरना पूजा एको सेवी अवरना दूजा पूरे गुर सब सच दिखाया सच्चे नाम निवासी है प्रम प्रम जोनी फिर आया आप पूला जा खत्म पुलाया हर जियो मिले ता गुरमुख बूझे चीने शब्द अविनाशी है काम क्रोध परे हम अपराधी क्या मुँह ले बोले ना हम गुण ना सेवा सादी डुबदे पाथर मेल ले हो तुम आपे साथ नाम अविनाशी है ना कोई करे न करने जोगा आपे करे करावे तो होएगा आपे बख्श ले सुख पाए सभी नाम निवासी है तिव तन तरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज अपारा सच तन जमया कोट ना आवे अंतर नाम निवासी है हर जियो अवगणियारे नो गुण की जय आपे बख्श ले नाम दी जय गुरमुख होवे सो पट पाए इकत नाम निवासी है अंतर हर तन समझ ना होई गुर प्रसादी बूझे कोई गुरमुख होवे सो तन पाए सभी नाम निवासी है अनलवाओ परम पुलाई माया मोह सुध न काई मनमुख अंधे किछु न सूझे गुरमत नाम प्रगासी है मनमुख हो मैं माया सूते अपना कर न समाले अंत विगूते पर निंदा करें बहु चिंता जाले दुखे दुख निवासी है आपे करते कार कराई आपे गुरमुख देव बुझाई नानक नाम रते

वेद पढ़े हर नाम न बूझे, माया कारण पर पढ़ लूजे, अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर तरी जय हे, वेद बाद सब आंख वखाने, ना अंतर पीजे ना शब्द पछाने, पुन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरुमुख अमृत पीजे हे, आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई, नानक नाम रते मन साचा, सच्चो सच रवि जय हे, मारू मैला तीजा, सच्चे सच्चा सच रचाया, निज कर वस्या तिथे मोह न माया, सद ही साच वस्या कट अंतर, गुरमुख करनी सारी है, सच्चा सौदा सच वापारा, ना तिथे परम ना दूजा पसारा, सच्चा तन खटिया कदे तोट ना आवे, बूझे कोई चारी है, सच्चे लाए से जन लागे, अंतर शब्द मस्तक वड़ पा

की पौड़ी ज्ञान रतन हूँ मैं मारी है माया मोह शब्द जलाया सच मन वस्या जा सुध पाया सच्चे की सब सच्ची करनी हूँ मैं सिखाने वारी है माया मोह सब आपे कीना गुरमुख विरले किन ही चीना गुरमुख वो वैसो सच कमावे साची करनी सारी है कार कमाई जो मेरे प्रभु पाई हूँ मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हूँ मैं मार निवारी है सच लगे तिन सब किस पावे सच्चे शब्दे सच सुहावे ऐसे साचे से दर साचे नगरी नदर सवारी है बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सवाया बिन गुर दुख सुख जाते नाही माया मोह दुख पारी है साचा शब्द जिना मन पाया पूरब लिखिया तिनी कमाया सच्चो सेवे सच त्यावे सच रते विचारी है गुर की सेवा मीठी लागी अन दिन सुख सहज समाधि हर हर करत्या मन निर्मल होवा गुर की सेव प्यारी है से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए आपे पाने आप मिलाए सतगुर राखे से जन उभरे होर माया मोह खुआरी है गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कुटुंब ना तिस माता एको एक रविया सब अंतर सब ना जिया का आधारी है हूँ मैं मेरा दूजा पाया किछ ना चले तुर खसम लिख।

नतीजा आते आप उपाय उपन्ना सब में वर्त है एक प्रछन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय फिर सिर संदे आपे लाए जिस पावे तिस आपे मेले जिन गुरुमुख एको जाता है आवा गौण है संसारा माया मोह बहुचित है विकारा फिर साचा साला ही सदही जिन गुर का शब्द पछाता है एक मूल लगे ओनी सुख पाया डाली लागे तिन्नी जन्म गवाया अमृत फल तिन जन को लागे जो बोले अमृत बाता है हम गुण ना ही क्या बोले बोले तू सब ना देखे तोले तोले ज्यो पावे त्यो राखे रहना गुरमुख एक को जाता है जा तुद पाना ता सच्ची कारे लाए अवगुण छोड़ गुण माए समाए गुण में एको निर्मल साचा गुर कह शब्द पछाता है जह देखा तह एको सोई दूजी दुर्मत सब देखोई एक स्ने प्रभ एक समाना अपने रंग सदराता है काया

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एक हो जाता है, मनमुख कार करे सब दुख सवाए, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाए, गुरमुख शब्द वसे मन साचा, सद से वे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी खाई, पूरे गुर सब को जी पाई, नामो नाम त्याय सदा सद, ए मन ना मेरा ता है, ना मेरा ता पवित्र शरीरा, बिन नामे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, इतना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुरु बूझ बुझाई, बिन नामे मुक्त किने ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द चूके नहीं तेरी, साज सलाहे साज समावे, जिन गुरमुख एक को

दर साचे साच पछाता है मारू सो लेती जा। आपे करता सब जिस करना जी जंक सब तेरी सरना। आपे गुप्त वर्ते सब अंतर गुर के शब्द पछाता है। हर के भगत परे पंडारा आपे बसे शब्द।

जुग जुग एक हो जाता है। माया मोह सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, जो तुड पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है। पाप पुनवर्ते संसारा, हर्ष शोक सब दुख है पारा, गुरुमुख हो वह सो सुख पाए, जिन गुरुमुख नाम पछाता है। कीर्तना कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मोक्ष द्वारा, पूरब लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है। माया मोह हर क्यों चित न लागे, दूजे पाए कणा दुख आगे, मनमुख परम पुले पेख सारी, अंत काल पछताता है। हर कै पाने हर गुण गाए, सब किल विष काटे दुख सवाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर तेती मन गाता है। जिसनो नजर करे सो गुण निद गाए, हों मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण काहे को दाता, गुरुमुख विरली जाता है। मेरा प्रभु निर्मल अत अपारा, आपे मिले गुर शब्द विचारा, आपे बक्से सच दृढ़ाए, मन तन साचे राता है। मन तन मेला विच जोत अपारा, गुरमत बूझे कर विचारा, हों मैं मार सदा मन निर्मल, रसना सेव सुख दाता है। गर काया अंदर बहु हट बजारा, तिस विच नाम है अत अपारा, गुर कै शब्द सदा दर्शो है, हों मैं मार पछाता है। रतन अमोलक अगम अपारा, कीमत कवन करे बेचारा, गुर कै शब्दे तोल तोलाए, अंतर शब्द पछाता है। सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे, गुरमुख विरले जाता है। आपे करता करे कराए, सच्ची बाणी सच दृढ़ाए, नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एक हो जाता है। मारू महला तीजा, हो सच सेवियो सृजन हारा, सबदे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, आपे अगम अथाहा है। आपे सच्चा सत वरताए, एक जन सच है आपे लाए, साचो सेवै साच कमावे, नामे सच समाहा है। तुर पगता मेले आप मिलाए, सच्ची पगती आपे लाए, साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्मे का लाहा है। गुरमुख वणज करें पर आप पछाणे, एक बिन को अवर न जाने, सच्चा साव सच्चे वन जारे, पूंजी नाम विसाहा है। आपे साजे सृष्ट उपाए, विरले को गुर शब्द बुझाए, सतगुर सेवे से जन साचे, काटे जम का फाहा है। पन्ने करे सवारे साजे, माया मोह दूजे जंत पाजे, मन मुख फिरे सदा अंध कमावे, जम का जेवड़ा गल फाहा है। आपे बख्शे गुर सेवा लाए, गुरमती नाम मन वसाए, अंदर नाम त्याए साचा, इस जग में नामो लाहा है। आपे सच्चा सच्ची नाई, गुरमुख देवे मन वसाई, जिन मन वस्या से जन सो है, तिन सिर चूका कहा है। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुर प्रसादी मन वसाई, सदा शब्द सलाही गुण दाता, लेखा कोई न मंगे ताहा है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा, अंत न पावे अलख।

सेवा जिनको नजर करे तू अपनी गुरमुख अलख लखाहा है। पूरे सतगुर सोजी पाई एको नाम मन वसाई नाम जपी तै नाम ते आई महल पाए गुण गाहा है। सेवक सेवे मन हुक्म अपारा मन मुख हुक्म न जाने सारा हुक्मे मन्ने हुक्मे वड्याई हुक्मे वे परवाहा है। गुर प्रसादी हुक्म पछाने तावत राखे।

होई सबत सलाहे से जन निर्मल निज करवासा ताहा है सदा पगत तेरी शरणाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे गुरु।

सच देवो सच समाहा है मारू मैला तीजा। सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन साच नाम लिव लागी। सदा सुख दाता रव्या कट अंतर शब्द सच्चा ओ माहा है। नदर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए। हर मन वस्या सदा सुख दाता सबदे मन ओ माहा है। कृपा करे ता मेल मिलाए हो मैं ममता शब्द जलाए। सदा मुक्त रहे इक रंगी नाही किसे नाल कहा है। बिन सतगुरु सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्द लाहा है। दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वर्ताया। गुरमुख होवे सो अलिप्तो वर्ते मन मुख का क्या वेसाहा है। से मन मुख जो शब्द ना पछाने गुर के तय की सार न जाने। तय बिन क्यों निरपो सच पाये जम काड लेगा सहा है। अफरियो जम मारिया ना जाई गुर के शब्दे नेड़ ना आई। शब्द सुने ता दूरों पागे मत मारे हर जियो वे परवाह है। हर जियो की है सब फिरकारा एहो जम क्या करे विचारा। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कटदा सहा है। गुरमुख साचे किया आकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख होवे सो सच बूझे शब्द सच्चे सुख ताहा है। गुरमुख जाता कर्म विधाता जुगचारे गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख गुरमुख शब्द समाहा है। गुरमुख नाम शब्द साला है अगम अगोचर वे

आए, गुरुमुख हो वह सो नाम बूझे, काटे दुर्मत साहा है, गुरुमुख उपजे साज समावे, ना मर जमे ना जूनी पावे, गुरुमुख सदा रहे रंग राते, हम दिन लें दे लाहा है, गुरुमुख भगत सोहे दरबारे, सच्ची बाणी सब सवारे, हम दिन गुण गावे दिन राती, सह छेती कर जाहा है, सतगुरु।

गुरमुख बिरला बूझे कोई, नानक जन नाम सलाहे, बिगसे सो नाम बेपरवाह है। मारू महला तीजा, हर जियो सेवियो अगम अपारा, किसदा अंत न पाये पारा वारा, गुर प्रसाद रविया कट अंतर, तित कट मत अगाहा है। सब मैं वरते एको सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सबना प्रतपाल करे जग जीवन, दींदा रिजिक संभाहा है। पूरे सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगत उपाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर साहा पास साहा है। सच्चा सतगुर शब्द अपारा, तिस दे शब्द निस्तर है संसारा, आपे करता कर कर वेख है, देंदा सास गिराहा है। कोट मदे किसे बुझाए, गुर के शब्द रते रंग लाए, हर साला है सदा सुखदाता, हर बख्शे पगत सलाहा है। सतगुर सेवे से जन साचे, जो मर जमे काचन काचे, अगम अगोचर वे परवाहा, भगत वचल अथाहा है। सतगुर पूरा साच दृढ़ा।

मन तन हर रविया कट अंतर मन कीने भगत सलाहा है। मेरा प्रभ साचा अतुर संगारण गुर के शब्द भगत निस्तारण। मेरा प्रभ साचा सद ही साचा फिर साहा पाप साहा है। से भगत सच्चे तेरे मन पाए दर कीर्तन करे गुर शब्द सुहाए। साची बाणी अम दिन गावे निरसन का नाम विसाहा है। जिन आपे मेल बिछोड़े नाही गुर के शब्द सदा साला ही। सबना सिर तू एको साहिब शब्दे नाम सलाहा है। बिन शब्द तुद नो कोई न जानी तुद आपे कथी अकथ कहानी। आपे शब्द सदा गुरदाता हर नाम जप संभा है। तू आपे करता सृजनहारा तेरा लिखिया कोई न मेटनहारा। गुरमुख नाम देवे तू आपे सहसा गणत ना ताहा है। भगत सच्चे तेरे दरबारे सबदे सेवन पा

परतें और न बिया गुर प्रसादी आप पछाने कमल बिकसे बुद्ध ताहा है अपनी गहन गत आपे जाने और लोग सुन सुन आख वखाने ज्ञानी होवे सो गुरमुख बूझे साची सिफत सलाहा है देही अंदर वस्त अपारा आपे कपट खुलावना।

को जे शब्द सलाहे बाहर काहे जाहा है, विण चाखे साध किसे ना आया, गुर के शब्द अमृति आया, अमृति अमरा पद होए, गुर के शब्द रस पाहा है, आप पछाने सो सब गुण जाने, गुर के शब्द हर नाम वखाने, हम दिन नाम रता

है, गुर का शब्द अमृत है वाणी, अंग दिन हर का नाम वखाणी, हर हर सच्चा वसे कट अंतर, सो कट निर्मलता है, सेवक सेवे शब्द सलाहे, सदा रंग राते हर गुण गावे, आपे बसे शब्द मिलाए, परमल वास मन ताहा है, शब्दे अकप तपे साला है, मेरे प्रभ साचे वे परवाहे, आपे गुण दाता शब्द मिलाए, शब्द का रस ताहा है, मन मुख पूला ठौर न पाए, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाए, बिख्या राते बिख्या खोजे, मर्जन में दुख ताहा है, आपे आप आप साला है, तेरे गुण प्रभ तुझी माँ है, तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे अलख अथाहा है, बिन गुरदाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए, गुर कृपा ते तत अंतर वस्या, शब्दे सच सलाहा है, से जन मिले तुर आप मिलाए, साची बाणी शब्द सुहाए।

सत्येन सत्यो सच्चा गुरुमुख सबक सुनाए दा गुरुमुख हो वै सो जी पाए हो मैं माया परम गवाए गुर की पौड़ी उत्तम ऊंची दर सच्चे हर गुण गाए दा गुरुमुख सच संजम करनी सार गुरुमुख पाए मोख द्वार पाए पगत सदा रंग राता आप गवाए समाए दा गुरुमुख हो वै मन खोज सुनाए सच्चे नाम सदा लिवलाए जो तिस पावे सोई करसी जो सच्चे मन पाएंदा जा तिस पावे सतगुरु मिलाए जा तिस पावे ता मन वसाए अपने पाने सदा

गुरमुख निर्मल मैल न लावे, नानक नाम रते विचारी, नाम में नाम समाएदा, मारू महला तीजा, आपे श्रेष्ठ हुकुम सब साजी, आपे खाप उठाप निवाजी, आपे न्याय करे सब साचा, साचे साथ मिलाएदा, काया कोट है आका

काया हर मंदर हर आप सवारे पृथ्वी हर जियो वसै मुरारे गुर कै शब्द वंजन व्यापारी नगरी आप मिलाएदा सो सूचा जे क्रोध निवारे सबदे बूजे आप सवारे आपे करे कराए करता आपे मन वसाएदा निर्मल भगत है निराली मन तन तोवे शब्द विचारी आन दिन सदा रहे रंग राता कर कृपा भगत कराएंदा इस मन मंदिर में मनुआ तावे सुख पल्लर त्याग महा दुख पावे बिन सतगुरु पे ते ठौर न पावे आपे खेल कराएंदा आप अपरंपर आप विचारी आपे मेले करनी सारी क्या को कार करे बेचारा आपे बख्श मिलाएंदा आपे सतगुरु मेले पूरा सच्चे शब्द महाबल तू।

दिस अंतर पवे अंतर नहीं पाले, माया मोह बद्दा जम काले, जम की फांसी कब होना टूटे, दूजे पाए परमाए दा, जब तब संजम होर कोई नाही, जब लग गुर का शब्द ना कमाही, गुर के शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच समाए दा, काम क्रोध सबल संसारा, बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा, सतगुर सेवे से सुख पावे, सच्चे शब्द मिलाए दा, पौन पानी है बेसंतर, माया मोह वर्त है सब अंतर, जिनकी ते जात से पछाने, माया मोह चुकाएं दा, एक माया मोह गर्भ

सच नाम शीतलाएंदा मारू महला तीजा आद जुगाद दया पत दाता पूरे गुर कह शब्द पछाता तुदनो सेवे से तुझे समावे तू आपे मेल मिलाएंदा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई जी जंत तेरी शरणाई ज्यों तुद पावे तिवे चलावे तू आपे मार्ग पाएंदा है भी साचा होसी सोई आपे साजे अवरना कोई सबना सार करे सुखदाता आपे रिजक पहुंचाएंदा अगम अगोचर अलख अपारा कोई न जाने तेरा परवारा

साक्षी आए मनमुख अंग ना चेते मूड़ा सिर ऊपर काल रुआएंदा मन तन शीतल गुरचरणी लागा अंतर परम गया पौ पागा सदा आनंद सच्चे गुण गावे सच बाणी बोलाएंदा जिंतु जाता कर्म विधाता पूरे पाग गुर सबर पछाता जत पत सच सच।

लख चौरासी आप उपाए, मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाए, बिन भगती बिस्ता विच वासा, बिस्ता विच फिर पाए दा, कर्म होवे गुर भगत दृढ़ाए, बिन कर्मा क्यों पाया जाए, आपे करे कराए करता, ज्यो पावे तिवें चलाए दा, सिमरत सासत अंत न जाने, मूरख अंधा तप न पछाने, आपे करे कराए करता, आपे परम पुलाएंदा, सब किस आपे आप कराए, आपे सिर सिर संदे लाए, आपे थाप उठा पे वेख है, गुरमुख आप बुझाएंदा, सच्चा साहिब गहर गंभीरा, सदा सलाही तामन तीरा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुरमुख मन वसाएंदा, आप निरालम होर संदे लोई, गुर प्रसादी बूझे कोई, नानक नाम वसे कट अंतर, गुरमती मेल मिलाएंदा, मारू महला तीजा, जुग छत्ती कियो गुबारा, तू आपे जाने सिरजनहारा, होर क्या को कह के आंख वखाने, तू आपे कीमत पाएंदा, ओंकार सब सृष्ट उपाई, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई, आपे वेद करे सब साचा, आपे पन कराएंदा, बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई, सदा अलिप्त रह गुर सबदी, साचे स्यों चितलाएंदा, बाजे बाजे तुन आकारा।

सहसा मूल न चुके विकारा, गुरमुख हो वैसो गणत चुकाए, सच्चे सच समाएदा, जे सच दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सच नाम सलाहे रंग राता, गुर कृपा ते सुख पाएदा, जप तप संजम नाम प्यारा, किलविख काटे काटनहारा, हर कै नाम तन मन शीतल होवा, सहजे सह समाएदा, अंतर लोभ मन मैले मल लाए, मैले कर्म करे दुख पाए, कूड़ो कूड़ करे वा पारा, कूर बोल दुख पाएदा, निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए, गुर कै पाणे चले दिन राती, नाम चेत सुख पाएदा, आप सिरंदा सच्चा सोई, आप उपाय खपाए सोई, गुरमुख हो वैसो सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाएदा, अनेक जतन करे इंद्री वसना होई, काम क्रोध जले सब कोई, सतगुरु

हर जियो दाता अगम अथाहा, उस तिल न कमाए वे परवाहा, जिसनो अपड़ न सके कोई, आपे मेल मिलाएगा, जो किछ करे सो निहचो होई, जिस बिन दाता अवर न कोई, जिसनो नाम दान

अंतर साज परम सुखाए सत सचै का आपे दाता जिस देव है सो सच पाएगा आपे करता सबना का सोई जिसनो आप बुझाए बुझे कोई आपे बख्शे दे वड्याई आपे मेल मिलाएगा हों मैं कर दिया जन्म गवाया आगे मुह न चूके माया अगे जम काल लेखा ले वे जो तिल कानी पीड़ाएगा पूरे पाक गुर सेवा होई नजर करे ता सेवे कोई जम काल किस नेड़ ना आवे महल सच्चे सुख पाएगा तिल सुख पाया जो तुद पाए पूरे पाक गुर सेवा लाए तेरे हथ है सब वड्याई जिस देवे सो पाएगा अंदर परदास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए।

रसना नाम से आए रस पी जाए, रस ही ते रस पाएगा, महले अंदर महल को पाए, गुर कै शब्द सच चित लाए, जिसनो सच देव सोई सच पाए, सच्चे सच मिलाएगा, नाम विसार मन तन दुख पाया, माया मोह सब रोग कमाया, बिन नाम है मन तन है कुश्ती, नरके वासा पाएगा, नाम रते तिन निर्मल देहा, निर्मल हंसा।

गुर कै शब्द हर मन वसाए, गुर कृपा ते नाम वसिया कट अंतर, नामो नाम ते आइंदा, नावे नो लोचे जेती सब आई, नाव तिना मिले तुर पुरब कमाई, जिन्नी नाव पाया सेवट पागी, गुर कै शब्द मिलाएंदा, काया कोट अत अपारा, तिस विच बह प्रभ करे विचारा, सच्चा न्याओ सच्चो वापारा, निचल वासा पाएंदा, अंतर कर बंके थान सुहाया, गुरमुख विरले किने थान पाया, इस साथ निभ है साला है सच्चे, हर सच्चे

जिन सब दे सब अंधेरा गुरमुख किसे बुझाएंदा। एक चित आए जन्म गवाए मन मुख लागे दूजे पाए ए वेला सिर हाथ न आवे पद किसे पछताएंदा। गुर के शब्द पवित्र शरीरा तिस विच वसे सच गुणी गहीरा सचो सच वेखे सब थाई

सब मूल है माया, दूजे पाए परम फुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएगा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्श कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएगा, बिन पादा गुर सेविया न जाए, मन मुख फूले मोए बिल्लाए, जिनको नदर हो वह गुर केरी, हर जियो आप मिलाएगा, काया कोट पके हट नाले, गुरमुख ले वह वस्त समाले, हर का नाम त्याय दिन राती, उत्तम पदवी पाएगा।

वेद पढ़े अंधिन वाद समाले, नाम न चेते बद्दा जमकाले। दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पुलाएंदा। गुरमुख एक स्यों लिवलाए, त्रिविध मनसा मने समाए। साचे शब्द सदा है मुक्ता, माया मोह चुकाएंदा। जो तुर राते से हुन राते, गुर प्रसादी सहजे माते। सतगुर सेव सदा प्रभ पाया, आपे आप मिलाएंदा। माया मोह परम न पाए, दूजे पाए लगा दुख पाए। सूहा रंग दिन थोड़े होवे, इस जांदे बिलम न लाएंदा। इहो मन पै पाए रंगाए, इत रंग साचे माहे समाए। पूरे पाग को इहो रंग पाए, गुरमती रंग चढ़ाएंदा। मनमुख बहुत करे अभिमान।

अंदर आप लुकाया, गुर प्रसादी हर मिले मिलाया, सच्चा प्रभु सच्चा व्यापारा, नाम अमोलक पाएदा, इस काया की कीमत किने न पाई, मेरे ठाकुर ए बंत बनाई, गुरमुख हो वै सो काया सो दे, आपे आप मिलाएदा, काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाह, गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख साला है सुखदाते, मन मेले कीमत पाएदा, काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड्याई, जिसदा हट सोई वत जाने, गुरमुख दे ना पछोताएदा, हर जियो सब में रहा समाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मिलाए आपे, सब दे सहज समाएदा, आपे सच्चा शब्द मिलाए, सब दे विच्चों परम चुकाए, नानक नाम मिले वड्याई, नामे ही सुख पाएदा, मारू महला तीजा, अगम अगोचर वे परवाहे, आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सके तिसनो, गुर शब्दी मेल आया, तुदनो सेवे जो तुद पावे, गुर कै शब्दे सच समावे, अन दिन गुण रवे दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरे से मरण सवारे, हर के गुण हृदय उतारे, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाव चुकाया, हर जियो मेले आप मिलाए, गुर

नहीं पाई। आप पे दया करे सुखदाता, गुण में गुणी समाया। इस जग में मोह है पसारा, मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा। तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया। कर्म होवे ता सतगुरु पाए, हौ मैं मैल शब्द जलाए। मन निर्मल ज्ञान रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया। तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हृदय वसाई। कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू आपे सहज समाया। नाम अमोलक अगम अपारा, ना को हुआ तो लनहारा। आपे तोले तोल तोलाए, गुर शब्दी मेल।

बहुते पेख करे पेख तारी, बिन शब्दै हो मैं किने न मारी, जीवत मरे ता मुक्त पाए, सच्चे नाई समाया, अज्ञान तृष्णा इस तने जलाए। इस दी बूझे जे गुर शब्द कमाए, तन मन

तौ शरणाई उबरे करते आपे मेल मिलाया पूरे शब्द भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई मन तन सच्ची भगती राता सच्चे सो चितलाया हौं मैं विच सब जले शरीरा कर्म होवे पेटे गुरपूरा अंतर अज्ञान शब्द बुझाए सतगुर ते सुख पाया मन मुख अंधा अंध कमाए बहु संकट जो नी परमा।

मारे गुर कै शब्द मरे मन मारे हों मैं जाए समाया आवन जाने परज विगोई बिन सतगुर थिर कोई न होई अंतर जोत शब्द सुख वस्या ज्योति जोत मिलाया पंच दूत चित में विकारा माया मोह का इहो पसारा सतगुर सेवे ता मुक्त होवे पंच दूत वस आया बाज गुरु है मोह गुबारा फिर डुब्बे वारो वारा सतगुर पेटे सच दृढ़ाए सच नाम मन पाया साचा दर साचा दरबारा सच्चे सेवे शब्द प्यारा सच्ची तुन सच्चे गुण गावा सच्चे माए समाया करे अंदर को कर पाए गुर कै शब्दे सह सुवाए उथे सोग विजोग ना व्यापे सहजे सह समाया दूजे पाए दुष्टा का वासा पौंदे फिरे बहु मोह प्यासा कुसंगत बह सदा दुख पावे दुखो दुख कमाया सतगुर बाजो संगत ना होई बिन शब्दे पार न पाए कोई सहजे गुण रवे दिन राती ज्योति जोत मिलाया काया बिरख पंखी विचवासा अमृत चुगे गुर शब्द निवा

सच्चा आप सवारण हारा, अवर न सूझ बीजी कारा। गुरुमुख सच वसै कट अंतर, सहजे सच समाई है। सबना सच वसै मन माही, गुर प्रसादी सहज समाई। गुर गुर करत सदा सुख पाया, गुर चरणी चितलाई है। सतगुर है ज्ञान, सतगुर है पूजा, सतगुर सेवी अवर न दूजा। सतगुर ते नाम रतन तन पाया, सतगुर की सेवा पाई है। बिन सतगुर जो दूजे लागे, आवे जाए परम मरे अपागे। नानक तिन की फिर गत होवे, जी गुरमुख रहे शरणाई है। गुरमुख प्रीत सदा है साची, सतगुर ते मांगो नाम अजाची। ओ दयाल कृपा कर हर जियो, रख ले वो गुर शरणाई है। अमृत रस सतगुरु चुआया, दसवें द्वार प्रगट होए आया। तह अनहद शब्द वजह तुन बाणी, सहजे सहज समाई है। जिनको करते तुर लिख पाई, अंग दिन गुर गुर करत विहाई। बिन सतगुर को सीजे नाही, गुर चरणी चित लाई है। जिस पावे तिस आपे दे, गुरमुख नाम पदार्थ ले। आपे कृपा करे नाम देवे, नानक नाम समाई है। ज्ञान रतन मन प्रगट पया, नाम पदार्थ सहजे लया। ए वड्याई गुर ते पाई, सतगुर को सद बल जाई है। प्रगटिया सूर निस्मिटिया अंधियारा, अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा। सतगुर ज्ञान रतन अतपारी, कर्म मिले सुख पाई है। गुरमुख नाम प्रगटी है सोए, चहु जुग निर्मल हच्छा।

गुरुमुख नाम समाय समावे, नानक नाम ते आई है। पगता मुख अमृत है बाणी, गुरुमुख हर नाम आख वखाणी। हर हर करत सदा मन बिगसे, हर चरणी मन लाई है। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किछ नाही, सतगुरु ते समझ पड़ी मन माही। हो दयाल कृपा कर हर जियो, सतगुरु की सेवा लाई है। जिन सतगुरु जाता

सतगुरु मन वसिया लिव लाई, आप मिलिया जग जीवन दाता, नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अविनाशी, सर्वे रव रहा कटवासी, तिस बिन

जन नानक नाम जपो पव खंडन, सुख सहजे रहन विहानी है। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। जो शरण परे तिसकी पत राखे।

जय पह करते हर अंधिन नाम वखानी है। किसी जोर अंकार बोलन का, किसी जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक तर अवरना काई, तू करते राख मैं निमानी है। निमाने मान

हर हर नाम जिन्ही सदा ते आया, तिन्ही गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुरमस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक।

गगन रहाया हुक्मे चरणा, अगन उपाए ईदन मह बांधी, सो प्रभ राखै पाई हे। जी जंत को रिजक संभाहे, करण कारण समरथ अपाहे, खिन मह थाप उथापन हारा, सोई तेरा सहाय हे। मात गर्भ में जिन प्रत पालिया, सास गिरास होए संग समालिया, सदा सदा जपिय सो प्रीतम, वड्डी

तनवंता, जिस मन वस्या हर पगवंता, मात पिता सुत बंदक पाई, जिन ए श्रेष्ठ उपाई है, प्रभ आए सरना पौ नहीं करना, साथ संगत ने चो है तरना, मन बच कर्म अरादे करता, तिस नाही कदे सजाई है, गुण निदान मन तन में रव्या, जन्म मरण की जोन न पव्या, दुख विनाश किया सुख डेरा, जा तृप्त रहे आगाई है, मीत हमारा सोई स्वामी। थान थनंतर अंतर जामी, सिमर सिमर पूरन परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है, हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन

बंधन तोड़ लिए प्रभु मोले, कर कृपा कीने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार सहज तुन साची कार कमाई है। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में सोब सुहाई है। जय जयकार जपो जगदीश है, बल बल जाई प्रभ अपने ईश है, तिस बिन दूजा अवर न दीस है, एका जगत सवाई है। सत सत सत प्रभ जा

जित उतरै पूख प्यासा है, सगले कर्म धर्म जुग सादा, बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा, पई कृपा नानक सत्संगे, तो तन फिर आनंद उलासा है, तन अंधी फिर चपल सियाना।

तन कछु ना समझै चंचल काचे, बहुर बहुर फिर ही संग मांगै, ओ बात जाने कर हासाए। आई आ गया फिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया।

जम फासा है, मन मुख आवे मन मुख जावे, मन मुख फिर चोटा खावे, जितने नरक से मन मुख पोगे, गुरुमुख लेप ना मासा है, गुरुमुख सोए जे हर जियो।

करहें पगत अर रंग अपारा खिन मैं था पुथा पनहारा पारो तोल बेअंत स्वामी हुकुम मन पगती जाहे जिस देहे।

संत संग महा सुख पाया, देख दर्शन इहो मन पी जाहे, मारू महला पंजवा सोलहे, इको अंकार सतगुर प्रसाद। गुरु गोपाल गुरु गोविंदा, गुरु दयाल सदा बख्शिंदा, गुरु शासत सिमरत खट कर्मा, गुरु पवित्र स्थाना है, गुरु सिमरत सब किल विखनास है, गुरु सिमरत जम संग न फास है, गुरु सिमरत मन निर्मल होवे, गुरु काटे अपमाना है, गुरु का सेवक नरक न जाए, गुरु का सेवक पार ब्रह्म त्याए, गुरु का सेवक साथ संग पाए, गुरु करदा नित जी दाना है, गुरु द्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर पेट हर जस मुख पणिए, कल कलेश मिटाए सतगुर, हर दरगे देवे माना है, अगम अगोचर गुरु दिखाया, पूला मार्ग सतगुर पाया, गुर सेवक को विघ्न न पगती, हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है, गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहा गोसाई, ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहत्याना है, गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले ने जो है माई, सत संतोख दिया गुरु पूरे, नाम अमृत पी पाना है, गुर की बाणी सब माए समाणी, आप सुनी ते आप वखाणी, जिन जिन जपी ते सब निस्तरे, तिन पाया ने चल थाना है, सत गुर की महिमा सत गुर जाने, जो किछ करे

वासी बाल सुभाय अतीत उदासी अनेक रंग करें बहु पांति जो पिता पूत लड़ाएदा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई तामिली है जान ले मिलाई गुरुमुख प्रगट पया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लिखाएदा तू आपे करता कारण करना श्रेष्ठ उपाय तरी सब तरना जन नानक शरण पया हर द्वारे हर पावे ला।

श्रवण सुनिए। दूजी अवर न जापस काई सगल तुम्हारी तारणा, आप चितारे अपना किया आपे आप प्रवथिया, आप उपाय रचुन पसारा आपे कट कट सारणा। एक उपाय वड़ दरबारी, एक उदासी एक करबारी, एक पूखे एक त्रिपत अघाए, सब सह तेरा पारणा। आपे सत सत सत साचा, ओत पोत भगतन संगराचा, आपे गुप्त आपे है प्रगट अपना आप पसारणा। सदा सदा सद होवन हारा, ऊंचा अगम अथा।

बैर नाही को बैरी, सब एको है पालना। डर चूके बिन से अंधियारे, प्रगट पए प्रभ पुरख निरारे। आप छोड़ पए शरणाई, जिसका साथ इस कालना। ऐसा को वड पागी आया, आठ पहर जिन खस

मोह सोग सब परम मिटाए, एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसें बो देवा।

सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई जिसनो लाए ले सो सेवक जिस वड पाग मथाएना गुर की महिमा वेद न जाने तुच्छ मात सुन सुन वखाने पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लाएना जा की सोए सुनी मन जीवे हृदय वसे ता ठंडा थीवे गुरमुखो अलाए ता सोबा पाए तिस जम के पंथ न पाएना संतन की शरणाई पड़िया जियो प्राण तन आगे तरिया सेवा सुरत न जाना काई तुम करो दया किरमाएना निर्गुण को संग लिहो रलाए कर कृपा मोह टहले लाए पखा फेरो पीसो संत आगे चरण तोए सुख पाएना बहुत दुआरे परम परम आया तुमरी कृपा ते तुम शरण आया सदा सदा संतें संग राखो इहो नाम दान देवाएना।

सिमरै सगले हर जना, सिमरै ब्रह्मे बिशन महेशा, सिमरै देवते कोड़ ते तीसा, सिमरै जक्ष दैत सब सिमरै, अगनत ना जाई जस गना, सिमरै पशुपंखी सब पूता, सिमरै वन पर्वत अवधूता, लता बलि साख सब सिमरै, रव रहया स्वामी सब मना, सिमरै थूल सूखम सब जनता, सिमरै सिद्ध साधिक हरमंता, गुप्त प्रगट सिमरै प्रभ मेरे, सगल पवन

परम रुणा गुरु का शब्द वसै मन जाके दुख दर्द प्रमता का भागे सुख सहज आनंद नाम रस अनहद बाणी सहज तुना सो तनवंता जिन प्रवत्याया सो पतवंता जिन सा

प्रभ समरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेरवाना। हर दाता जी जंत पे खारी, जन बांचे जा चंगना। मांगो जन तूर परम गत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो। दीर्घ रोग मिट

पंगना मन तन अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल थल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूर है एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट पंडार ना।

एक रविया सब ठाई तिस बिन दूजा कोई नाही। आद मद अंत प्रभ रविया त्रिष्ण बुझी परमंगना। गुर परमेश्वर गुर गोविंद गुर कर्ता गुर सद बख्शंद। गुर जप जाप जपत फल पा।

सारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हर बाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुर प्रसाद तू साहेब हों सेवक।

अविनाशी अवगत अगोचर सब किछ तुझ ही है लगा। श्री रंग बैकुंठ के वासी मछ कछ कूरम आ गया औतरासी। केशव चलत करे निराले कीता लोड़े सो होएगा। निराहारी निर्वैर समाया तार खेल चतुर पुज कहाया। सावल सुंदर रूप बनावे।

शंख चक्र गदा है तारी, महासारथी सत्संगा पीत पीतंबर त्रिभवन धनी, जगन्नाथ गोपाल मुखपणी, सारंग तार भगवान बीठला, मैं गणत न आवे सरबंगा, नेह कंटक नेह केवल कही है, तनंजय जल थल है मही है, मृत लोक पयाल समीपत अस्थिर थान जिस है अपग्गा, पतित पावन दुख पै पंजन, अहंकार निवारण है पव खंडन, भक्ति तोखत दीन कृपाला, गुणे ना कित ही है पिगा, निरंकार अचल अडोलो।

तुदलेप नहीं एक तिलरंगा। एक जी गुण कमन बखाने, सहस फनी शेख अंत ना जाने। नवतन नाम जपे दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कह संगा। ओट गही जगत पित सरनाया।

मस्तक लाए परम पद पावो, जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लै हृदय पराते, सगल नाम निधान तिन पाया, अनाद शब्द मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला, कहो नानक भगत पै शरणाई।

दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदक ले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पैखा का, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा। सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे होई हाजी, सो मौला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफतरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले मह मौला, तस्बी याद करो दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल में जानो सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फाना।

तिनकी तोड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरै नाही काहू बेरा, तिनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अंकार तजाए, तिस जन को उपदेश

आस सास प्रभु विसरे नाही, आठ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते। तू समरथ वडाल का मारू मेला पंजवा, इको अंकार सतगुर प्रसाद। चरण कमल हृदय नित कारी, गुर पूरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्थ तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे, सास दरास समाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग पज अचुत स्वामी, दरगे शोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद, सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा, सासत सिमरत वेद बखान।

राती पूरन पूर रहा दिन राती जो जो जपै सोई वडपागी बौर न जोनी पावना जिसनो बिसरे पुरख विधाता जलता फिरे रहे नितताता अकिरत कने को रखे न कोई नरक कोर में पावना जियो प्राण तन तन जिन साजिया मात गर्भ में राख निवाजिया तिस्यो प्रीत छाड़ अनराता काहू सिरे ना लावना तार अनग्रो स्वामी मेरे कट कट वसे सबन कहने रे हाथ हमारे कछुए नाही जिस जाना है तिसे जनावना जाके मस्तक तुर लिख पाया तिस ही पुरुख ना व्यापे माया।

तिल नहीं बदे कटे ना कटाए, सोई होए जे करते भावे, कह कह आप वजावना अंधकूप ते से ही काडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे कर अपने, मेरे साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहना जाई, अचरज रूप वड्डी वड्याई।

पहला महल कुचजी मरवड़ी काली मनुख सुध जे गुण होवन ता पिर रवे नानक अवगुण मुंद महला पहला साच सील सच संजमी सा पूरी परवार नानक एहन सदा पली पिर कहे प्यार पौड़ी अपना आप पछाणिया नाम निधान पाया कृपा करके अपनी गुर शब्द मिलाया गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया हर रस जिन्नी चाखिया अन रस थाक रहाया हर रस पी सदा तृप्त पहे फिर तृष्णा पुख गवाया। श्लोक महला तीजा फिर खुशिये तन रावीए तन उर नाम सिगार नानक तन आगे खड़ी शोभावंती नार। महला पहला ससुरे पेये कंत की कंत अगम अथाओ नानक तन सुहागणी जो पावे वे परवाह। पौड़ी तख्त राजा सोभ है जे तख्त लायक होई जिन्नी सच पछाणिया सच राजे से ए पूपत राजे ना आखिए दूजे पाए दुख होई कीता क्या साला ये जिस जांदे बिलम ना होई नेचल सच्चा एक है गुरमुख बूजे सो नेचल होई।

जे सत गुरु माहि समाए मैला तीजा। मन के अधिक तरंग क्यों दर्शाए विचुटी है, जे राचे सच रंग गूड़े रंग अपार के, नानक गुर प्रसादी छुटी है। जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है, क्यों कीमत की जय आपे सृष्ट सब साजियन आपे वर्ती जय। गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत की जय, गुरु शब्दी कमल विकासिया इव हर रस पी जय।

मन माए समाना, हर जियो का महल पाया सच लाए त्याना, जिन गुरु प्रसादी मन जीतिया जग तिन्ह जिताना। श्लोक महला तीजा, जोगी होवा जग पवा कर कर पीखिया ले ओ, दरगे लेखा मंगी है किस किस उत्तर दे ओ, पिखिया नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल, देखी हाथ ना लदिया सब बदी जमकाल, नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम समाल। मैला तीजा, जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवियो ना कोय, ऐसा सतगुरु लोड़ लहो जिस जेवड़ अवर ना कोय, तिस सरनाई छूटी है लेखा मंगे न कोय, सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए, नानक सच्चे हुक्म मने सच्ची वड्याई दे, सच्चे माहि समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी, सूरे ए ना आखिए अंकार मरे दुख पावे, अंधे आपना पछाणनी दूजे पच जावे, अत क्रोध स्यों लूज दे अगे पिछे दुख पावे, हर जियो अंकार।

नानक जे इव मारिये गुरसबदी विचार, इव मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोए, नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुर पेटे सोए पौड़ी। दो वै तरफा उपायुन विच सकत शिव वासा, शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा, गुर सेवे सांत पाये जब सांस गिरासा, सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा, नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा, होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार, नवखंड मध्य पूजिया अपने चज विचार, मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए, झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा, आप उपाय करे आप आपे नजर करे, आपे दे वडिआइया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे, अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे, गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजे, सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजे, मन विचार हर जप करे हर दरगह सीजे। श्लोक महला पहला।

इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास। महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाए, हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुबाए पौड़ी। मनमुख काल वे आपदा मोय माया लागे, खिन में मार पछाड़ सी पाए दूजे ठागे। फिर वेला हथ ना आवई जमका डंड लागे, तिन जम डंड ना लगे जो हर लिव जागे। सब तेरी तुद छड़ावनी सब तुदे लागे। श्लोक महला पहला सर्बे जोय अगच्छमी दुख कनेरो आथ, कालर लादस सर लागणो

ठाकुरमान माथे उबे जम मारसी नानक मेलन नाम पौड़ी आपे पिंड सवार्यों विच नवनिद नाम इक आपे परम पुलायन तिन ने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन के मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला पोल तन पै मन वसे है कै पादर हीड अत डापन दुख कणो तीने था परीड मेला पहला मांदल बेद से बाजनो कणो तड़िए जोए नानक नाम समाल तू बीजो अवर न कोई महला पहला सागर गुणी अथा किन हाथा ला देखिए वड्डा वे परवाव सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे ना लथी पुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावे जो इच्छन सो पाएंदे हर नाम ते आवे जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे तरम राय तिन का मित है जम मग ना पावे हर नाम ते आवे दिन सरात हर नाम समावे श्लोक महला पहला सुनिए एक वखाणी है सुरग मृत पयाल।

सच्चे बन जा रहा जिन हर तन पल्ले हर कृपा ते हर पाए जा आप हर कल्ले श्लोक महला तीजा मन मुख वापारे सार न जाननी बिख विहाजे बिख संग्रह बिख्यो तरह प्यार बारो पंडित।

तब सच्चो सच वर्तदा सदा सच न्याओ अमृत का रस आया मन वस्या नाओ श्लोक मैला पहला। हौ मैं करी ता तू नाही तू हो मैं हौ नाही बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत न पाये अलख वसे सब माहे सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसे मन माहे आप गया प्रम पो गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाइए उत्तम मत तराहे नानक सोहंग हंसा जप जापो त्रिभुवन किसै समाहे। महला तीजा मन मानक जिन परखिया गुर शब्दी विचार से जन विरले जानिए कल युग विच संसार आपैनो आप मिल रहा हो मैं दुबदा मार नानक नाम रते दुत्तर तरे पौजल बिखम संसार पौड़ी मन मुख अंदर न पालनी मुठे अहमते चारे कुंडा पव थके अंदर तिख तत्ते सिमरत सासत ना सोधनी मन मुख विगुते बिन गुर किने न पायो हर नाम हर सत्ते तत ज्ञान विचारया।

सब कोए पौड़ी सबे थोक विसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुके जन्म ना जाए मर सच नाम आधार सोग ना मोए जर नानक नाम निदान मन में संजतार।

पाने जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया नानक तिस शरणागती जिन जगत उपाया श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं तै की नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पत्री वाचनी सुखी हूँ सुखसार सो ब्राह्मण पला आखिए जे बूझे ब्रह्म विचार हर साल

काजल हार तमूल रस बिन पसे हवरस छार पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच सच सब धारिया गुरमुख की तो था।

दुर्जन तू जल पहाड़ी वे छोड़े मर जाए, कंता तू सौ से जुड़ी मैं डाहबो दुख लाए। महला पंजवा। दुर्जन दूजा भाव है वे छोड़ा हो मैं रोग, सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग। पौड़ी तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन, तुद सिरजा सब संसार तू नायक सगल पौन। तेरी कुदरत कोई न जाने मेरे ठाकुर सगल रौन, तुद अपड़ कोई न सके तू अब नासी जग उधरण।

होर तो पाए न लभई अब नासे श्रेष्ट करण दखणे महला पंजवा। जे तू वतै अंगणे हब धरत सुहावी होए हिकस कंत बाहरी मैंडी बात न पुछे कोई।

के सतवंता, जति सती प्रभु निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारयो आपे खेलंता, यो आवागमन रचायो कर चोज देखंता। जिस बौड़ गर्भ ना पावई जिस देव गुरमंता, जो आप चलावे त्यों चल दे किस वस ना जनता। दखने महला पंजवा कुरिये कुरिये वैद्या तलगाड़ा महरेर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवा सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आतसड़ी मंज नैनू बिया ढल पबन ज्यो जुम्यो। महला पंजवा पोरे पोरे

अपर परा जिस मेले सतगुर आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा दखने महला पंजवा गैड डड़ा त्रिन छाया।

शिव सकत वरताइया। शिव अग्रह शक्ति हारया एव हर पाइया, एक विचों ही तुझ रखया जो सत

गुजड़ाल दम लाल मथा ही प्रगट थिया सोई सुहावा थान जिथे प्रिय नानक जी तू उठिया पौड़ी जा तू मेरा।

जित भुख ले जावे प्रभ जीओ देवो दर्शन आपना जित ढाडी तृप्तावे अरदास सुनी दातार प्रभ ढाडी को महल बुलावे प्रभ देख दया दुख भुख गई ढाडी।

मन तन अत गुलाल नानक बिन लावै आलू दिया जिते होर ख्याल पवड़ी हर जियो जा तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा गुरु भोजन पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमती सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रियां वस कर दित्ती ओ सतवंता साड़ा जित लाइयन तित्तै लगदियां नै खिंजो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुर अंदर वाड़ा।

पौड़ी बिन कर्मा हर जियो न पाईए बिन सतगुर मनवा न लगे धर्म धीरा कर अंदरे यो पापी मूल न तगे अह कर करे सो अह कर पाए एक घड़ी मोहत न

जिना यकीना हिक सौ महला पंजवा जान वसंदो मंज पछाणु को हेकड़ो तैतन पड़दा नाहे नानक जय गुरु भेटया महला पंजवा मत

तुम गरीब मस्त सब लोक सिदासी, काजी शेख मसाय का सब दे उठ जासी। पीर पैगंबर औलिए को थिर न रहासी, रोजा बाग निवाज कथे विभिन बुझे सब जासी। लख चौरासी मेदनी सब आवे जासी, नेचल सच खुदाए एक खुदाए बंदा।

सुखदायक ज्ञान रास नाम धन सौ प्यों इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्व सुख पायक मैं नालों कदे न विछड़ै हर पिता सबना गल्ला लायक श्लोक दखने महला पंजवा नानक कचड़िया से तोड़ ढूंढ सजन संत पक्या ओए जीवन दे विछड़ै ओए मोया न जाही छोड़ महला पंजवा नानक बिजलियां

कीमत कहन न जाइए सच सा अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुद नो तोलै बन्नन गड़न समरथ है ओ पत सब पर लै करण कारण समरथ है घट घट सब बोलै रिजक समाहे सब सै।

कहलाऊ। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। जी बधो सो धर्म कर छापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर थापो, काको कहो कसाई। मन के अंधे आप न बूझो, काहे बुझावो पाई, माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिर था जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सुख को पूछो जाई, कह कबीर राम रम छूटो, नाहे तबूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है, जो लो मनो न तजे विकार, जे घर बन संसार किया ते पूरे संसार। सार सुख पाई है रामा, रंग रवो आत्मा राम रहो, जटा भस्म लेपन किया कहा गुफा में बास। मन जीते जग जीतया, जाते बिछड़ा ते होए उदास। अंजन दे सब कोई सुख चान माहे बिडान, ज्ञान अंजन जे पाया ते लोयन परवान। कह कबीर अब जानया।

राम उदक दे जन पिया तुम बहुर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझिया आसा ते भया निराश। सब सच नजरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस

जिनगढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावण, काहे की जत है मन पावन, जब जम आए केस ते पकड़े तैं हर

जीड़े ममता जालिया पिंड वना हम बै चिंता जाल तन जालिया बैरागी अड़े जे मन मृतक होए वना हम बै सतगुर बिन बैराग न हो।

पुर्जा पुर्जा कट मरे कभू न छाड़े खेत। कबीर का शब्द राग मारू बानी नाम देव जी की। एक ओंकार सदगुर प्रसाद चार मुकत चार सिद्ध मिलके दूले प्रभु की शरण पर्यो। मुकत भयो चौहो जुग जान्यो जस कीरत माथे छत्र धर्यो। राजा राम जपत को न करयो गुरु उपदेश साध की संगत। भगत भगत ताको नाम पर्यो रहाओ शंख चक्र माला तिलक विराजत। देख प्रताप जम डर्यो निर्भव भय राम बल गर्जत। जन्म मरण संताप हिर्यो अम्बरीक को दियो अभय पद। राज भीकन अधिक करयो नवनिध ठाकुर दई सुदा मैं। धुरु अटल अज हूँ न टर्यो भगत हेत मार्यो हर नाखस। नरसिंह रूप होय देत हर्यो नामा कै भगत बस के सब।

पेट भरो पशुआ जो सोयो, मनुख जन्म है हारे रहा। साध संगत कब हो नहीं कीनी, रचियो धंधा झूठ। स्वान सूकर बायस जिमे, भटकत चाल्यो ऊठ।

काल उठ जाएगा राव। लालच लागे जन्म गवाया माया परम भुलाएगा, धन जो बन का गर्व न कीजे कागज जो गल जाएगा। जो जम आए केस जय पटके ता दिन कृष्ण बसा।

चार पदार्थ अष्टमा सिद्ध नव निध कर तब ताके हर हर हर न जपस रसना अवर सब छाड़ बचन रचना रहाओ नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अक्षर माहे व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरना है। सहज समाध उपाध रहत हो बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत जन।

नानक देख जाने तिस जैसे कर्म मिले गुण गहली। आषाढ़ भला सूरज गगन तप है, धरती दुख सह सुख है अगन पक है। अगन रस सुख है मरिए सुख है, भी सो किरत नहारे। रस फिरे छाया धन काके, टीन लवे मंज पारे। अवगुण बाद चले दुख आ गए, सुख तिस साथ संभाले। नानक जिसनो यो मन दिया, मरण जीवन सब नाले। सावन सरस मना घन वर्ष रुत आए, मैं मन तन सौ पावे फिर पर देश सिधाए। फिर घर नहीं आवे मरिए हावे, दामन चमक।

से रंगमानी बरसै निज काली क्यों सुख बाली दादर मोर लवंते प्रिय प्रिय चवै बबीहा बोले गुयंगम फिर डसंते मच्छर डंग सायर पर सुबर बिन हर क्यों सुख पाई है नानक पूछ चलो गुरु अपने जय प्रभु तै ही जाइए असुन आओ फिरा साधन झूर मुई सामिली है प्रभु मेले दूजे पाए हुई झूठ विभूति तापिर मोती को कह कहां से फुले आगे काम पिछे रुत जाडा देश चलत मन डोले दै दिस साख हरी हरियावल सहज पचै सो मीठा नानक असुन मिलो प्यारे सतगुर पए बसीठा कतन किरत पया जो प्रभु पाया दीपक सहज बलै तत जलाया दीपक रस्ते लो धन फिर मेलो धन ओ मा है सरसी अवगुण मारी मर न सी जय गुण मारी तामरसी नाम भगत दे निज घर बैठे अजो तिनाड़ी आसा नानक मिलो कबड़ दर खोलो एक घड़ी खतमासा मंगर माओ भला हर गुण अंक समावे गुणवंती गुण रवे मैं फिर नेचल पावे नेचल चतुर सुजान विदाता चंचल जगत सबाया ज्ञान ज्ञान गुण अंक समाने सब पाने का पाया गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख भागे नानक साधन ना प्यारी अब भक्ति तिर आगे ओख तुखार पड़े वर्ण तृण रसोख आवत की नाही मंतन वसे मुखे मंतन रव रहा जग जीवन गुर सब धी रंग मानी अंडर जीरज से तज उद्भुज गट गट जोत समानी दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो नानक रंग रवै रस रसिया हर्षो पीत स्नेहो माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया साजन सहज मिले गुण गय अंक समानिया प्रीतम गुण अंके सुन प्रभु बंके सुरभावा सरनावा गंग जमुन तय बेणी संगम सात समुद्र समावा पुन दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता नानक माघ महारस हर जप असर तीरथ नाता फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया अनदिन रस भया आप गवाया मन मोह चुकाया जा तुझ पाया कर कृपा घर आओ बहुते वेत करे फिर बाजो मैली दान खाओ हार डोर रस पाट पटंबर फिर लोड़ी सिंगारी नानक मेर लही गुरु अपने घर वर पाया नारी बेदस मारुति छिट्टी वार भले घड़ी मूर्त पर सारी

पाखो खेती हर गुर हेती, जागर शोर न लागे। जम मगन जाओ ना दुख पाओ, जम का डर पो भागे। रब सस दीपक गुरमत द्वारा, मन साचा मुख त्यावे। नानक मूर्ख अज

सच संभालिया अहमित देख बिचारिया दावत पंच रहे कर जानिया काम क्रोध बिख मारिया अंतर जोत भई गुरु साखी चीने राम करमा नानक हो मैं मारपति ने तारा चढ़े आलमा गुरमुख जाग रहे चूकी अवमानी राम अनगिन पोर पया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुरु दिया हर चरणी लिव लागे प्रगटी जोत जोत मैं जाता मन मुख परम भुलानी नानक पोर पया मन मान्या जागत रहन विहानी अवगुण विसरिया गुणी घर किया राम एको रव रया अवर न दिया राम रव रया सोई अवर न कोई मन ही ते मन मान्या जिन जल था त्रिभुवन घट घट थापया सो प्रभु गुरमुख जान्या करण कारण समरथ अपारा त्रिपद मेट समाई नानक अवगुण गुण समाने ऐसी गुरमत पाई आवन जान रहे चूका भोला राम हो मैं मार मिले साचा चोला राम हो मैं गुर खोई प्रगट होई चूके सोग संतापे ज्योति अंदर ज्योत समानी आप पछाता आपे पेयड़ घर सबद पतिनी सावरड़ तिर पानी नानक सतगुर मेल मिलाई चूकी कान लोकानी तुखारी महला पहला भोला बड़ा भुली भुल भुल पछो तानी फिर छोड़ी सुती फिर की सार न जानी फिर छोड़ी सुती अवगन मुती किस दन विदन राते काम क्रोध अहंकार विगुती हो मैं लगी ताते उडर हंस चलिया फुरमाया बस मैं

चढ़ सवाया अपरम्पर आपे था पोथा पे किस भाव सो हो वै नानक मीरा हीरा बेदया गुण कह हार परो वै गुण गुण समाने मस्तक नाम निशानो सच साच समाया चूका आवन जानो सच साच पछाता साच है राता साच मिले मन पावे साचे ऊपर अवर्ण दिस साचे साच समावे मोहन मोलिया मन मेरा बंधन खोल निरारे नानक ज्योति ज्योत समानी जा मिलिया अत प्यारे सजगर खोज ले साचा गुर थानो मनमुख न पाई है गुरमुख ज्ञानो देव सजदानो सो परवानो सजदाता वडदाना अमर अजूनी अस्थिर जापै साचा महल सिराना दो तू चापक लेख न लिखिया प्रगति ज्योत मुरारी नानक साचा साचा राचा गुरमुख तरी है तारी सुखारी महला पहला ए मन मेरिया तू समझ अतीत आनिया राम ए मन मेरिया छड़ अवगुण गुणी समानिया राम बहु साध लुबाने किरत कमाने विसरिया नहीं मेला क्यों दुत्तर करिए जम डर मरिए जम का पंथ दुहेला मन राम नहीं जाता साज प्रभाता अवगत

जब लग दर्श न होए क्यों अमृत पीवी है राम, क्यों अमृत पीवी है हर दिन जीवी है, किस दिन रह न जाए हम दिन प्रो प्रो करे दिन राती, फिर दिन प्यास न जाए अपनी कृपा करो हर प्यारे, हर हर नाम सब सारिया गुर के शब्द मिलिया मैं प्रीतम, हर सत गुर वित्तो वारिया जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम। मेरे अंतर हुए विगास प्रयो प्रयो सत्य नित चवा राम, प्रयो चवा प्यारे शब्द निस्तारे बिन देखे तृप्त न आवे, शब्द सिगार होवे नित कामन हर हर नाम पे आवे। दया दान मंगत जन दीजै मैं प्रीतम देहो मिलाए, अन दिन गुरु गोपाल ते आई हम सतगुरु विट्टो कुमाए, हम पात्र गुरु नाव बिख पव जल कारिय राम, गुरुदेवो शब्द सुभाए मैं मूड निस्तारिय राम। हम मूड मुगद किछ मिट नहीं पाई तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मेले हम निर्गुणी निमाणिया, अनेक जन्म पाप कर परमे हुन तो शरणागत आए, दया करो रख ले वो हर जियो हम लागे सतगुर पाए, गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम, काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया क्यों साथ गिरास विसारी है, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हो सतगुर के बलिहारी है, सतगुर आगे शीश टेक दियो जे सतगुर साचे भावे, आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे, तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा, जो तुम त्याए जगदीश ते जन पाओ बिखम तरा, बिखम पाओ तिन तरया सुहेला जिन हर हर नाम ते आया, गुरवास सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मिलाया, ज्योति ज्योत मिल ज्योत खवाणी हर कृपा कर तरणी तरा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा, तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा, तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लया, तन तन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे, जा बह गुरमुख हर नाम बोले जा खड़े गुरमुख हर हर कया, तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा, सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेव्या गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दोख सब बिन से जिन मन चित इक अरा दिया, तिनका जन्म सफल्यो सब किया करते जिन गुर बचनी सच पाखिया, ते तन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पाओ बिखम तरे, सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेविया गुरमत हरे, तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला, हमरे हाथ किचना है जा तू मेले ता हों आए मिला, जिन को तू हर मेले स्वामी सब तिन का लेखा छुटक गया, तिनकी गणत ना करो को भाई जो गुरबचनी हर मेल लया, नानक दयाल होआ तिन ऊपर जिन गुर का पाना मनिया पला, तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हों तिवे चला, सुखारी महला चौथा तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तिन तू त्याया मेरा राम जिन कै तुर लेख माथ, जिन को तुर हर लिख्या स्वामी तिन हर हर नाम आरा दिया, तिन के पाप इक निमक सब लाथे जिन गुरु बचनी हर जापिया,
तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया तिन देखे हो पया सनाथ तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ तू जल थल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी जिन जपिया हर मन चीत हर जप जप मुक्त कणी जिन जपिया हर ते मुक्त प्राणी तिनके उजल मुख हर द्वार ओए हलत पलत जन पै सुहेले हर राख लिए रखन हार हर संत संगत जन सुनो पाई गुरमुख हर सेवा सफल बनी तू जल थल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी तू थान सनम तर हर एको एक रव्या वन त्रिन त्रिभवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चव्या सब चवे हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते भावे सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सब चव्या तू थान सनंतर हर एको एक रव्या तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले जिस कै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिके हर गुण हृदय टिके तिस कै जिस अंतर पाव पावनी होई बिन पै किने ना प्रेम पाया बिन पै पार ना उतरिया कोई पाओ पाओ प्रीत नानक तिसे लागे जिस तू अपनी कृपा करे तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले तुखारी महला चौथा नावन पुरब अभीच गुर सतगुर दर्श पया दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी जन्म मरण दुख खिन में बिनसे हर पाया प्रभ अविनाशी हर आप करते पूर्व किया सतगुरु कुल खेत नावन गया नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श भया मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा अनदिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखने आया जिन दर्श सतगुरु गुरु किया तिन आप हर मेला आया तीरथ उद्दम सतगुरु किया सब लोक उदरण अर्था मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ खबर पई संसार आए त्रै लोआ देखने आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किल विख नाश गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी खर दर्शन कर गए गोष्ट तोआ प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व होआ दुतिया जमुन गए गुर हर हर जपन किया जागाती मिले दे पेट गुर पिछे लंघाए दिया सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम से आया गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागाती नेड़ ना आया सब गुरु गुरु जगत बोले गुर के नाई ले सब छुटक गया द्वितीया जमुन गए गुर हर हर जपन किया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलक भया सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लिया आड़ दाम किच पया ना बोलक जागातिया मोहन मुंडन पई पाई हम करें क्या किस पास मांगे सब पाग सतगुर पिछे पई जागातिया उपाव स्यान कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिल आए नगर मां जना गुर सतगुर ओट गही गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुरु गोविंद ते आया देही नगर कोट पंच चोर बटवारे तिनका छाओ थे ओ गवाया कीर्तन पुराण नित पुन होवे गुर बचन नानक हर भगत लही मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही सुखारी संत मैला पंजवा
एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोल कुमाई लालना गुर मन दीना सुन बचन तुम्हारा मेरा मन पीना एह मन पीना ज्यो जल मीना लागा रंग मुरारा कीमत कही न जाए ठाकुर तेरा महल अपारा सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दीना देहो दर्श नानक बलिहारी जीड़ा बल बल कीना एहो तन मन तेरा सब गुण तेरे खनिए वंजा दर्शन तेरे दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे निमख दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करे ता पीवा आस प्यासी तिरके ताई ज्यो चात्रिक बूंदे रे कहो नानक जीड़ा बलिहारी देहो दर्श प्रभ मेरे तू साचा साहिब साओ अमिता तू प्रीतम प्यारा प्राण हित चित्ता प्राण सुख दाता गुरमुख जाता सगल रंग बन आए सोई कर्म कमावे प्राणी जेहा तू फुरमाए जाको कृपा करी जगदीसर तिन साध संग मन जिता कहो नानक जीड़ा बलिहारी जियो पिंड तौ दिता निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुरु टाक लिया मोह पापी पर्दा ठाकन हारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते अविनाशी अवगत स्वामी पूरन पुरख विदाते पुस्तक कहन न जाए तुम्हारी कौन कहे तू कद का नानक दास ता कह बलिहारी मिले नाम हर निंका केदारा महला चौथा कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन राम नाम नित गाविये रे अगम अगोचर न जाई हर लख्या गुर पूरा मिले लखाविये रे रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी तिस जन को हर लिव लाविये रे सबको भगत करे हर केरी हर पावे सो थाए पावी रे हर

पंचदास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ राख हो कृपाल राव अनिक जतन गवन करो खट कर्म जुगत ध्यान करो उपाव सगल कर हारे हो नह नह हुते बिकराल शरण बंदन करुणा पते पाव हरण हर हर हर हरे एक तू ही दीन दयाल प्रभ चरण नानक आसरो उदरे प्रम मोह सागर लग संतना पग पाल केदारा महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सरनी आयो नाथ निधान नाम प्रीत लागी मन प्रीतर मांगन कौ हरदान रहाओ सुखदाई पूरन परमेश्वर कर कृपा राखो मान देहो प्रीत साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान गोपाल दयाल गोविंद दमोदर निर्मल कथा ज्ञान नानक को हर कै रंग रागो चरण कमल संग ध्यान केदारा महला पंजवा हर के दर्शन को मन चाहो कर कृपा सत्संग मिलाओ तुम देवो अपनो नाओ रहाओ करो सेवा सतपुरुष प्यारे जत सुनिए तत मन रहसाओ वारी फेरी सदा कुमाई कवन अनूप तेरो ठाओ सर्व प्रतपाले सगल संभाले सगलिया तेरी छाओ नानक के प्रभु पुरख विधाते कट कट तुझे दिखाओ किदारा मेला पंजवा

फूले कपट तपट बुझ तृष्णा जीवों पेख दरसारी कौन सो जतन उपाव कनेहा सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक संते संग उधारी किदारा महला पंजवा हर हर हर गुण गावो करो कृपा गोपाल गोविंदे अपना नाम जपावो रहाओ काड लिए प्रभ आन बिखेते साध संग मन लावो प्रम्पो मोह कट्यो गुरु वचनी अपना दर्श दिखावो।

नहीं आवे सर्व सुख पावे तिल नहीं पन्ने कालिया हर गुण निद गाए सहज सुभाए प्रेम महारस माता नानक दास तेरी शरणाई तू पूरन पुरख विदाता हर प्रेम भगत जन बेदिया से आन कत जाही मीन बिछोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चात्रिक बूंद प्यासिया कब रैन बिहावे चकवी सुख पावे सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सवागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास है बेनंती पत हर बिन प्राण टिकाही सास बिना ज्यों देहुरी कत तोबा पावे दर्श बिहूना साध जन खिन टिकना आवे हर बिन जो रहना नरक सो कहना चरण कमल मन बेदिया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतो न जाए निखेदिया हर स्यों जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक नाम आवे हो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण संग समावे खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा तारे निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख बिचारे नहीं दोख बिचारे पूरन सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वचल सुन अंचलो गया कट कट पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुभाया जन्म मरण दुख हारे कर गए लीने नानक दास अपने राम नाम उरहारे।

उस्तत निंदा दौ विवर्जत तजो मान अभिमाना। लोहा कंचन सम कर जाने ते मूरत पगवाना। तेरा जन एक आद कोई काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हर पद चीने सोई रहाओ। रज गुण तम गुण सत गुण कहिए ए तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीने तिन्ही परम पद पाया। तीर्थ व्रत नेम सुच संजम सदा रहने कामा। कृष्णा अर माया प्रम चूका चितवत आत्म रामा। जे मंदर दीपक परगासिया अंधकार कहनासा। निरपौ पूर रहे परम पादा कह कबीर जनदासा। किन्ही बन जिया कांसी तांबा किन्ही लौंग सुपारी। संतो बन जिया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी राव। साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी। साची बस के पार चलाए पहुँचे जाए पंडारी। आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी। आपे देह दिस आप चलावे नेचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गोन पर डारी। कहत कबीर सुनो रे संतो निधि खेप हमारी। रीकलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फिरावो। मन मतवार मेर सर पाठी अमृत तार चुआवो। बोलो भैया राम की दुहाई पीवो संत सदा मत दुर्लभ है जे प्यास बुझाई रहाओ। पै बिच पाओ पाए को बूझे हर रस पावे भाई। जेते कट अमृत सभी में पावे तिसे पियाई। नगरी एक नौ दरवाजे तावत बर्ज रहाई। त्रिपुटी छूटे दसवां दर फूले ता मन खीवा पाई। अबे पद पूर ताप तहना से कह कबीर बिचारी। उबट चलन ते ए मद पाया जैसे खोंद।

राव लालच झूठ विकार महामद ए बिद औद बिहान कह कबीर अंत की देर आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मटिया संग न कछ ले जाए। रहाओ देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लोग कुटम मिल हंस इकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुर पाटन बौर न देखे आए कहत कबीर राम की न सिमरो जन्म अकारस जाए। राग किदारा बाणी रविदास जियो की इको अंकार सतगुर प्रसाद। खत कर्म कुल संयुक्त है हर भगत हृदय नाहे चरनार बिंद ना कथा पावे सुपत तुल समान। रे चित चेत चेत अचेत काहे ना बालनी कह देख किस जात ते के पदे अमरियो राम भगत विशेख रहाओ। स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत लोग बपुरा क्या सारा है तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगला लुबत कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास। राग पैरों मैला पैरा कर पहला चौप दे

मन मनते मानिया मन सामने समाई मन जोगी मन बिनस बियोगी मन समझे गुण गाई गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब पर पुरलीना सात शब्द निस्तारा पैरो महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तन ही ना जर जीत्या सिर कालो रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो सात शब्द बिन कबहु न छूटत बिरथा जन्म भयो रहाओ तन में काम क्रोध हो ममता कठन पीर अत भारी गुरमुख राम जपो रस रसना इन विद तरकु तारी बैरे करन अकल भई होछी शब्द सहज नहीं बूझिया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंग न सूझिया रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिवलागी पैरो महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे सुचा देह कुमलानी नेत्री तुंद करण पै बहरे मन मुख नाम न जानी अंगुले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस पशु पे कदे होए नानी के अमृत का रस विरली पाया सतगुर मेल मिलाए जब लग शब्द भेद नहीं आया तब लग काल संताए अन को दर कर कबहू न जानस एक को दर्श प्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया नानक कह विचारा पैरो महला पहला सगली रैन सोवत गलफाही दिनस जंजाल गवाया किन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूटस दुख पारी क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ पूंदो कवल मन मुख मत होची।

नहीं पाए। शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंधलो तंद कमाई। खोयो मूल लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान विहूने। शब्द विचार राम रस चाख्या, नानक साच पति ने। पैरों महला पहला, गुर के संग रहे दिन राती। राम रसन रंग राता, अवर न जानस शब्द पछाणस। अंतर जान पछाता, सोजन ऐसा मैं मन पावे। आप मार अपरंपर राता, गुर की कार कमावे रहाओ। अंतर बाहर पुरख निरंजन, आद पुरख आदेशो। कट कट अंतर सर्व निरंतर, रव रहा सच वेशो। साच रते सच अमृत जेवा, मिथ्या मैल नाराई। निर्मल नाम अमृत रस चाख्या, शब्द रते पत पाई। गुणी गुणी मिल लाहा पावस, गुरमुख नाम वडाई। सगले दुख मिटे गुर सेवा, नानक नाम सखाई। पैरों महला पहला, हृदय नाम सर्व तन तारण। गुर प्रसादी पाइये, अमर पदार्थ ते किरतार्थ। सहज ज्ञान लिवलाइये, मन रे राम भगत चितलाइये। गुरमुख राम नाम जप हृदय, सहज खेती कर जाइये रहाओ। परम पेद पाओ कभो न छूटस, आवत जात न जानी। बिन हर नाम को मुक्त न पावस, डूब मुए बिन पानी। तंदा करत सगली पत खोवस, परम न मिटस गवारा। बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी, अंधले तंद पसारा। अकुल निरंजन स्यों मन मानिया, मन ही ते मन मुआ। अंतर बाहर एक को जानिया, नानक अवर न दुआ। पैरों महला पहला, जगन होम पुन तप पूजा। देह दुखी नित दुख सह, राम नाम बिन मुक्त न पावत। मुक्त नाम गुरमुख लह, राम नाम बिन बिसे जग जन्मा। बिक खावे बिक बोली बोले, बिन नावे नेफल मर प्रवना। राव पुस्तक पाठ ब्या करन वखाने, संध्या कर्म तिकाल करे। बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी, राम नाम बिन उर्ज मरे। दंड कमंडल शिखा सूत तोती, तीरथ गवन अप प्रमन करे। राम नाम बिन शांत न आवे, जप हर हर नाम सोपार परे। जटा मुक्त तन पखम लगाई, बस्तर छोड़ तन नगन भया। राम नाम बिन तृप्त न आवे, किरत के बांधे पेख पया। जेते जी जंत जल थल महियल, जत्र कत्र तू सर्व जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को, हर रस नानक चोल पिया।

ब्रह्म दिन देशो ब्राह्मण होई, जात का गर्भ न कर मूर्ख गावारा। इस गर्भ से चले बहुत विकार आ रहा हो, चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई, माटी एक सगल संसारा, बोविद पांडे करे कुमारा, पंच तत् मिल देही काकारा, काटवद को करे बिचारा, कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई।

साचा फल पाई। रे जन कैसे करो पुकारा, हुक्मे होआ हुक्मे वर्तारा। रहाओ एहो अकार तेरा है तारा, खिन मैं बिन से करत न लागे बारा। कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया। कहत नानक मार जी वाले सोए, ऐसा बूझो परम ना फूलो कोए।

चार हुक्म बुझ समान। कर्म होवे गुर कृपा करे, यह मन जागे इस मन की दुविधा मरे। मन का स्वभाव सदा बैरागी, सब में बसे अतीत अनुरागी। कहत नानक जो जाने पेयो, आद पुरख निरंजन देयो। पैरों महला तीजा, राम नाम जगत निस्तारा। पव जल पार उतारन हारा, गुर प्रसादी हर नाम समाल। सद ही निभ है तेरे नाल, रहाओ नाम ना चे

गुरु मिलाए, नानक हृदय नाम वसाए, पैरों महला तीजा, नामे उदरे सब जितने लो, गुरुमुख जिना प्राप्त होए, हर जियो अपनी कृपा करे, गुरुमुख नाम वडियाई दे रहाओ, राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब कुल उदाहरण हार, बिन नामे मनमुख जमपुर जाए, औखे होवे चोटा खाए, आपे करता देवे सोए, नानक नाम प्राप्त होए, पैरों महला तीजा, गोविंद प्रीत सनकादिक उधारे, राम नाम शब्द विचारे, हर जियो अपनी कृपा धार, गुरमुख नामे लगे प्यार रहाओ, अंतर प्रीत भगत साची होए, पूरे गुर मेलावा होए, निज कर वसे सहज सुभाए, गुरमुख नाम वसे मन आए, आपे वेखे वेखन हार, नानक नाम रखो उधार, पैरों महला तीजा, कल युग में राम नाम उधार, बिन नामे माथे पावे चार, राम नाम दुलभ है भाई, गुर प्रसाद वसे मन आई रहाओ, राम नाम जन पाले सोए, पूरे गुर ते प्राप्त होए, हर का पाना मन्ने से जन प्रवान, गुर के शब्द नाम निशान, सो से वो जो कल रहा तार, नानक गुरमुख नाम प्यार, पैरों महला तीजा, कल युग में बहु कर्म कमाए, ना रुत ना कर्म थाए पाहे, कल युग में राम नाम है सार, गुरमुख साचा लगे प्यार रहाओ, तन मन खोज करे मैं पाया, गुरमुख राम नाम चितलाया, ज्ञान अंजन सतगुर ते होए, राम नाम रव रहा ते लोए, कल युग में हर जियो एक होर रुत न काई, नानक गुरमुख हृदय राम नाम लियो जमाई, पैरों महला तीजा कर दूजा इको अंकार, सतगुर प्रसाद डुबदा मनमुख रोग व्यापे, कृष्णा जले अधिकाई, मर मर जमे ठौर न पावे, बिरथा जन्म गवाई, मेरे प्रीतम कर कृपा देहु बुझाई, हों मैं रोगी जगत उपाया, बिन शब्दे रोग न जाई, रहाओ सिमरत शास्त्र।

शब्द विचारे सो जन साचा, जिनके हृदय साचा सोई। साची भगत करे दिन राती, तां तन दुख न होई। भगत भगत कहे सब कोई, दिन सतगुर सेवे भगत न पाये। पूरे पाग मिले प्रभ सोई राव, मन मुख मूल गवावे।

कृष्णा अगन पचाए सदा आनंद राम रस राते हृदय नाम दुबदा मन पागी हर हर अमृत की तृप्ता से रहाओ आपे पार ब्रह्म सृष्टि जिम साजी।

गुरमुख मन वसाए आप तरे सगले कुल तारे जिनी राम नाम लिवलाए मेरा प्रभ है गुण का दाता अवगुण शब्द जलाए जिन मन वस्या से जन सोहे हृदय नाम वसाए कर दर मेल सतगुरु दिखाया रंग सोरलिया माने जो कुछ कहे सो पला कर माने।

गुरु प्रसाद परम पद पाया, सब उच्च पुजावन हार राव, सब में एको रब रया, गुर बिन बूझ न पाए, गुरमुख प्रगट होआ मेरा, हर प्रभ हम दिन हर गुण गाए, सुखदाता हर एक है, होर थे सुख न पाए, सतगुरु जिनी न सेविया, दाता से अंत गए पछताए, सतगुरु सेव सदा सुख पाया, फिर दुख न लागे ताए, नानक हर भगत प्राप्त होए, ज्योति ज्योत समाए, पैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना, फूला चोटा खाए, मर मर जमे सदा दुख पाए, डर की खबर न पाए, मेरे मन सदा रहो सतगुरु की शरणा, हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर शब्दे पव जल करना रहाओ, देख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार, अंतर तिसा भूख अत बहुती, पौकत फिरे दरबार, गुर के शब्द मरे फिर जीवे, तिनको मुक्त द्वार, अंतर शांत सदा सुख होवे, हर राख्या उदार, जो तिस भावे तिवे चलावे, करना किसु न जाई, नानक गुरमुख शब्द संभाले, राम नाम वडियाई, पैरों महला तीजा, हो मैं माया मोह खुआया, दुख खटे दुख खाए, अंतर लोभ हलक दुख पारी, बिन विवेक परमाए, मन मुख त्रिग जीवन सहसार, राम नाम सुपने नहीं चेतिया, हर सो कदे न लागे प्यार रहाओ, पशुआ कर्म करे नहीं बूझे, कूड़ कमावे कूड़ो होए, सतगुर मिले ता उल्टी होवे, खोज लह जन कोए, हर हर नाम हृदय

आपके मार्ग पाए, आपके गुरुमुख देव दे आए, नानक नाम समाए पैरों महला पीजा। मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला, दूजे पाए फाके जमजाला। सतगुरु करे मेरी प्रतपाला, हर सुखदाता मेरे नाला। गुरु उपदेश प्रहलाद हर उचरे, सासना के बालक गम न करे। रहाओ माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़ो जियो ले उबारे। प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए, राम नाम न छोड़ा गुरु दिया बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे, प्रहलाद आप बिगड़िया।

दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा होए रघुराया। हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार, हर तेरा कहां तुझले उबार। खिन में पयान रूप लिख्या थम उपार, हरनाकस नखी विदारिया। प्रहलाद लिया उबार, संत जना के हर जियो कार सवारे। प्रहलाद जन के इतनी कुले उदारे, गुर के शब्द हो मैं बिख मारे। नानक राम नाम संत निस्तारे, पैरों महला तीजा। आपे दैंत लाए दिते संत जना को, आपे राखा सोई। जो तेरी सदा सरनाई, तिन मन दुख न होई। जुग जुग भगता की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री। तर्पण किछु न जाने, शब्द मेल मिलाया रहाओ। अनदिन भगत करे दिन राती, दुबदा शब्दे खोई। सदा निर्मल है जो सच राते, सच वस्या मन सोई। मूरख दुबदा पने मूर

कृपा मेलो सब संगत टूट गई माया जमजाली रहाओ। गुरुमुख सेवा काल जिन काली तिस करिये सब सची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली विच काया नगर लद्दा हर पाली। हम बारिक हर पिता तत्पाली जन नानक तारो नगर निहाली। पैरों महला चौथा सब कट तेरे तू सबना माहे तुझके बाहर कोई ना है। हर सुखदाता मेरे मन जाप।

जिसको तुम हर राखिया भावे तिसके नेड़े कोई न जावे। तू जल थल मरियल सब ते भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजूर।

हर का संत हर की हर मूरत जिस हृदय हर नाम मुरार मस्तक पाग होवे जिस लिखिया सो गुरमत हृदय हर नाम समार मधुसूदन जपिए उर्धार देही नगर तस्तर पंच तातु गुर शब्दी हर का डे मार राओ जिनका हर सेती मन मानिया जिनका रज हर

जेसो लोच लोच खावाया साकत हर हर चीतना आया संत जना की लेहो मते साध संग पावो परम गते रहाओ पात्र को बहु नीर पवाया मैं पी गए अदक सूताया खट शास्त्र मूर्खे सुनाया जैसे दहदिस पवन चुलाया दिन कण खलहान जैसे दान पाया क्यों साकत ते को ना।

तन ने पारना तन तन मेरे नारायणा। नानक बोले अमृत बाणी एक बिना दूजा नहीं जाने। पैरों महला पंजवा आगे दे पाछे नारायण मद भाग हर प्रेम रसायन। प्रभु हमारे शास्त्र सौन सुख सहज आनंद गृह पौन। रहाओ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभु सिमर सिमर अमृत पीवे। जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द वजे दरबारे। कर कृपा प्रभ लिए मिलाए नानक प्रभ शरणागत आए। पैरों महला पंजवा कोट मनोरथ आवे हाथ जम मार कै संगी पांथ। गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिसकी गत होवे। पीवत बहुड़ न जोन परमाम रहाओ। पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पहने काम। राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार। नानक दास एहु किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सब चार। पैरों महला पंजवा लेप न लागो तिलका मूल दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल। हर जन राखे पार ब्रह्म आप पापी मुआ गुर प्रताप। रहाओ अपना खसम जन आप आया याना पापी ओ आप पचाया। प्रभु मात पिता अपने दास का रखवाला निंदक का माथा इहां उहां काला। जन नानक की परमेश्वर सुनी अरदास मलेच्छ पापी।

पंजवा साच पदार्थ गुरमुख लहो प्रभ का पाणा सत कर सहो जीवत जीवत जीवत रहो राम रसायन नित उठ पीवो हर हर हर हर रस।

हर जप जप उदरिया सगल जहान पैरों मैला पंजवा अपने दास को कंठ लगावे निंदक को अग्न में पावे पापी के राखे नारायण पापी की गत कत हूँ नाही पापी पचया आप कमाइन रहा दास राम जियो लागी प्रीत निंदक की होई विपरीत पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगताया दुखी अपना कीता पाया आए न जाई रहा समाई नानक दास हर की शरणाई।

विरहाओ। ठाकुर छोड़ दासी को सिमरें, मन मुख अंध अज्ञाना, हर की पगत करे तिन निंदे, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभु का, साचत कहते मेरा। अहं बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर पर जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीरथ नहीं पाया, मिटिया आप कहे शरणाई, गुरमुख नानक जगत कराया। खैरो महला पंजवा, बन में पेख्यो तृण में पेख्यो, गृह पेख्यो उदासाए, दंड तार

योग पेट सन्यास सहते क्यों जत जंगम कापड़ाए तपी तपी सर मुन में पेख्यो नट नाटक निरताए चहु में पेख्यो खट में पेख्यो दस अस्ति सुमताए।

पहला पंजवा निकट बुझे सो बुरा क्यों करे बिसंचे नित डरता फिरे है निकट अर्थ एक न पाया बिन सतगुरु सब

पंजवा जिस तू राख है कुछ कौन मार है सब तुझ ही अंतर सगल संसार है कोट उपाव चितवत है प्राणी सोहो वै जे करे चोज विदानी राखो राखो कृपा तार तेरी शरण तेरे दरबार राव जिनसे व्या निरपो सुख दाता।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सब सद ही चूरे, बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व विकार, कहो नानक दर का विचार, पैरों मेला पंजवा, हूँ मैं रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाग रोग खप

वासन रोग पवर विनसानो, पेट रोग का सगल संसारा, त्रिविध रोग में बदे विकारा, रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी पर में, रोग बंद रहन गति न पावे, बिन सतगुरु रोग कटहे न जावे, पार ब्रह्म जिसकी नी दया, वहाँ पकड़ रोगों कद लया, टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुरु रोग मिटाया, पैरों महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख पांजे, चीत आवे ता सरदा पूरी, चीत आवे ता कभे न चूरी, अंतर

मन मानिया नानक भगवंता। पैरों महला पंजवा बाप हमारा सद चरण जीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज करवासी, हम सुख पाया ता सबे सुहेले।

नानक उदरे नाम पुने चार, हवर करम लोके पतियार, पैरो महला पंजवा, नमस्कार ताको लख बार, गुरु मन दी जय ताको वार, सिमरन ताके मिटे संताप, होए आनंद न व्यापे ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत

जा को सतगुरु दियो नाम, जा को पेट्यो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जतना। कहो नानक जो जन प्रभु पाए, ताकी रेन बिरला को पाए। हैरो महला पंजवा, सुतवत पाप ना आलक आवे, बेसुआ भजत किसने शरमावे। सारो दिन मजूरी करे, हर सिमरन की वेला बज्जर सिर पर। माया लग पूलो संसार, आप पुलाया पुला।

पूरन होत न कार्य माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तरफ मुआ जो जल बिन मीना, जिसके राखे हुए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुरु पूरा पाया। पैरों मैला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए। राम नाम जी को आधार, गुरु प्रसाद जपो नित पाए, तार ले सागर संसार राव, जिनको लिखिया हर एहो निधान।

जिस लड़ लाए ले सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भगतन का आप, अपनी महिमा आपे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभु सभी साथ, तेरो महला पंजवा, नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रविया हर नाम, सतगुरु पूरे तीनो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमूला अपर अपर

स्वाओ नाम न विसरै संत प्रसाद, नाम लेत अनहद पूरे नाद। प्रभ कृपा ते नाम नौ निज पाई, गुर कृपा ते नाम स्यों बने आई। तनवंते से प्रदान है।

पास हौ बलिहार जाऊं गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव, दया करो ठाकुर प्रभु मेरे, गुण गावे नानक।

नाम तिसर नाही सदा सुख होए कर कृपा जा को मिले सोए रहाओ जा के कर्तव्य लते न जाए जा का परवासा सब कट माए।

फिर पाप सा साचा सोए। जिसकी ओट किसे की आशा, दुख सुख हमरा किसी पासा, राख लीनो सब जन का पर्दा, नानक किसकी इज्जत करदा। पैरों महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चिताया, बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग न होए, दिखला का सब

मान मूर मुग्ध होए चतुर सुज्ञान सगल पयान का पौन से जन अपने के हर मन बसे पार ब्रह्म प्रभु सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पैरो महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्त सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग होए एक प्रीत संत मंडल कहाँ का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किछु ना कहे संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम वखाणी संत मंडल का नेचर आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो मैं दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुण पास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान पैरों मैला पंजवा रोग कवन जा राखे आप किस जन होए न दुख संताप जिस ऊपर प्रभु कृपा करे किस ऊपर ते काल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम जिस चीत आवे तो सदा सुख होवे नित ना आवे ता कै जाम रहाओ जब ए नासो तब किने उपाया कवन मूल के क्या प्रगटाया आपे मार आप जीवाले अपने भगत को सदा प्रतपाले।

0: कोई भगत जपे नाम जाप मन पर दास गुरते मत लई। कहो नानक ताकि पूरी पई।
1: पैरों महला पंजवा सुख नाही बहुते तन खाटे, सुख नाही पेखे नृत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सुख

सहो नानक प्रभु कृपा करी। सास गिरास जपो हर हरी पैरों महला पंजवा सबसे ऊंचा जाका नाओ सदा सदा ताके गुण गाओ। जिस सिमरत सगला दुख जाए सर्व सुख वसे मन आए सिमर मना तू साचा सोए हलत पलत।

नानक को गुरु पै दयाल पैरों मैला पंजवां जिस सिमरत मन होए प्रगास मिटे कलेश सुख सहज निवास तिसे प्राप्त जिस

सगल कटा के अंतर जामे, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए। पैरों महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे, नाम विहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन छाड़ परम गच्छा है, मूल बिना शाखा कथा है। गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे। बंधन काट हर संग मिलाए रहो।

पूरन मन पानी जल थल मही अल रव्या सोए नानक सब किस प्रगते होए पैरों मैला पंजवा मन तन राता राम रंग चरणे सर्व मनोरथ पूरन करने आठ पैर गावत पग

सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पछानी, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रैंत आया, टूटे बंधन पूरन आसा, हर के चरण रिद माय निवासा, कहो नानक जाके पूरन कर्मा, सो जन आया प्रभु की शरणा, आप प्रेत पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरो महला पंजवा, नाम लैत किस बिघन न लागे, नाम सुनत जम दूरों पागे, नाम लैत सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किछ चाख न जो है, हर सिमरत दैत देव न पो है, हर सिमरत मोह मान न बदे, हर सिमरत गर्भ जोन न रुदे, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माए अकेला, जात अजात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूरन रंग, नानक को प्रभ कृपा तार, सास सास हर दियो चितार, पैरों महला पंजवा, आपे सासत आपे बेद, आपे कट कट जाने पेद, ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूरन समरथ, प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आरादो, दुश्मन दुख ना आवे नेरे, रहाओ आपे वन त्रिन त्रिभुवन सार, जा कै सूत परोया पार, आपे शिव शक्ति संजोगी, आपे निर्वाणी आपे पोगी, जत कत देखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए, सागर तरिये नाम के रंग, गुण गावे नानक साथ संग, मुक्त पुगत जुगत वस जाके, ऊना नाही किस जनता के, कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास से जन तन, पैरो मेला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद, अस्थित पय बिनसी सब चिंद, पै प्रम बिनस गए खिन माहे, पार ब्रह्म वस्या मने।

गायन आदि जुगाद भगत गुण गायन तिसकी तर प्रभ का मन जोर एक बिना दूजा नहीं और नानक कह मन इहो पुरखारथ प्रभु हमारा सारे स्वारथ पैरों महला पंजवा पै कौ पौ पड़िया सिमरत हर नाम सगल ब्याद मिटी त्रिहो गुण की दास के होए पूरन काम रहाओ हर के लोग सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूरन धाम जन का दर्श बांचे दिन राती होए पुनीत धर्म राय जाम काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अभिमान ऐसे संत पेटे वड पागी।

पंजवा सतगुर अपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास मन तन अंतर प्रभु ते आया गुर पूरे डर सगल चुकाया सब ते वड समरथ गुरदेव सब सुख पाई तिसकी सेव रहाओ जाका किया सब किछ होए तिसका अमर नामे टै कोए पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप सफल मूरत गुर तिस

प्रतपाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी अनेक रंग बहुत रंग सर्व को तनी रहाओ अनेक ज्ञान अनेक ध्यान अनेक जाप जाप ताप अनेक गुणत तुनत ललित अनेक

कृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन वस्या, मनसा मन है समाई, हर जियो कृपा करू मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन, जन मांगे गुरु।

सुरत न पाई, मन मुख मरे तिन किछु न सूजे, दुर्मत अज्ञान अंधारा, पव जल पार न पावे कभी, डूब मुए बिन गुर सिर पारा, साचे शब्द रते जन साचे, हर प्रभ आप मिलाए, गुर की बाणी शब्द पछाती, साच रहे लिव लाए, तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल, गुर के शब्द विचारे, नानक तिन

अचिंत वस्यो मन सुख विश्रामा, अचिंत हमारे अनहत वाजय, अचिंत हमारे गोविंद गाजय, अचिंत हमारे मन पति आना, नेचल तनी अचिंत पछाना, अचिंतो उपजो सगल विवेका, अचिंत चरी

राम राजा नौनिद मेरे संपहेत कलत तन तेरे रहाओ आवत संग ना जात।

पहचाना, उलट जात कुल दो विसारी, सुन सहज मैं बुनत हमारी, हमरा चगरा रहा न को। पंडित मुला छाड़े दो रहाओ, बुन बुन आ

जब लग विकल्प ही नहीं बानी, पज ले रे मन सारंग पानी, अब ना पजस पजस कब भाई, आवे अंक ना भजया जाई, जो किछ करे सोई अब

कर ईत ऊत की सोजी परे कौन कर्म मेरा कर कर मरे। निज पद ऊपर लागो त्यान राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान रहाओ। मूल द्वारे बंदिया बंद रब ऊपर गहरा ख्या चंद पश्चिम द्वारे सूरज तपे मेरा दंड सिर ऊपर बसे।

बिरख मूल माया में परा, माया अंतर पीने देव, सागर इंद्रा अर्तर देव, कह कबीर जिस उदर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे।

कई है कोट अठासी, छपन कोट जाके खेल खासी। मो गरीब की को गुजरावे, मजलस दूर महल को पावे रहाओ। 33 करोड़ी है खेल खाना, 84

क्यों लीजै गढ़ बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। रहाओ पांच पच्चीस मोह मद मत्सर, आडी परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुँचे।

मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूरज जा कह प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जा कह मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ।

बासक कोट सेज बिस्तर है, समुन्द्र कोट जाके पानी हार, रुमावल कोट अठारे पार, कोट कमेर परे पंडार, कोटक लक्ष्मी करे सिगार, कोटक पाप

रहाओ। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी, कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए, कबहू न टूटस रहा समाए, नामे चित लाया सचनाए। जैसी प्रीत बारिक अरमाता।

पास जाके मस्तक लिखियो कर्मा सो पज पर है गुर की सरना कहत नाम दियो इहो विचार इन विद संतो उतरो पार संडा मर कह जाए पुकारे पड़े नहीं हम ही पछारे राम कहे कर ताल बजावे चटिया सब बिगारे राम नामा जप वो करे

काल गुरुमुख राम नाम गुण गाए, तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ, बिन साध ना पाये हर का संग, बिन गुरु मैल मलीन अंग, बिन हर नाम ना सुध

गुर संग दिखायो राम राय। मिल सकी सहेली हर गुण बने, हर प्रभ संग खेले वर कामन। गुरमुख खोजत मन मने रहाओ, मनमुखी दुहागण नाहे पेओ। ओ कट कट रावे सर्व प्रेओ, गुरमुख तिरची ने संग देओ। गुर नाम दृढ़ाया जप जपेओ, बिन गुर भगत न पाओ होए। बिन गुर संत ना संग दे, बिन गुर अंधले तंद रोए। मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए। गुर

गुरमत ऊतम संग साथ, हर नाम रसायन सहज आथ। मत बिसरस रे मन राम बोल, अपरंपर अगम अगोचर गुरुमुख, हर आप तुलाए।

हर भगत सुहावी करम पाग, गुर मेल मिलावे करे दात, गुर सिख प्यारे दिन सरात, फल नाम प्राप्त गुर तुस दे, पहु नानक पावे विरले के, बसंत महला तीजा एक तुका, साहिब पावे सेवक सेवा करे, जीवत मरे सब

तैसे संत जन राम नाम रवत रहे। मैं मूरख मुग्ध ऊपर करो दया, तौ शरणागत रहो पया। कहत नानक संसार के ने फल कामा, गुर प्रसाद को पा।

सालग्राम बिप पूज मनावो, सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बांधो, दया करो दयाला। काहे कलरा सिंचो जन्म गवावो, काची टैग दीवाल काहे गचलावो, रहाओ कर हर हट माल टिंड।

मनमुख मोए नाही हर मनमाहे, मर मर जमे पी मर जाहे, से जन जीवे जिन हर मनमाहे। साथ समाले साथ समाए राव, हर ना सेवे ते हर ते दूर, दिसंतर पवे सिर पावे तूर। हर आपे जन लिए लाए, तिल सदा सुख है तिल ना तमाए।

गुर कै शब्द रहा परपूर जी जंत की करे प्रतपाल गुरु प्रसादी सद समाल दर्शा चै पक्षों कर जाए नानक नाम बढ़ाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मनते होए एको वेखै और न कोए दूजे लोकी बहुत दुख पाया सतगुर मैनू एक दिखाया मेरा प्रभु मौलिया सद बसंत ए मन मौलिया गाए गुण गोविंद राव गुर पूछो तुम करो विचार ता प्रभु साचे लगे प्यार आप छोड़ होए दासत पाए।

चित लावे अपना प्रभ सेवे सहज सुभाए नानक नाम वसै मन आए बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाए मन तन हरिया सतगुरु भाए सफल्यो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सहज सुभाए सच पल लागे सतगुरु भाए रहाओ आपे नेड़े आपे दूर गुर कै शब्द वेखे सद हजूर छाव कणी फूली बन राय गुरमुख बिगते सह सुभाए अन दिन कीर्तन करे दिन रात सतगुर गवाई विचो झूठ परात पर पंच वेख रहा विस्माद गुरमुख पाई है नाम प्रसाद आपे करता सब रख भोग जो किस करे सोई पर भोग वड्डा दाता तिल ना तमाए नानक मिलिए शब्द कमाए बसंत महला तीजा पूरे पाग सचकार कमावे एक को चेत है फिर जून नावे सफल जन्म इस जग में आया सच नाम सहज समाया गुरमुख कार करो लिव लाए हर नाम से वो विच्चों आप गवाए रहाओ तिस जन की है साची बाणी गुर कै सबल जग माए।

नाम रता जन प्रगट होए, एक साचे शब्द रहे लिवलाए, से जन साचे साचे भाए, साचे आयन देख हजूर, संत जना की पग पंकज दूर, एको करता अवर्ण कोए, गुर शब्दी में लावा होए, जिन सच से व्या तिन रस पाया, नानक सहजे नाम सुमाया, बसंत महला तीजा, पगत करें जन देख हजूर, संत जना की पग पंकज धूर, हर से की सद रहे लिवलाए, पूरे सतगुरु दिया बुझाए, दासा का दास बिरला कोई होए, उत्तम पदवी पावे सोए रहाओ, एको से वो अवर न कोए, जित से वे सदा सुख होए, ना ओ मरे न आवे जाए, जिस बिन अवर से भी क्यों माए, से जन साचे जिनी साच पछाणिया, आप मार सहजे नाम समाणिया, गुरमुख नाम प्राप्त होए, मन निर्मल निर्मल सच होए, जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान, साच शब्द प्रभ एक सियान, हर रस चाखे ता सुध होए, नानक नाम रते

जीवत मरे मर मरण सवार है, गुरु ते शब्द साच उधार है रहाओ। गुरुमुख सच पोजन पवित शरीरा, मन निर्मल सद गुणी गहीरा, जब मैं मरे ना आवे जाए, गुरु प्रसादी साथ समाए, साचा से वो साथ पछाणे, गुरु के शब्द हर दर निशाने, दर साचे सच शोभा होए, निज करवा सा पावे सोए, आप अपूल सच्चा सच सोए, और सब पूले दूजे पत होए, साचा से वो साची बाणी, नानक नामे साच समाणी, बसंत महला तीजा, बिन कर्मा सब परम पुलाई, माया मोह बहुत दुख पाई, मन मुख अंधे ठौर न पाई, बिस्ता का कीड़ा बिस्ता माई समाई, हुकम मने सो जन प्रवान, गुर के शब्द नाम निशान, रहाओ साच रते जिना तो

लै पाए सो बुझाए जिस आप बुझाए सतगुरु सेवा नाम दृढ़ाए जिन एक जाता के जन प्रवान नानक नाम रते दा निशान बसंत मैला तीजा कृपा करे सतगुरु मिलाए आपे आप बसे।

मन शांत ना होए, बहु अभिमान अपनी पक होए, सेवड़ पागी जिन शब्द पछाणिया, बार जांदा कर में आणिया, कर में वक्त अगम अपारा, गुरमत खोजे शब्द विचारा, नाम नाम निद पाई।

पूरे पाग हर भगत कराए, इस मन को बसंत की लगे न सोए, ए मन जलिया दूजे दोए रहाओ, ए मन संदे बांदा कर्म कमाए, माया मूठा सदा दिल लाए, ए मन छूटे जा सतगुरु पेटे, जम काल की फिर आवे ना फेटे, ए मन छूटा गुरु लिया छाए, नानक माया मोह शब्द जलाए, बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बन राए, ए जी जंत फूले हर चितलाए, इन विद ए मन हरिया होए, हर हर नाम जपे दिन राती, गुरमुख हो मैं कद्दे तोए रहाओ, सत गुर पानी शब्द सुनाए, ए जग हरे।

टूट तिना की अकुलिये पाए, सब संगत मेल मिलाए, आप कराए करे आप भाई, जिन हरिया की आ सब कोए, नानक मन तन सुख सब।

राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी, सतगुर मिले तां खोजिए मिल ज्योति जोत समानी, माधो साधु जन देव मिलाए।

साध मिलावे, नानक शांत होवे मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अगम गुसाई, हम कीरे किरम तुम नछे, हर दीन दयाल करो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बन छे, गोविंद जी ओ सत संगत मेल कर कृप छे, जन्म जन्म के किल विकमल परया, मिल संगत कर प्रभ हंसे, रहाओ तुमरा जन जात अवजाता।

हम कीए पतत पवीचे बसंत ही डोल मैला चौथा। मेरा एक छिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस की दे जो बारिक रसक पर्यो थन माता थन का दे बिलल बिरी दे गोविंद जी ओ मेरे मन तन नाम हर जी दे।

जन जप्यो नाम निरंजन नरहर, उपदेश गुरु हर प्री दे, जन्म जन्म की हौ मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नी दे। हमरे कर्म ना बिचरो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनी दे, हर पावे सुन बिनो बिनंती, जन नानक शरण पवी दे। बसंत हिंडोल मेला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवे, दिल कर नहीं वाता पाई है, बुर अंकत शब्द दारू सिर तारियो, कर मंदर आन वसाई है। गोविंद जी ओ सत्संगत मेल हर त्याई है, हौ मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाद लगाई है रहाओ। कर रतन लाल बहु मानक ला दे, मन प्रमिया लह ना सकाई है, जो ओडा कूप गोज खिन काड़े, जो सतगुर वस्त लहाई है। जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीव आई है, जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कौडी बदले जाई है। मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाई है, जन नानक निर्वाण पद पाया, मेरे साधु हर गुण गाई है। बसंत हिंडोल मेला चौथा, आवन जान पया दुख बिख्या, दे मन मुख सुन्जी सुन्य, राम नाम खिन पल नहीं चेत्या, जम पकड़े काल सलुंज। गोविंद जी ओ बिखो मैं ममता मुंज, सत संगत गुर की हर प्यारी, मिल संगत हर रस कुंज। राव सत संगत साध दया कर मेलो, शरणागत साधु पंज। हम डूबदे पाथर काट ले हो प्रभ, तुम दीन दयाल दुख पंज, हर उस्तत तारो।

पग तारा दें जोग जुगत नेत्र संतोखे दर्श पेख रसना गाए गुण अनेक तृष्णा बूजी गुर प्रसाद मन आधा ना हर रसें स्वाद सेवक लागो चरण सेव आद पुरुष अपरंपर देव सगल उदाहरण तेरो नाम नानक पायो इहो निधान बसंत महला पंजवा तुम बरदाते दे रहे जी प्राण में रव रहे दीने सगले पोजन खान मोहे निर्गुण एक गुण ना जान।

तरों टेक, सर्व कला प्रभु तुम पर बीन, अंत न पावे जलह मीन, अगम अगम ऊंचे ते ऊंच, हम थोरे तुम बहुत मूच, जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से तनी, जिन तू सेव्या सुखी से, संत शरण नानक।

गाए गुना बसंत महला पंजवा जिस बोलत मुख पवित होए जिस सिमरत निर्मल है सोए जिस आराधे जम किछ ना कहे जिसकी सेवा सब किछ लहे राम राम।

नानक जन हर हर त्याए। बसंत महला पंजवा, मन तन पीतर लागी प्यास, गुरदयाल पूरी मेरी आस, किल विख काटे साध संग, नाम जप्यो हर नाम रंग, गुर प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय उधारे, सदा सदा हर जस सुना रहाओ। समरथ स्वामी कारण करण, मोहे अनाथ प्रभु तेरी शरण, जी जंत तेरे आधार, कर कृपा प्रभु लेह निस्तार।

राम रंग सब गए पाप, राम जपत तक नहीं संताप, गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत कछना है फेर, बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यो सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जय गोविंद भगत सो तन देश, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख

जप नानक स्वामी सद हजूर बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा प्रभ रखवाले माई बाप जा कै सिमरन नहीं संताप खसम त्याई इक मन इक भाए गुर पूरे की सदा शरणाई साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ अपने जन प्रभ आप रखे दुष्ट दूत सब प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देश दुसंतर रहे ताए किर्त ओना का मिटस नाहे ओए अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए जन को पहुँच ना सकस कोए प्रभ दास रखे कर जतन आप अखंड पूरन जाको प्रताप गुण गोविंद नित रसन गाए नानक जी वह हर चरण ध्याए बसंत महला पंजवा गुरु चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूरन काम जप जी वह नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर्षित आवे बिन सत गुरु दी सह बिल लांती साकत फिर आवे जावे रहाओ।

पद पाया, गुरु मिल नानक खसम ते आया, साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूरन आस, जल थल मैयल रव रया, गुरु मिल नानक हर हर कया, अष्ट सिद्ध नव निध एहे, करम प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभ जप जप जीवे तेरे दास, गुरु मिल नानक कमल परगास, बसंत महला पंजवा कर पहला, इक तुके इको अंकार, सतगुर प्रसाद, सगल इच्छा जप पुनिया, प्रभ मेले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रवन जोग, जित रवे है सुख सहज भोग रहाओ, कर कृपा नदर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, सेज सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख तनी,

नानक प्रभ कृपा भई बसंत महला पंजवा रोग मिटाए प्रभु आप बालक राखे अपने कर थाप सांत सहज गृह सद बसंत गुरपुरे की सरणी आए कल्याण रूप जप हर हर मंत्र रहाओ सोग संताप कटे प्रभ आप।

सुखदाता जपदे नीत नीत बसंत महला पंजवा। हुकम कर कीने निहाल अपने सेवक को पया दयाल गुरु।

अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभ सभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले टिक रहे सूख कथूले बसंत ऋत आई पर फूल तार है अब कलु आयो दे एक नाम।

दुबदा दूर करो लिवलाए। हर नामे के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। इन विद पासा तालो बीर, गुरमुख नाम जपो दिन।

उल्लंघा वे मेरा सतगुरु सुख सहज से ती कर जाते। हर आपे खेले आपे देखे हर आपे रचन रचाया जन नानक गुरुमुख जो नर खेले सो जिन बाजी कर आया।

है भाणा कहो नानक कह तया दुआरे रख ले वो मुग्ध अजाना बसंत हिंडोल मेला पंजवा मूल न बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म।

क्या जानो या पीतर जो राम बसत है साचो तहे पछानो रहाओ। यो जग है संपत सुपने की देख कहाँ ऐडानो। संग तिहार है कछु न चाले ताहे कहाँ लपटानो। उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उर्यानो। जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो। बसंत महला।

अष्टपदियां कर पहला दो तुकियां इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। जग कौआ नाम नहीं चीत, नाम विसार गिरे दे।

प्रेम आधार गुर शब्दी बिक प्यास निवार मोहन मोह लिया मन मोहे गुर कै शब्द पछाना तो है नानक ठाडे चाहे प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा धार बसंत महला पहला मन फूलो परमस आए जाए हत लुबद लुभानो विकम माए नह अस्थिर दिसे एक भाए ज्यो मीन कुंडलिया कंठ पाए मन फूलो समझस साच नाए गुर शब्द विचारे सहज भाए रहाओ मन भूलो भरमस भवर तार।

तू अपुल ना पूलो कदे ना है, गुर शब्द सुनाए मत अगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे, बसंत महला पहला दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तरह से पर हर दोए, दूर दर्द मत अमृत खाए।

ओ अगम अगोचर एकंकार। एका मूर्खा चानाओ तिथे निबड़े साच न्याओ साची करनी पप परवान।

किसे न भावो, नानक हूँ मैं शब्द जलाया, सतगुरु साचा दर्श दिखाया। बसंत महला पहला, चंचल चीत न पावे पारा, आवत जात न लागे बारा, दुख कणो मरिए करतारा, बिन प्रीतम को करे न सारा, सब उत्तम किस आखो ही ना, हर भगति सचना।

पै हट पट रव रया प्रभ जा पै सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता नानक राम रवै हित चीता बसंत महला पहला हित तुकिया मत पसम अंधूले गर्व जाहे इन बिदना गे।

गुण नानक बोले पली बाण, तुम हो सुजा खेल हो पछाण, बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अगली कार, मन मुख पर मैं मजगुबार, मन अंधला अंधली मत लागे, गुर करनी बिन परम ना पागे, रहाओ मन मुख अंधले गुरमत ना भाई, पशु भय अभिमान ना जाए, लख चौरासी जंत उपाय, मेरे ठाकुर भाणे सिर समाए, सगली पूले नहीं शब्द अचार, सो समझे जिस

तू अकल निरंजन परम हीर, तू आपे करता करण जोग, ने केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद, बसंत हिंडोल मैला।

कर सिफत तुम्हारी, तीरथ सिमरत पुन दान किचला मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वड़ियाई मेका कड़ी समाली, बसंत हिडोल कर दूजा महला चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। पाया नगर एक बालक वसिया खिन पल थिर ना रहाई, अनेक उपाव जतन कर थाके बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाये, पज राम नाम निशान रहाओ यो मृतक मरा शरीर है, सब जग जित राम नाम नहीं वसिया, राम नाम गुर उदक चुआया फिर हरिया हो आ रसिया, मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया।

सब किच आगे दाल दे पंज समाया राम नाम की पैज वडेरी मेरे ठाकुर आप रखाई जे सब साकत करें बकीली इक रत्ती तिल ना कटाई जन की उस तक है राम नामा दे दिसो बापाई निंदक साकत खाव ना सके तिल।

करता, आपे जल अपरंपर करता, आपे मेल मिलावे, नानक गुरमुख सहज मिलाए, जो जल जल है समावे। बसंत महला पंजवां।

भगत बिहुना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद पजो मेरे सदा मीत साथ शब्द कर सदा प्रीत रहा।

मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे, पीठ मीत को सखाना है। आप बीज आपे ही खाए, जाके कीने होत विकार, से छोड़ चले आखिन में गवार, माया मोह।

हर का नाम सी आए कै हो वरिया भाई, कर्म लिखन तय पाई है ए रुत सुहाई, वन त्रिन त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजै लखी सब छाई, नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न पाई, पंजे बद्दे मां बली कर सच्चा ढोआ, अपने चरण जपायन विच दया खड़ोआ, रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ, दिन रे नाम से आएदा फिर पाए न मोआ, जिस ते उपजिया नाम का।

अगम अगोचर साहेबो दूसर लवेन लावे सच पूरे गुर उपदेशिया नानक सुनावे बसंत माणी भगतां की कबीर जी कर पहला इकोंकार सतगुर प्रसाद मौली तरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया।

सब मद माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग रहा, जागे सुख देओ अर अकूर। हनुमंत जागे तर लंकूर, शंकर जागे चरण सेव, कल जागे नामा जय देव, जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार, इस देही के अधिक काम, कह कबीर पज राम नाम।

फिर हाफता निद्रा बिन नर पैसोवे, बिन बासन खीर बिलोवे, बिन अस्थन गऊ लवेरी, पैडे बिन बाट कनेरी, बिन सतगुर बाट।

चलो बनजारा हाथ चार पूंजी हिरानी बनज टूट जय जिस तांडो गयो फूट कह कबीर मन सरसी काज सहज समानो ता परम पाज बसंत हिंडोल कर।

पेट खाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी।

गुर का शब्द काटे कोट करम बसंत बाणी नाम देव जी के इको अंकार सतगुर प्रसाद साहिब संकट वे सेवक पजे चिरंकाल न जीवे दो को।

लजै तेरी पगत ना छोड़ो पावे लोग हसे चरण कमल मेरे हीरे बसे रहाओ जैसे अपने तने प्राणी मरण मांडे तैसे संत जना राम नाम ना छाडे गंगा गया गोदावरी।

जैसे पंकत त्रुट टुहाकती सर सोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तोवे बिरह बिराता हर चरण मेरा मन राता पंत नाम देव रम रहा अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की इको अंकार सतगुरु प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाहे पहरावा देखे उब जाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भे बावली जैसे पादो खूब राज तू किस

ओट तेरे मिटे पाप सब कोट कोट कह रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जून काम बसंत कबीर जियो इको ओंकार सतगुर प्रसाद सुर है की जैसी तेरी चाल तेरी पूछट ऊपर चमक बाल इस पर में है सो तू टूंड खाए और किस ही के तू मत ही जाहे रहाओ

मन मानिया हर पाए प्राण आधारा रहाओ। इन विद हर मिलिए वर कामन तन सुहाग प्यारी जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी जिस मन माने अभिमान ना।

हर के संत जना की हम धूर, मिल सत्संगत परम पद पाया, आत्म राम रहा भरपूर रहाओ। सतगुर संत मिले शांत पाये, दिल विच दुख काटे सब दूर। आत्म जोत पई परफूलत, पुरुष निरंजन देखिया।

पाधारी। नानक जिन को नजर भई है तिनकी तै सवारी। सारंग महला चौथा हर हर अमृत नाम देहो प्यारे। जिन ऊपर गुरुमुख मन मानिया तिनके काश सवारे रहाओ। जो जन दीन भय गुर आ गए तिनके दुख निवारे। अन दिन भगत करे गुर आ गए गुर के शब्द सवारे। हृदय नाम अमृत रस रसना।

नानक दासन दास कहत है कर कृपा लियो उबारे सारंग महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाए जो किस करे सुसा

सांत वसै मन आए, गुर कृपाल पै तब पाया, हर चरणी चित लाए, मत परदास पई हर ध्याया, ज्ञान तत् लिव लाए, अंतर ज्योत प्रगति मन मानिया, हर सहज समाध

तिल तिल पल पल औद फुल घाते बूझ न सके गवार सो किस करे जे साथ न चाले त्यो साकत का आचार संत जना के

जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यों प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन से सब रात रहाओ। हर की उपमा अनेक अनेक अनेक गुण गावत। सुख नारद ब्रह्मा।

पंच शब्द वद पाग मथोरा। तीन जन के सब पाप गए, सब दोख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए। तीन जन के हर मार कदे पंच चोरा। हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु जगदीश जपो। मन बचन कर्म हर हर।

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्टता प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरुष अविनाशी रहाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले जिस सतगुरु सो जन हर हर अमृत।

अंतर प्यास चात्र की ज्यों जल की सफल दर्शन कर पाओ रहाओ। अनाथा को नाथ सर्व प्रतिपालक भगत वत्सल हर नाओ जाको कोई

करत बुराई मानस के छुपाई, साक्षी पूत पमान रहाओ वैष्णो नाम करत खटकर्मा, अंतर लोभ जुठान संत सभा की निंदा करते डूबे सब अज्ञान, करें सोम पाक हिर

अब मोहे राम पर ओसो पाए, जो जो शरण पर्यो करुणानिध ते ते पहें तराए रहाओ। सुख सोयो अर सहज समायो, सहसा गुरहें गवाए। जो चाहत सोई हर कियो, मन बांचत पल पाए। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो, श्रवणी कथा सुनाए।

अवर सब फूले प्रमत न जानिया, एक सुदाखर जा कै हृदय वस्या, किन वेदें तत पछानिया रहाओ, परवृत मार्ग जेका किस

दिशाएं खोजत खोजत ए बिचारियो सर्व सुखा हर नामा कहो नानक किस पयो प्राप्त जा कै लेख मथामा सारंग महला पंजवा हम दिन राम के गुण कही है सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांचत फल लइए रहाओ आवो संत प्राण सुख दाते सिमरन प्रभ अविनाशी अनाथ नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो खटवासी गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वड पागे कल कलेश मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे

और ब्रह्म तिराय उपदेश हमारी गत करन रहाओ। दुख रोग तय सगल दिनासे जो आवे हर संत सरन। आप जपे अवरे

गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरन, सारंग महला पंजवा, गायो री मैं गुण निध मंगल गायो, पले संजोग पले दिन अवसर, जो गोपाल री जायो रहाओ, संते चरण मोर लो माथा, हमरे मस्तक

कैसे कहूँ मोहे जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर, मन ना रहे बहु विद उमकाई रहाओ। चितवन चितवो प्रिय प्रीत बैराग।

गाई रहाओ। अनित जन्म प्रम तो ही आयो, मानस जन्म गुलवाई, गर्भ जोन छोड़ जो निक्षो, तौ लागो अनठाही, करें बुराई ठगाई दिन रहन, नेफल कर्म कमाही, कान नाही तो गाहन लागे, ताए ताए दुख पाही।

सो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाई, कहो नानक तिन जन बलिहारी, जो अल्प रहे मन माही। सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिछड़त होत मृतका, गृह में रहन न पाई। रहाओ जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, करो कृपा।

मन कहां लुभाये आन कहो, कीत ऊत प्रभु सदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रिय प्रीत मनोहर, यह अगावन पान को, अकाल मूर्त है।

तिन साधु संग मुख जुरे तिनकी तूर बांचे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे सारंग महला पंजवा सर्जन राम राम राम से आए एक पलक सुख साथ समागम कोट बैकुंठ पा।

जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाई वड भागी मंथन होए विदासा।

मोहन कार्यावो करो जो दरिया, मान करो अभिमान बोलो, फूल चूक तेरी प्रक्रिया रहाओ, निकट सुनो अर देखो नाही, परम परम दुख परिया, होए कृपाल गुर लाहे पार दो, मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी, जानो कोट दिनस लख बनिया, साध संगत की पीर जो पाई, तो नानक हर संग मिरिया, सारंग महला पन्यवा, अब क्या सोचो।

प्रम तो हार जो पड़े हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लब दियो है हर टेका गुर दयाल पै सुखदाई अंधुले मानक देखा रहा।

का नानक दृष्ट आयो सर्व ठाई प्राणपति हर सम का सारन महला पंजवा मेरा मन एक ही प्रिय मांगे एक आयो सर्व खान देश प्रिय रोम ना सम

बिसरियो तंद बंद माया को रजन सवाई जंगा रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो हर पाया सत्संगा ऐसो मिलियो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रयो अपना गुर बसर दीना पोगो पोग निसंगा निरपो पै नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन को कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे देहा प्रय अंक समानी रहाओ सूत्र ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुर सुजानी जिन कर मह बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी।

आया हर भगत पंडार खजीना सार महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तार छुटे संगार निमक कृपा ते कोट ब्रह्मंड उदारे रहाओ करें अरदास बहुत बेनंती निमक निमक समारे ओ कृपाल दीन दुख पंजन हाथ दे निस्तारे क्या ए पूपत बपरे सही है कहो ए किसनो मारे राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हारे सारंग महला पंजवा अब मुए तन पायो हर नामा पहे अचिंत कृष्ण सब बुझी है यो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो दुहे गिरामा गुर कृपाल सौदा ए जोरियो हप करियो लाल अगामा आन बपार बनज जो करिये ते दुख सहामा गोविंद भजन के निरपैवा पारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरे मन मिष्ट लगे प्रह बोला गुर बाँ पकड़ प्रभ सेवा लाए सब दयाल हर टोला रहाओ।

मेरे ठाकुर अगह अतोला सार महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहं एक निमख उपाय समावे देख चरित मन मोहन रहाओ जिस सुने मन होए रहस अत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बन आई प्रभ तोहं किलविख गए मन निर्मल होई है गुर का दे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करण कारण समरथोहं सारंग महला पंजवा नैनो देखो चलत तमाशा सबहु दूर सबहु ते नेरे अगम अगम कटवासा रहाओ अपूल ना पूले लिखो ना चलावे मता ना करे पचासा किन में साज संवार बिना है भगत वचल गुण पासा अंध कूप में दीपक बलियो गुर हृदय कियो परगासा कहो नानक दर्श

गुरमिल ऐसे प्रभु ते आया, कयो कृपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताकि बाया रहाओ, जेते सास सास हम लेते, तेते ही गुण गाया, निमक न बिसरे करी न बिसरे।

जैसे मात पिताए किस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसरना कब हूँ जाए। कहो नानक।

सुख दाता प्रभु ध्याय रहाओ। सुख मंगल कल्याण जिसे घर तिस ही शरणी पाये, तिसे त्याग मानुष जे सेवो तो लाज लोन हो जाए।

एक ओट पकड़ी ठाकुर की, गुर मिल मत बुध पाये, गुण निधान नानक प्रभ मिलिया, सगल चुकी मोहताई है, सारंग महला पंजवा, ओट सतानी प्रभ जियो मेरे, दृष्ट ना लिया वो अवर

औखद मुखदीनो जाए पया गुर पैर कवन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दाते रह काश तिलक जो अपना कीनो नानक सूख कनेर सारंग महला पंजवा प्रभ सिमरत दुख विनाशी पयो कृपाल जी सुखद।

अपने पैमान अपने पैताना अपने ही पै अर्था किन्ही राज जोबन तन मिलखा किन्ही बाप महतारी सर्व थोक नानक गुरु।

आओ खास सांस पर उचरत रसनागर तीर्थ गमन ना छोरी पूजा चक्र बर्त नेम कपिया उहा गैल ना छोरी अंध कूप में पतित होत जग संतो करो परम गत मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पे।

आपे सगले दूत बिदारे ठाकुर अंतर जाम आपे पत राखी सेवक की आपकी ओ बंदान आद जुगाद सेवक।

जान। जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान, जन का संग पाये वडभागी नानक संतन कै कुर्बान। सारंग महला पंजवा करो गत दयाल संतो मोरी, तुम समरथ कारण करना टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिकी तुम तारे, सुमत संग तुम्हारे पाए, अनेक जोन प्रमते

कहो नानक जिन जगत ठगाना सो माया हर जन ठागे। सारंग महला पंजवा अब जन ऊपर को ना पुकारे पुकारन को जो उदम

संताप मित्र सत्र पेख समत विचार्यो सगल संबाखन जाप तपत बुझी शीतल आघाने सुन अनहद विषम पै विषमाद अनद भया नानक।

सिमरत नाम प्राण गत पावे, मिटे कलेश त्रास सब नासे, साध संग हित लावे रहाओ। हर हर हर हर मन आराधे, रसना हर जस गावे, तज अभिमान काम क्रोध निंदा, वासुदेव रंग लावे। दामोदर दयाल आराधो गोविंद।

आन उपाव त्याग जन सगले चरण कमल रिद धारे प्राण आधार मीत साजन प्रभ एक है एकंकार सबते ऊंचे ठाकुर।

अनद गुण गाया, बाँ पकड़ कदली ने अपने गृह अंधकूप ते माया, कहो नानक गुर बंधन काटे बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवा, हर के नाम की गत ठांडी, वेद पुराण सिमरत साधु जन, खोजत खोजत काढ़ी, रहाओ शिव ग्रंथ अर इंद्र।

एक सियों लिवलाओ कहु नानक ताकी सरनाई देत सगल अप्याओ सारंग महला पंजवा होती नहीं कवन कछ करनी यह ओट पाई मिल संते गोपाल एक की सरणी रहाओ पंच दोष छिदर या तन में दिखे ब्याद की करनी।

अच तन वन जो सच तन संचो कबू न आवो हारे खास खर्चत किछ निखुटत नाही अगनत परे पनारे कहो नानक शोभा संग जावो पार ब्रह्म कै द्वारे सारंग मैला पंजवा प्रभ जी मोहे कवन अनाथ बिचारा कमन मूल ते मानुष करया।

आवे राम शरण वडपागी, एकस बिन किछ होर न जाने, अवर उपाव त्यागी रहाओ। मन बच कर्म अरादे हर हर, साध संग सुख पाया, अनद विनोद अकप कथा रस, साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो, ताकी उत्तम बाणी, साध संग नानक निस्तरी है, जोरा ते प्रभ निर्वाणी। सारंग महला पंजवा, जाते साधु शरण गही, सांस सहज मन पयो।

गुण गाओ। अगम अगोचर मित नहीं पाये, सगल कटा आधार, नानक वाहो वाहो कहो ताको, जाता अंत न पार। सारंग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहो ठाकुर सब थाई, निकट बसे सब ने रह रहाओ। बंधन तोर राम लिवलाई, संत संग बन आई।

कहत सुनत किछ शांत ना उपजत बिन विश्वास क्या देखा प्रभु त्याग आन जो चाहत ता कै मुख लागे का लेखा जा कै रास सर्व सुख स्वामी आन ना मानत देखा नानक दर्श मगन मन मोहयो।

जन्म मरण संकट ते छूटे जगदीश भजन सुख ध्यान तेरी शरण पूरन सुख सागर कर कृपा देवो दान सिमर सिमर नानक प्रभु जीवे दिल जाए अभिमान सारंग महला पंजवा तुरत सोई जे तुर को लागे सोई तुरंतर सोई बसंदर।

अर चरण कमल अस्थित हृद अंतर पूजा प्राण को आधार प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी धार नाम निधान उचरो नित रसना नानक सद बलिहार सारंग महला पंजमा हर के नाम हीन मत थोरी सिमरत नाहीं श्री कर ठाकुर मिलत अंध दुख को।

है पूरन परमानंद मन मीठो तिस बिन दूसर ना है। जप तप संजम कर्म सुख साधन तुलना कछु ऐला है। चरण कमल नानक मन भेद्यो चरण संग समाए। सारंग महला पंजवा मेरा प्रभ संगे अंतर जामी। आगे कुशल पाछे खेम सूखा।

पीवत अम्यो मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद। सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरह।

पूरन होत न कथो बातें अंश प्रतिहार रहाओ। सांस सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार। आप पर का कछ न जाने काम करो दे जार। संसार सागर दुख व्यापियो दास ले वो तार। चरण कमल

अनेक जोन प्रवीण गोविंद बिसरे कवन दुख गनिए सुख नानक हर पद चीन सारंग महला पंजवा माई री चरने ओट गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो।

महला पंजवा। पोथी परमेश्वर का थान, साध संग गावे गुण गोविंद, पूरन ब्रह्म ज्ञान रहाओ। साधक सिद्ध सगल मुन लोचे, बिरले लागे ध्यान, जिसे कृपाल हुए।

प्रवति आए रतन जन्म अपार जीतियो बौड़ जोन ना पाए पय कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग हर चरण रास नानक पा।

मानो द्वितीया पाओ सब लुहराओ त्याग गोपाल और जो करना ते बिखिया के खूह दर्श प्यास मेरा मन मोयो काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिनसी हो मैं हूँ राम रंग राते दास नानक मौलियो मन तन जूह सारंग महला पंजवा।

गोविंद गुप्त होए रहो न्यारो, मत अंग मत अहंकार, कर कृपा प्रभ संत राखे, चरण कमल आधार, कर जोर नानक शरण।

क्रोध लोभ त्यागे गुरु गोपाल पै कृपाल लबद अपनी पाई। दिन से परम मोह अंध टूटे माया के बंद पूरन सर्वत्र ठाकुर ने को बैराई। स्वामी सो प्रसन्न भय।

तास्यों न्यो लगाई जो दिसे सो सगल विनाशे ज्यो बादर की चाही तज अभिमान शरण संतन गो मुक्त हो है छिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने भी नाही सारंग महला नावा कहा नर अपनो जन्म गवा।

सौ जन मुक्ता। राम भजन चितलावे सारंग महला नावा, मन कर कभू ना हर गुण गायो।

सहज समाध सदा लिव हर्ष्यों, जीवा हर गुण गाई, गुर के शब्द रता बैरागी, निज कर ताड़ी लाई।

कोट कल्प के दुख विनाशन साथ दृढ़ाए निवेरा रहाओ। क्रोध निवार जले हो ममता प्रेम सदा नौरंगी, अनपौ विसर गए प्रभ जाच्या हर निर्माइल संगी। चंचल मत त्याग पौ पंजन पाया एक शब्द लिव लागी, हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल ले बढ़ पागी। अमृत सिंच भय सुबर सर गुरमत साच निहाला, मन रत नाम रते नहीं केवल आद जुगा दयाला। मोहन मोय लिया मन मोरा बड़े पाग लिव लागी, साच विचार किल विक दुख काटे मन निर्मल अनरागी।

हर रस रते अधिकाई, एक तस्बिन मैं अवर न जाना, सतगुर बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुबर भरे नाही चित डोले।

मनुआ डोले अकथ ना कथे कहानी गुरमत ने चल हर मन वस्या अमृत साची बानी मन के तरंग शब्द निवारे रसना सह सुबाई सतगुर मिल रही है।

जन्म जन्म के किलविक पौ पंजन गुरुमुख एको डीठा रहाओ कोट कोट अंतर के पाप विनाशन हर साचा मन भाया हर बिन अव

आवागौन निवार सच राते, सात शब्द मन भाया, सतगुर सेव सदा सुख पाईए, जिन विच्चों आप गवाया, साचे शब्द सहज तुन उपजे, मन साचे लिव लाई, अगम अगोचर नाम निरंजन, गुरमुख मन वसाई, एक समय सब जग तो वरते, विरला एक पछाणे, शब्द मरे ता सब किछ सूजे, अंधन एक को जाने, जिसनो नदर करे सोई जन बूझे, होर कहना कठिन न जाई, नानक नाम रते सदा बैरागी, एक शब्द लिवलाई, सारंग महला तीजा, मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर नदर करे सोई जन पाए, गुरमुख विर ले जानी, रहाओ, हर गहर गंभीर गुणी गहीर, गुर के शब्द पछानिया, बहुविध कर्म करें पाई दूजे, बिन शब्दे बहुरानिया, हर नाम नामे सोई जन निर्मल,

मुक्त पए साध संगत कर, तिनके अवगन सब पर हरिया, तिनको देख पए कृपाला, तिन पव सागर तरिया, हम नानी नीच

अगम अगाध सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुरु नमस्कार, गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन पीतर होवे प्रगास, ज्ञान अंजन अज्ञान बिना।

का दाता, कट कट पूरन है अलपाता, कट कट पूरन कर विस्थीरन, जल तरंग ज्यों रचन किया, हब रस माने भोग।

नाभी वस्त ब्रह्मे अंत न जानिया, गुरमुख नानक नाम पछाणिया। पौड़ी आपे आप निरंजना जिन आप उपाया, आपे खेल रचायन सब जगत सवाया। त्रै गुण आप सिरजियन।

करें मनमुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजे लोभाया कूड कपट कमाम दे कूड़ो अलाया पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख समाया जम दर बद्दे मारिए परमे परमाया मनमुख जन्म गवाया।

नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे। नानक अमृत मने माहे पाई है गुर प्रसाद तिन्नी पीता रंग स्यों।

मूरख अंधिया अंधी सात कह कह कहन कहायन आप महला पहला आखन औखा सुनन औखा आख न जाती आख एक आख आखे शब्द पाखे अर्द उर्द दिन रात जे क्यों होए ता क्यों दिसे जाते रूत न जात सब कारण करता करे कट औकट कट थाप आखन औखा नानका आख न जापे आख पौड़ी नाई सुनिए मन रहसिए नामे साथ आई नाई सुनिए मन तृप्तिए सब दुख गवाई नाई सुनिए ना उपजे नामे वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरुमुख नाम से आई है नानक लिव लाई श्लोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की पेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मियो वरे है सब थाई झूठ न तरती झूठ न पानी झूठ न पौने माई समानी नानक निगुरिया।

पौड़ी नाय मने दुर्मत गई मत प्रगति आया नाव मने हो मैं गई सब रोग गवाया नाय मने नाम उपजे सहजे सुख पाया नाय मने सांत उपजे हर मन वसाया नानक नाम रतन है गुरमुख हर त्याया श्लोक महला पहला और शरीक होवे कोई तेरा तिस अग्गे तुद आखां तुद अग्गे तुद सलाही मैं अंधे ना

साहिब शब्द ना ऊचरे माया मोह प्रसारी अंतर लालच परम है परमे गावारी नानक नाम न चेतई जुए बाजी हारी। श्लोक महला पहला। लक्ष्य प्रीत होवे लख जीवन क्या खुशियां क्या चाओ बिछड़िया विष होए।

ता नानक कहिए मूरत कौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस लिया, जिस प्राप्त सोल है गुर शब्दी मिलिया। सतगुर के पाणे जो चले हर से पीर लिया, जमकाल जो न सके कर चानन बलिया। नानक बख्श मिलायन फिर गर्व न गलिया। श्लोक महला पहला सच वर्त संतोष।

द्वादशी पंचवश गत्तर राखे तौ नानक मन माने। ऐसा वर्त रही जय पांडे और बहुत सिख त्यागी जय पौड़ी। कूपत राजे रंग राये संचय दिख माया कर कर हेत बधाए दे पर दर्भ चुराया।

कर्म प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिनको जिन हर मन वस्या सो पौड़ी। आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया नित जीवन को चित गढ़ मंडप संवारिया। बलवंश कर उपाव माया हिर आणिया जमकाल निहाले सास आव कटे बेताल।

वस्त्र पराए आप गर्व करे मूर्ख आन गनाए नानक बिन बूझे किने न पायो फिर आवे जाए महला तीजा मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम सर से सज्जन संत प्यारे जो तुर मिले ना बिछड़े कबहू ये आप मेले करतारे अंतर शब्द रविया गुर पाया सगले दुख निवारे हर सुख दाता सदा।

मां हर गुरमुख नाम दियाए दुख पुख काणा सब चुकाए सी यूं उठा छे बरलाए सब तरत पाई हरियावली अनजमिया बोल लाए हर अचिंत बुलावे कृपा कर हर आपे पावे खाए हर तिसे त्यावो संत जनों जो अंते ले चलाए हर कीरत भगत आनंद है सदा सुख वसे मन आए जिना गुरमुख नाम आराध्या तिना दुख सुख ले जाए जन नानक तृप्त है गाए गुण हर दर्शन देहो सुवाए पौड़ी गुरपूरे की दात नित देवे चढ़े सवाइया तुस देवे आप दे।

आप छोड़ शरणाए पवे मन ले रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगे हमे विचों जाए, नानक सेवक सोई आखिया जे सत रह लिवलाए। महला तीजा दात जोत सब

जिस गुरबचनी मन मानिया हर वर नार तई सोहा गण मन तन प्रेम सुखानिया अवगन त्याग तई बैरागन अस्थिर वर सोहा गहरी सोग विजोग तिस कदे ना व्यापे हर प्रभ अपनी कृपा करी आवन जान ही मन में चले पूरे गुर की ओट गही नानक राम नाम।

जिन तन तिर का साब न जानिया साबिल को बदन कुमलानी पई निराशी कर्म की फांसी बिन गुर कर्म तुलानी बरस करा मेरा तुर कर आया बल जावा गुर अपने प्रीतम जिन हर प्रभ आन मिलाया रहाओ नौतन प्रीत सदा ठाकुर स्यो हम जिन भगत सुहावी मुक्त पै गुर बरस लिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम थारे त्रिभुवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिले निरंजन पाया दौड़ न पव जल फेरा अपने तिर हर देख विदासी तो तन साथ सिगारो अतुल निरंजन स्यो सत साची गुरमत नाम आधारो मुक्त पाई बंधन गुर खोले सरद सुरत पट पाई नानक राम नाम हृद अंतर गुरमुख मेल मिलाई महला पहला मल्हार पर दारा पर तन पर लोबा होमे बिछै बिकार दुष्ट पाओ तज निंद पराई काम क्रोध चंगार महल में बैठे अगम अपार पीतर अमृत सोई जन पावे जिस गुर का शब्द रतन आचार रहाओ दुख सुख दो शंकर जाने बुरा पला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाये सत्संगत गुर प्यार एन सलाहा हर नाम प्राप्त गुरदाता देवनहार गुरमुख सुख सोई जन पाए जिसनो नगर करे करतार काया महल मंदिर कर हरता तिसमें राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बुलाये।

सुरता पंडित का कानाओ गुण गोविंद ना जानिए माए अंडीठा कुछ कह न जाए क्या कर आंख बखानिए माए रहाओ ऊपर बर समान पैल क्यों कर कहीं दो विचार बिन जेवा जो जपह आए कोई जाने कैसा नाओ कथनी बदनी रह निवरात सो बूझे हो जिस बात अंतर है निवलाए।

मानस का तल तब मैं सासे सास दे काया तल पाए ताके पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूट से सा चैन आए मलार महला पहला दुख महुरा मारन हर नाम।

आप तृष्णा उगने की दंज नगर करे ता बंदा तीर जो वेखा ले त्यों वेखा वीर ना यो तंग जाएगा ना जाएंगे खंग पौने पानी अग्नि का सन बंद नानक कर्म होवे जब

बुदबुदा कैसा यो संसारा जिसते हो आतिश समाना चूक गया पासारा मलार महलाती जा जिन्नी हुकम पछाणिया से मेले हो मैं शब्द जलाए सच्ची भगत करे दिन राती सच रहे लिवलाए सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुभाए मन रे हुकम मन सुख होए प्रब पाना अपना भाव दा जिस बच्चे तिस बिघन न कोई रहाओ त्रै गुण सबा तात है ना हर भगत न भाए गत मुक्त कदे न हो वही हो मैं कर्म कमाए साहिब पावे सोचिए तय किरत फिराए सतगुरु टूटिए मन मर रहे हर नाम वसे मन

समाए नानक नाम चलाए तू हर हर दर शोभा पाए मलार मैला पी जा गुरमुख कोई गुरना बूझे जिसन

मेरे मन हर अमृत नाम ध्याए, सतगुरु पुरुष मिले ना उपाय, हर नामे सदा समाए रहाओ, मन मुख सदा विचले फिरे, कोई न किसी नाल, हो मैं वड्डा रोग है, सुर मारे जमकाल, गुरमत सत्संगत ना विचले, अंधन नाम समाल, सबना करता एक तू, नित कर देखे विचार, एक गुरमुख आप मिलाया, बख्शे पलट पंडार, तू आपे सब किस जानदा, किस आगे करी पुकार, हर हर नाम अमृत है नगरी पाया जाए, हम दिन हर हर उचरे, गुर के सह सुवाए, नानक नाम निधान है, नामे ही चुकलाए, मल्हार महला की जाए, गुर सावाही सदा

एक एक वसे मन स्वामी दूजा और न कोई, एको नाम अमृत है मीठा जग निर्मल सब सोई, नानक नाम प्रभु ते पाया जिनको तुर लिखिया होई, मलार महला तीजा गण गंधर्व नामी सब उदरे गुर का शब्द विचार, हों मैं मार सब मन वसाया हर राख्या उधार जिसे बुझा

समझ सुख अंतर सदा निभय तेरे लाल राव। मन मुक्ता खंड कदे न चूके दूजे पाए दुख पाए नाम विसार दिखिया मन राते बिरथा जन्म गवाए ए वेला सुर हाथ न आवे अंदिन सदा पछताए मर मर जन्मे कदे न बूझे विस्ता मय समाए गुरमुख नाम रते सेव दुरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम त्या।

एक बिन मैं और ना जाना, सतगुरु दिया बुझाई, मन मेरे नाम रहो लिवलाई, अदिष्ट अगोचर अपरंपर करता, गुर के शब्द

वो हुक्म कर सृष्ट उपाय गुर प्रसादी बूझो भाई सदा रहो हर की शरणाई। सो पंडित जो तिहा गुणा की पंड उतारे अन दिन एको नाम बखाने।

कर कृपा गुरमुख लगे प्यार, अंतर पग पे हर हर उधार, पव जल शब्द लंघावन हार, दर्शा चे गुस्से सचार, बहु कर्म करे सतगुरु नहीं पाया, बिन गुर परम पूले बहुमाया, हों में ममता बो मोह वधाया, दूजे पाए मन मुख दुख पाया, आपे करता अगम अथाहा, गुर शब्दी जपिए सकलाहा, हाजर हजूर हर वे परवाहा, नानक गुरमुख नाम।

जम के सब लागो पाए। हौ जीवा सदा हर के गुण गाई, गुर का शब्द महारस मीठा, हर के नाम मुक्त गत पाई रहाओ। माया मोह अज्ञान।

पूरे लालच न लपताई, जो कुछ हो वह सहि सुहाए, हर रस पीवे रसम रसाए, कोट मदे कुसे बुझाए, आपे बच्चे देव दयाए, जो तुर मिलिया सो विछड़ ना जाए, नानक है हर नाम समाए, मलार महला तीजा, रसना नाम सब कोई कहे, सतगुरु सेवे का नाम लहे, बंधन तोड़े मुक्त कर गह, गुर शब्दी अस्थिर कर गह, मेरे मन काहे रोष करी जाए, लाहा कलज गुराम नाम है गुरमत अंदन हृदय रवी जाए, रहाओ बाबी हाँ खिन खिन दिल लाए, दिन फिर देखे नींद न पाए, यो विछोड़ा सहा ना जाए, सतगुर मिले का मिले सुमाए, नाम ही दिन से दुख पाए, तृष्णा जलिया।

गुरपुर हो मैं तीत तोरी, जन नानक मिले बनवारी। मल्हार महला चौथा, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती, ते करें उद्दम तूर साधु की ताई। किल विच मैल परे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की तूर गवाई। तीरथ असठ मज्जन नाई, सब संगत की तूर परी उड़ नेत्री, सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ। जहर नवी तपे पागी रखलानी, केदार था प्यो महसाई। काशी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर जन शोभा पाई। जितने तीरथ देवी थापे, सब कितने लोचे तूर साधु की ताई। हर का संत मिले गुरु।

साधु तूर दे हर पार लंगाई। मल्हार महला चौथा किस जन को हर मीठ लगाना, जिस हर हर कृपा करे किसकी भूख दुख सब उतरे, जो हर गुण हर उचरे जप मन हर हर हर निस्तरे, गुर के बचन करण सुन ध्यावे पव सागर पार करे रहाओ। किस जन के हम हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करे, हर जन को मिलिया सुख पाए सब दुर्मत मेल हरे, हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त जा हर गुण बिचरे, हर का जन हर जलता मीना हर विसरत फूट मरे, जिन ए प्रीत लाई सो जाने तो जाने जिस मन धरे, जन नानक हर देख सुख पावे सब तन की भूख करे,

हर जन हर कार लावे, सतगुर हर हर नाम दिलावे। हर बोलो गुर के सुत मेरे भाई, हर पौजल जगत करावे रहाओ। जो गुर को जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभु भावे। हर की सेवा सतगुर पूजो, कर कृपा आप करावे। कर्म पूले अज्ञानी अंधुले, कम कम फूल तोड़ावे। निर्जीव पूजे मरा सुरेवे, सब दुखी काल गवावे। ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कहिए, हर हर कथा सुनावे। उस गुर को छादन पूजन पाठ, पतंबर बहु विदे सत कर मुख संचो। किस पुन की फिर कोट ना आवे, सतगुर देव प्रतख हर मुहूर्त। जो अमृत वचन सुनावे, नानक पाग पले तुस जन के। जो हर चरणी चित लावे, मल्हार महला चौ

सब उत्तरी जो गुरमत राम रसथांत रहाओ हर के दास साध सखा जन जिन मिलिया लह जाए प्रांत जो जल दूध पिन पिन का दे चुन हंसना त्यों देही ते चुन का दे साधु हो मैं तात जिनके प्रीत नानी हर हृदय ते कपटी नर नित कपट कमात तिनको क्या कोई देख वाले वो आप बीज आते ही खाते हर का चिन्ह सोई हर जन का हर आपे जन में आप रखाते तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत परित्रांत मलार महला चौथा अगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वड पागी संग साधु पार पया मेरे मन अंग दिन अंध भया।

तिन संगत हर मेलो करमया, तिनका दर्श देख सुख पाया, दुखों में रोग गया, जो अंगिन हृदय नाम दिया है, सब जन तिना का सफल भया, वे आप करे सुष्ट सरकारी, सब कुल भी पार पया, तुद आपे आप उपाया सब जग।

गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, तृष्णा भूख न जाई, मन मुख मूड जलत अहंकारी, हों मैं विच दुख पाई, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई, जिस ते उपजे तिसे न चेतें, त्रिग जीवन त्रिग खाई, प्राणी गुरमुख नाम दे आई, हर हर कृपा करे गुर मेले, हर हर नाम समाई रहाओ, मन मुख जन्म भया है बिरथा, आवत जात ल जाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, हो मैं विच जल जाई, तिन सिद्ध न बुद्ध भई मत मदन, लोभ लह दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया, जम तकरे बिल लाई, हर का नाम अगोचर पाया, गुरमुख सह सुभाई, नाम निधान वस्या घट अंतर।

मिल साध संगत हर तोर रहाओ। हर तन बनजो हर तन संचो, जिस लागत है नहीं चोर। पात्रक मोर बोलत दिन राती, सुन कन हर की कोर। जो बोलत है मृग मीन पंखेरु, सो बिन हर जापत है नहीं होर। नानक जन हर कीरत गाई, छूट गयो जम का सब सोर। मलार महला चौथा, राम राम बोल बोल खोजते बडभागी। हर का पंथ को बतावे, हौंपा कह पाए लागी। रहाओ हर हमारो मीत सखाई, हम हर स्यों प्रीत लागी। हर हम गावे हर हम बोले, और दुतिया प्रीत हम त्यागी। मन मोहन मोरो प्रीतम राम, हर परमानंद बैरागी। हर देखे जीवत है नानक, एक निमत पलो मुख लागी। राग मल्हार महला पंजवा, चौथ दे कर पहला एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद, क्या तू सोचे क्या तू चितवे, क्या तू करे उपाय। ताको कहो परवाह काहू की, जे गोपाल सहाय।

खीर आधार बारक जब होता बिन खीर रह न जाई, सार समाल माता मुख नीर तब हो तृप्त अघाई। हम बारक पिता प्रभु दाता, फूले बारक अनेक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अग्न कर मेले, माता पिता कंठ लाए राखे, अनद सहज तब खेले। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, इस बार

नव निध नाम निधान गृह तेरे मन बाछे सो लैसी पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारिक मुख मांगे सो देना नानक बारिक दर्श प्रभ चाहे मोहि हृदय बसै नित चरना मलार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करया सजियो सगल अंदेसा कारज सगल अरंभियो करका ठाकुर का भरोसा सुनिए बाजे बाज सुहावी पोर पया मैं प्रेम मुख पेखे गृह मंगल सुहलावी रहाओ मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संता जाए खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो भगत करो निर पाए जब त्रै आए।

गुर कारज हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुख दाता, छोड़ न जाई दूरे। मलार महला पंजवा, राज ते कीट कीट ते सुरपत कर, दोख जठर को परते, कृपा निध छोड़ आम को पूजे, आत्म का सी हरते, हर बिसरते दुख दुख मरते, अनेक बार प्रमय बहुजोनी, एक न काहू तरते रहाओ।

गगन में जरते नानक शरण चरण कमलन की तुम ना डारो प्रभ करते। राग मलार महला पंजवा दुख दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी हूँ एक खिन तिस बिन रह न सको प्रीत हमारी लागी रहाओ। उनके संग मोहे प्रवचित आवे संत प्रसाद मोहे जागी सुन उपदेश पय मन निर्मल गुण गाए रंग रांगी। एहो मन दे किए संत नीता कृपाल पे बड़ पागी महा सुख पाया बर न साको रेन नानक जन पागी। मलहार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई सगल सहेली सुख पर सूती जे कर लाल बसाई रहाओ। मोहे अवगन प्रभ सदा दयाला मोहे निर्गुण क्या चतुराई करो बराबर जो प्रेम संगराती एहो मैं की टीठाई। कई निमाणी शरण एकता की गुरु सब गुरु पुरुष सुखदाई एक निमक में मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रहन बिहाई। मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल ना लाओ बरस प्यारे मने सदारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ।

तत शोभा तले अचारे मल्हार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम ध्याए दुख दर्द बिन सह पव सागर गुर की मूरत हृदय बसाए रहाओ दुश्मन हते दोखी सब व्यापे हर शरणाई आया राख नहारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलवित सब काटे नाम निर्मल मन दिया गुण निधान नानक मन वस्या बहुर दुख न थिया मल्हार महला पंजवा प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दीजे दयाल अनुग्रह तारे रहाओ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आशा संत जना तह करो बिनंती मन दर्शन की प्यासा बिछड़त मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजे नाम आधार जीवन तन नानक प्रभु मेरे कृपा की जय मल्हार महला पंजवा अब अपने प्रीतम स्यों बने आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाओ एक पल बिसरत नहीं सुख

राम नवै निद पाई उदोत पयो पूरन पावी को पेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल विनाशे पार ब्रह्म निवलाई करो संसार कथन पै सागर हर नानक चरण ध्याई मल्हार महला पंजवा कान हर बरस सगल जग छाया तय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाओ मिटे कलेश त्रिसं सब बूजी पार ब्रह्म ध्याया साध संग जन्म मरण निवारे बहुर न कतू धाया मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मलार महला पंजवा विचरत क्यों जीवे ओए जीवन चितें उलास आस मिलवे की चरण कमल रस पीवन रहाओ जिनको प्यास तुम्हारी प्रीतम तिनको अंतर नाही जिनको बिसरे मेरो राम प्यारा से मुए मर जाही मन तन रव रहा जगदीशर देखत सदा हजूरे नानक रवयो सब अंतर सब रहा पर पूरे मल्हार महला पंजवा हर कै भजन कौन कौन न तारे खग तन मीन तन मृग तन ब्राहा तन साधु संग उदारे रहाओ देव कुल दैत कुल जख किन्नर नर सागर उतरे पारे जो जो भजन करे सा

किलबिख काटे है छाट, कल कलेश मिटे दास मानक, बहुर न जोनी माट, मलार महला पंजवा, बहुविध माया मोह हिरानो, कोट मदे को बिरला सेवक, पूरन भगत सिरानो रहाओ, इत उत डोल डोल श्रम पायो, तन तन होत बिरानो, लोग दुराए करत ठगियाई, हो तो संग ना जा।

दीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई, हर की ओट जीवे दास तेरे नानक प्रभ शरणाई। मलार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवीजै, दर्श प्यास मेरो मन मोयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ। खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, तार अनग्रो स्वामी मेरे नाम महारस्ती जय। त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल को कृपा की जय, कर गह लिहो दास अपने को, नानक अपनों की जय। मलार महला पंजवा, प्रभ को भगत बछल बिरदायो, निंदक मार चरण तल दीने, अपनो जस वरतायो।

कार्कियो मेरे स्वामी परम पौ में सुखायो महा आनंद करो दास हर के नानक विश्वास मन आयो राग मल्हार महला पंजवा चौक दे कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद गुरुमुख दीसै ब्रह्म प्रसार गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार गुरुमुख नाद वेद विचार बिन गुर पूरे कोर अंधार मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाए

गुरु बोहित पग जल तारण हार, गुर पेटे ना हुए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जासो कर्म लिखिया तुर आए, गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर शरणाई, नानक गुर पार।

न जाए, कर कृपा पूरन सुखदाते, तुमरी कृपा से तू चित आवे, आठ पैर तेरे रंगराते रहाओ, गावन सुनन सब तेरा भाना, हुकुम बूझे सो

ज्ञान, सदा सदा जाइए कुर्बान। काल गवाया करते आप, सदा सदा मन किसनो जाप। दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत। एको करता आपे आप, हर के भगत जाने प्रताप। नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया। मलार महला पंजवा, गुर शरणाई सगल निधान। साची दरगे पाये मान, ब्रह्म को दुख दर्द सब जाए। साध संग सब हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सालाए। नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाओ। सत गुर जेवड़।

सो मन निर्मल जो गुर संग राची, गुर पूरा पाये वडवाग, काम क्रोध लोभ मनते त्याग, कर कृपा गुर चरण निवास, नानक की प्रभु सत अरदास, राग मलार नैला।

मन हार प्रेद हार स्यों रंग किया की नोरी सगल सिंगार तजोरी सगल विकार ताव तो अस्थिर थी आ रहा ऐसे रे मन पाए कै आप गवाए कै कर साधन स्यों संग बाजे बजे मृदा।

नानक प्रयो प्रीतम थिया मलार महला पंजवा मन कने प्रमे बने उमक तरस चाले प्रभ मिलबे की चाहा रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे हज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हू गंधर्व।

बिसम बिसम बिसम भई अब फोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही सब एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण दुआरे मलार महला पंजवा बरस सरस आग्या होहे आनंद सगल पाग रहाओ संत संगे मन पर फड़े मिल मेघ तर सुहाग तन कोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया मल्हार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ के संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिनस गए बिखे जंजाल सात जना के चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मल्हार महला पंजवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण शरण तरन सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन।

हे समरथ अगम पूरन मोहे मयाधार अंधकूप मोह भयान नानक पार उतार मल्हार महला पहला अष्टपदिया कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद चक्री

मिलाई शास्त्रिक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे बिल करे बिल लाई कम हर कोर दसो दिस बरसे बिन जल प्यास न जाई मीन निवास उपजे जल ही ते सुख दुख पूर्व कमाई खिन तिल रह न सके पल जल बिन मरण जीवन तिस ताई तन वाडी तिर देश निवासी सच्चे गुर पै सबद पठाई।

आई अपना का सवारो आपे सुखदाते गोसाई गुरु प्रसाद कर ही फिर पाया कौ नानक तपत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग रहे गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनेक जतन कर रहे न पावे आच पाच टर पाही इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सत बार न लागे बवरे हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा

अमर अनाथ सर्व सिरमोरा काल विकाल परम पैखंजन। कागद कोट

नदी उपकंठ जैसे कर करवर सर्पन कर कर माही, उल्टी नदी कहाँ कर करवर सर्पन डसे दूजा मन माही। गरुड़

ऐ सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाते हैं तू सर्व जिया दयाला तुमरी शरण परे पत राखो साच मिले गोपाला बादी तंद अंग नहीं सूजे बदिक कर्म कमावे सतगुरु मिले ता सूजस बूजस।

चात्रिक मीन जल ही ते सुख पावे, सारिंग शब्द सुहाई, रैन बबीहा बोलियो मेरी माई, रहाओ त्रैस्यों प्रीत न उल्टे कबहू, जो ते पावे साई, नींद गई हो मैं तन फाकी, सच मत हृदय समाई, रूखी बिरखी उदो पूखा, पीवा नाम सुवाई, लोचन पार ललता बिललाती।

जुड़कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासाते मगना चालनहार, जित कर वसे तू है बिद जाने भी जो महल न जाते, सतगुर बाजो समझ न होवी सब जग दबिया छापे, करण तलाव करे बिलला तो बिन गुरु नाम न जापे, पल पंकज में नाम छड़ाए जे गुर शब्द सिंजापे, एक मूर्ख अंधे मुग्ध गवार, एक सतगुर के पै

सतगुरु बाजो कोर अंधारा डूब मोए बिन पानी जो किछ कीनो सो प्रभु रजाए जो तुर लिखिया सो मेटना न जाए हुक्मे बांदा कार कमाए एक शब्द राचे सत समाए चौ दिस हुक्म वरते प्रभु तेरा चौ दिस नाम पतालंग सब में शब्द वरते प्रभु साचा कर्म मिले बयालंग जामन मरना दी सह सिर उबो खुदया निद्रा कालंग नानक नाम मिले मन भावे साची नगर रसालंग मलार महला पहला मरण मुक्त गत सार न जाने कंठे बैठी गुर शब्द पछाने तू कैसे आ

मन मेरे हर हर नाम चितलाए, सतगुरु ते हर पाई है साचा, हर स्यों रह समाए रहाओ। सतगुरु ते ज्ञान उपजै ता ए संसा जाए, सतगुरु ते हर बुझिए गर्भ जोनी न पाए।

गुर प्रसादी शिव कर जमे विचो सकत गवाए अचर चरै विवेक बुद्ध पाए पुरख है पुरख मिलाए तातुर बाजी संसार अचेत है चले मूल गवाए।

वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे विचार बिन नावै जम दंड सहै मर्जन में वारो वार सतगुर पेटे मुक्त होए पाए मोख द्वार मन रे सतगुर सेव समाए वड्डे भाग गुर पूरा पाया हर हर नाम ते आए रहाओ हर अपने पाने सृष्ट उपाय हर आपे दे आधार हर अपने भाने मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर कै

केवट अवर न कोई आपे बक्षे मेल लए करम प्राप्त होए साचा साहिब मारो सतगुरु दिया दिखाए अमृत वर्ष है मन संतोखी है सच रहे निवलाए।

जाए। हर कृपा ते सतगुर पाई है, ते तैसे सुवाए। मन मुख परम पुलाया, बिन पागा हर तन ना पाए। त्रै गुण सबा तात है, पर करे विचार। मुक्त कदे ना हो वही, नौ पायन मोख द्वार। बिन सतगुर बंधन ना तुत ही, नाम न लगे प्यार। पढ़ पढ़ पंडित मो

है। हर सिउं रहा समाए मल्हार महला तीजा अष्टपदी कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हर हर कृपा करे गुरु की कारे लाए दुख पल्लर हर नाम बसाए साची गत साचे चित लाए गुरु की बाणी शब्द सुनाए मन मेरे हर हर सेव निधान गुरु कृपा ते हर तन पाई है।

नानक साचे सात समाए राग मल्हार छंक मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते, जन संग राते दिन सराते एक निमक मनो ना विसरै। गोपाल गुण निद सदा संगे सर्व गुण जगदीसरै। मन मोहलीना चरण संगे नाम रस जन माते। नानक प्रीतम कृपाल सदहू किने कोट मदे जाते। प्रीतम तेरी गत अगम अपारे महापतित तुम तारे। पतित पावन भगत वचल कृपा सिंध स्वामिया। संत संगे भजन संगे रहो सदा अंतर जामिया। कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे। नानक दर्स प्यास हर जियो आप लिहो समारे। हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना। जल मीन प्रभ जियो एक तू है पिन आन ना जानिए। गह पूजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मान।

बिनवंत नानक शरण तिनके, जिन्नी हर हर ध्याया वार मलार की महला पहला, राणे कैलाश तथा माल दे की तुन इको ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा, गुर मिले मन रहस्य ज्यो उठे तरण सिगार, शब्द से हरियावली सर करे सदर ताल, अंदर रचे सच रंग ज्यो मंजी ठे लाल, कमल विग से सच

काल खुदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल एनी अखी नदर न आवई जिचर शब्द ना।

तू लोड लहो जित वन्ये रोगा कान जित दारू रोग उठिए तन सुख वसे आए रोग गवाए आपना का नानक वैद सदाए पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सवाया ईस महेश्वर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तंग दे लाए आप छपाया।

संतै चित करे हो। नानक चूर मरे दोहागणी चिन अवरी लागाने हो। महला दूजा सावन आया हे सखी जल हर बरसनहार। नानक सुख सौन सुहागणी जिन सहनाल प्यार पौड़ी। आपे छिंज पवाए मलाखाड़ा रचिया लखे परथू पाए गुरमुख मचिया। मनमुख मारे पछाड़ मूरख कचिया। आप पेड़ मारे आप कारज रचिया। सबना खसम एक है गुरमुख जानिए। हुक्मी लिखे सिर लेख विन कलम मसवाणिए। सत संगत में लाप जिथे हर गुण स्वभाव खानिए। नानक सच्चा शब्द साला है सच पछाणिए। श्लोक महला तीजा। ऊनव ऊनव आया अवर करेंदा वन क्या जाना तिस सास्यों केव रहसी रंग। रंग रहा तिन कामणी जिन मन पाओ पाओ होए। नानक तह पाए बाहरी तिन तम सुख न होए। महला तीजा। ऊनव ऊनव आया वरसे नीर निपंग। नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कंते स्यो मन पंग पौड़ी। दोवे तरफा उपाय इक वर्त्या वेद बाणी वर्ताए अंदर वाद कत्या। परविरत निर्विरत हाठा दोवे विच तरम फिरे रे बारिया। मन मुख कच्चे कूड़ियार तिन्नी ने चौदर गै हारिया। गुरमती शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया। सच्चे अंदर महल सब सवारिया

करें नानक नगरी बाहरी सब करण पलाह करे पौड़ी सो हर सदा सरे भी है जिस तर्क न लागे वार आदाने आकाश पर खिन में टाहे उसारण हार।

गुरमुख पद सों लेखा निबड़े बक्से सिर पंडार ओथे हाथ ना पड़े फूक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुरु बेली होवे।

जो हर चरणी रह लिवलाए, जो जल में कमल अलिपत है ऐसी बंत बनाए, से सुखिए सदा सोने जिन विच्चों आप गवाए, तिन सोग विजोग कदे नहीं जो हर के अंक समाए।

जल फल चहु विश्ववर्ष दाया, खाली को ठाव नाही। एक जल वर्ष दे तिथ मरे ताग तिना के नाही। नानक गुरमुख तिन सोजी पई, जिन वस्या मन माहे पौड़ी। नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत न पाया, गुरमुख नाम पियाए।

नील अनिल अगम सरजीत सवाया, अगन उपाई वाद पुख तिहाया, दुनिया कैसिर काल दूजा भाया, रखे रखन हार जिन शब्द बुझाया। श्लोक महला तीजा, एहो जल सब कै वरसवा, वरसै पाए सुवाए, से बिरखा हरि आवले, जो गुरुमुख रहे।

हो जन मुक्त सदा होए पौड़ी। सच्चा वे परवाहो इको तू धनी, तू सब किच आपे आप दूजे किस गणी। मानस पूरा गर्भ सच्ची तुदमणि, आवा गौण रचाए उपाई मेदनी। सतगुर सेवे अपना आया किस गणी, जे हो मैं विच्चों जाए ताके ही गणत गणी। मनमुख मोह गुबार जो पुल्ला मंजवानी, कट्टे पाप असंख नामे इक कणी। श्लोक महला तीजा, बाबी हा खसमे का महल न जाने। महल देख अरदास पाए, अपने पाने बहुता बोले, बोलिया थाए न पाए। खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए। बाबी हा क्या बपुड़ा, जग तै की तिख जाए। महला तीजा, बाबी हा किन्नी रैन बोलिया, सहजे सच सुभाए। क्यों जल मेरा जियो है, जल बिन रह न जाए। गुर शब्दी जल पाई है, विच्चों आप गवाए। नानक जिस बिन चसा ना जीवई, सो सतगुरु दिया मिलाए पौड़ी। खंड पताल असं

कोई इक राजे खान मलूक कहे कहा में कोई इक सवा सदावे संत धन दूजे पट कोई इक दाते इक मंगते सगना सिर सोई बिना में बाजारिया पीहावल होई कूड़ निखुटे नानका सच करे सो होई। श्लोक महला तीजा बाबी हा गुणवंती महल पाया औ गुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसे गुरमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो गई नदरी नदर निहाल नानक नाम रते सहजे मिले शब्द गुरु कै काल। महला तीजा बाबी हा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास न उतरे छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निधान नानक गुरमुख बस ले अंत बेली होए भगवान पौड़ी। आपे जगत उपाय कै गुण अवगुण करे विचार त्रै गुण सर्व जंजाल है नाम न करे प्यार। गुण छोड़ अवगुण कमांदे दरगे हुए खुआर जुए जन्म तिन्नी हारिया कित आए।

तीजा गुरुमुख मल्हार राग जो करहे तिन मन तन शीतल होए गुरु शब्दी एक पछाणिया एको सच्चा सोए मन तन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची पगत है सहजे ही पट होए कल युग में कोर अंधार है मन मुख राव ना कोए सेवड पागी नानका जिन गुरुमुख प्रगट होए महला तीजा इंद वर्षे कर दया लोका मन उपजे चाओ जिसके हुक्म इंद वर्ष दा तिसके सद बलिहारे जाओ गुरुमुख शब्द संभालिए सच्चे के गुण गाओ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाओ पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया पूरे ज्ञान त्यान मेल चुकाया हर फर तीर्थ जान मनुआनाया शब्द मरे मन मार

लिखिया पाया। श्लोक महला पहला, कुल्हा देंदे बावले लेंदे वडे निलज, चूहा छड न मावई तिकल बन्ने छज, देन दुआई से मरे जिनको देन से जाहे, नानक हुक्म न जा कई किथे जाए समाहे।

विचार गुर के सबद सलाहिये अंतर प्रेम प्यार विन प्रीति पगत में हो गई विन सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुझ सेव दे एक ताड़ी करे पुकार जेहे दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार श्लोक महला पहला राती काल कटे दिन काल छिजे काया होए पराल वर्तन वर्त्या सर्व जंजाल पुलिया चुक गया तपताल अंधा चक्षक

मूरख पुख ना जाए, दूजे सब को लग विगुता, बिन सतगुरु बूझ ना पाए, सतगुरु सेवे सो सुख पाए, जिसनो कृपा करे रजाए। श्लोक महला पहला, सरम करम दो नानका, जे तन पल्ले पाए, सो तन मित्र न कांडिये, जित सिर चोटा खाए। जिनके पल्ले तन वसे, तिनका नाम फकीर, जिनके हृदय तू वसे, ते नर गुणी गहीर। महला पहला, दुखी दुनी सहेड़िये, जाए तन लगे दुख, नानक सच्चे नाम बिन, किसे न लथी पुख। रूपी पुख ना उतरे, जा देखा ता पुख, जेते रस शरीर के, तेते लगे दुख। महला पहला, अंधी कमी अंध मन, मन अंधे तन अंध, चिकर लाया क्या थी है, जा टूटे पत्थर बंद, बंद टूटे बेड़ी नहीं, ना तुल्हा ना हाथ, नानक सच्चे नाम बिन, केते डुबे साथ। महला पहला, लखमन सोयना लखमन रूपा, लख साहा सिर साहा, लख लस्तर लख

दया जानिए, कौजल तारण हार शब्द पछानिए, चोर जार जुआर पीड़े खानिए, निंदक लाए तबार मिले हरवानिए, गुरमुख सत समाए सो दरगे जानिए। श्लोक महला दूजा, नाव फकीर है पातशाह मूर्ख पंडित नाओ, अंधे का नाव पारखू एवे करे गुआओ, इल्लत का नाव चौधरी पूरी पूरे थाओ, नानक गुरमुख जानिए कल का एहो न्याओ। महला पहला, हरना बाजा कैसिक दारा एना परया नाओ, फांदी लगी जात फाइन अगे नाही।

पहला पहला अजर जरे तानो कुल बंद पूजे प्राण होवे फिर कंद कहां से आया कहां यो जान जीवत मर्त रहे परवान हुक्मे बूझे तक पछाने तिहु प्रसाद गुरु ते जाने होंदा सरी अज्ञानिक जान ना हो ना मैं जूनी पान पौड़ी पढ़िए नाम सलाहा होर बुद्धि मिथ्या बिन सके व्यापार जन्म बिरथिया अंत न पारा।

मह समाया एक पगवा वेस्तर परम दे बिन सतगुरु किन्हें न पाया देश दिशंतर पर थके तुद अंदर आप लुकाया गुर का शब्द रतन है कर चानन आप दिखाया अपना आप पछाणिया गुरमती सच समाया आवा गौन बजारिया बाजार जिनी रचाया एक फिर सच्चा सलाहा जिन मन सच्चा

मन भाया पाल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाना कन चरिया नचसी सतगुरु बोत बेड़ सच्चा रखसी अगन पखे प्रहार अंदिन पक्षी फासा चुगे चोग हुक्मी छुटसी करता करे सोहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला कर्म

कालकुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख दावणा जिन विश्व संसार राचीले जा कह कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सारखा ज्ञान पाखीले पाप पुण्य जा कह दांगिया।

सारंग राव सुरसरी सलल कृत बारुणी रे संत जन तर्क नहीं पानंग सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनंग तर तार अपवित्र तरमानिय रे जैसे कागरा करत विचारंग भगत पगौत लिखिए तेह ऊपरे पूजिए कर नमस्कारं मेरी जात कुट बांदला टोल टोवंता नित बनारसी आस पासा अब बिक्र प्रधान ते करे दंडौत तेरे नाम शरणाए रविदास दासा मल्हार हर जपत तेऊ जना पद्म कवलास पत पास समतुल नहीं।

पूरे लोक पर शुद्ध कबीरा जाके कुटुंब के तेज सब टोटो अंत फिरे अजो बनारसी आस पासा आचार सहत विपर करें दंडौत।

कहो रविदास पयो जल लेखो, जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो। राग का नवा चौक दे महल।

हों बलबल बलबल साथ जना को मिर संगत पार उतरे आ रहा हो। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी हम साथ जना पग परया तन तन साथ जिन हर प्रभ जानिया मिल साधु पतित उधरिया। मनुआ चले चले बहु बहु विद मिल साधु वत वत करिया जो जल तंत पसारे बगत।

किल बिख दैन पए किन अंतर, टूट गए माया के फास। क्या हम किर्म क्या कर्म कमावे, मूरख मुग्ध

रंग हर के रे कट कट राम रवियो गुपलाक हर के संत मिले हर प्रगटे उगर गए बिखिया के ताक संत जना की बहुत बहुत शोभा जिन उतारियो हर रसक रसाक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक हर के संत जना

हर राख ले हो आपन अपनाक, जन नानक के सखा हर भाई, मात पिता बंद पहर साक, कानड़ा महला चौथा। मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत, हर हर वक्त माया गड़वेड़ी, गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत, रहाओ मिथ्या परम परम।

गुण गावे गुरमत हो बलबले हो बलबले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी की चै लख बीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस राव हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे हर जप जपे जप जापो जगदीश तुमरे जन राम जपे ते उत्तम तिनको हो कुमकुमे कुमकुम जीस हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे सो करे जे तुद पावीस जन नानक अमृत पिया गुरमती तन तन तन तन तन गुरु साबीस कानड़ा महला चौथा पज रामो मन राम जिस रूप ना रेख वडाम सब संगत मिल पज राम बड हो भाग मथाम रहाओ जित गृह मंदर हर होत जास तित कर अनदो अनद पज राम राम राम राम नाम गुण गावो हर प्रीतम उपदेश गुरु गुर सतगुरा सुख होत हर हरे हर हरे हरे तज राम राम राम सब शिष्ट तार हर तुम

महला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पग हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म किरिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाइए हर ब्रह्म जोग हर पाइए सत संगति उपदेश गुरु संत जना खोल खोल कप

काट कटे काट हर काट कानड़ा मेला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ ला दो सुर हो लिखे लीला दो रहाओ बिख माया संत बहुचित है विकार सुख पाइए हर पज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधो ज्यो छोए पारस मनहूर भय कंचन त्यों पतित जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधा दो ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार बरन चार

सुख पावे जप हर हर नाम निधान। उस्तत करे प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुरु सतगुरु भगवान। जिनके हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावे ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान। तिन सेवा हम लाए हरे जन नानक के हर।

जाको सतगुर अपना राखे, सो जन हर रस रसना चाखे, कहो नानक गुर कीनी माया, हालत पलत मुख उजल भया, कानड़ा महला पन्नवा, आराधो तुझे स्वामी अपने, उठत बैठत सोवत जागत, सास सास सास हर जपने।

कहो नानक ता कह बल जाओ, कल युग में पाया जिन नाओ, कानड़ा महला पंजवा, कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना, अनेक बार कर बंदन संतन, ऊहा चरण गोविंद जी के बसना, रहाओ अनेक पाप कर द्वार न पावो, होए कृपाल ता हर हर ध्यावो, कोट कर्म कर दे न सोदा, साध संगत में मन प्रबोधा, कृष्ण ना बूझी बहु रंग माया, नाम लेत सर्व सुख पाया, पार ब्रह्म जब पहे दयाल, कहो नानक कहो छू।

अनिक स्वांग का छे पेख तारी, जैसो सा तैसो दृष्टारी, कहन कहावन सगल जंजार, नानक दास सच करनी सार, कानड़ा महला पंजवा, तेरो जन हर जस सुनत उमायो।

ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यो परदा लायो गुरु प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाज समायो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन पेटत होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो कांटे रोग पे मन निर्मल।

नानक लिप्त नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पर आई जब ते साथ संगत मोय पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो।

तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ, तुमरी आस परोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय ले धरना, तुमरो बल तुम संग सुहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल सा पौजल।

सुख पाया तृष्णा सब बुझी है, सांस पाई गुण गाया बिन बूझे पशु की न्याई, प्रम मोहे व्याप्यो माया साध संग जम जेवरी काटी, नानक सहज समाया कानड़ा महला पंजवा, हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत, सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आस होत पूरन।

सिमरत एक बार हर हर मित कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नासे हृद पयंत सांत अमृता रस पी।

उदरे हर सिमरत नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निज पतित उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो कानड़ा महला पंजवा तन ओ प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूरन बड़ पागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी कोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाओ अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूरन रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर।

नारायण नरपत नमस्कार है। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितार है रहाओ। कवन कवन कवन गुण कही है, अंत नहीं कछ पार है। लाख लाख लाख कई कोरे को है ऐसो विचार है। विषम विषम विषम ही भई है, लाल गुलाल रंगार है। कहो नानक संतन रस आई है।

ऊंच नीच सब पेक समानो मुख बकनो मन मान रहाओ। कट कट पूर रहे सुख सागर पै पंजन मेरे प्राण। मने प्रगास पयो प्रम नास्यो मंत्र दियो बुरकान। करत रहे कर्तज्ञ करुणा में अंतर जामी ज्ञान। आठ पहर नानक जस गावे मांगन को हरदान। कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन को कई केत ऐसो जन बिरलो है।

कहु नानक जन हर हर हर है, कत आवे कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भये ते संगे, मोहनी मोहे रही मोरी माय रहाओ, जय जय पै कहो बिरसा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए, अनेक पांत की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं चोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवारे, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विषम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरनारे, कहो नानक प्रभु पय कृपाला, मगन पय ही रह दरसारे, कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, देखत सुनत सबन कै संगे, खोरे काज बुरु कै फेरो, रहाओ, नाम बिना जे तो लपतायो, कछु नहीं नाही कत्तेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोयो परम अंधेरो, अटक्यो सुत बनता संग माया, देवन हार दतार बिसेरो, कहो नानक एक कै पारो सो, बंधन काटन हार गुर मेरो, कानड़ा महला पंजवा, विखे दल संतन तुमरे गायो, तुमरी टेक परोसा ठाकुर, शरण तुम्हारी आयो रहाओ, जन्म जन्म के महापराचत, दर्शन पेट मिटायो, पयो परगास अनद उजियारा, सह समाध समायो, कौन कहे तुम ते कछ नाही, तुम समरथ अथायो, कृपा निधान रंग रूप रस, नाम नानक ले लायो, कानड़ा महला पंजवा, बूढ़त प्राणी हर जप

संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पे तत नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मने सुख पाये, साध जना मिल हर जस गाये।

अंध कोर सागर नहीं मरसन, कानड़ा महला पंजवा, कोकत कपट खपट खल गरजत, मरजत मीच अनक बरिया रहाओ, अहंग मत अनरत पुमित हित प्रीतम, देखत परमत लाख गरिया, अनित व्यवहार अचार विधहीनत, मम मद मात कोप जरिया, करुण कृपाल गोपाल दीन बंद, नानक उदर

खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय तार उतरिया दुख मंद राज तन परवार मेरे सर्व सो गोविंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद कानड़ा मेला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद प्रभ पूजो नाम अराध गुर सतगुर चरनी लाग हर पावो मन आगाद जग जीतो हो गुर किरपाद रहाओ अनक पूजा मैं बहुविध खोजी सा पूजा जे हर पावास माटी की ए पुत्री जोरी क्या ए कर्म कमास प्रभ बां पकड़ जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास अवर ओट में कोई न सूजे इक हर की ओट में आस क्या दीन करे अरदास जो सब कट प्रभु ने

जगत उदाहरण नाम से तेरे, नवनिद नाम निदान हर केरे, हर रंग रंग रंग अनुपेरे, काहे रे मन मोहे मगनेरे, नैनो देख साध दर्शेरे, सो पावे जिस लिखत लिले रे, रहाओ सेवो साध संत चरने रे, बाँचो तूर पवित्र करे रे, अरसत मज्जन मैल कटे रे, साफ साफ त्यावो मुख नहीं मोरे, किच संग न चाल।

बरना साकू एक तुलेर है, दर्शन प्यास बहुत मन मेर है, मिल नानक देव जगत गुर केर है। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन।

मान मोह त्याग छोड़ो तव नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूरन सब संगा। रहाओ बरत नेम तीरथ सैत गंगा जल हेवत पूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्र कर्म तिलक खाटंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निग्रह अत रहत बिटंगा हौ रोग व्यापै चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा।

तुम्हारे बलबले बलबले बल गई। पहले पै संत पाए त्याए प्रीत लाए, प्रभ थान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार। अनिक दास कीरत करें तुम्हारी, सोई मिलियो जो पावतो जन नानक ठाकुर।

नहीं उपाओ रहाओ। कटन खटन जटन होमन नाही दंड तार सुआओ। जतन पांसन तपन प्रमन अनिक कथन कथन।

जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंकार राव जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सो जन उदरे जिसे उदारो आप बिनस जाए।

ज्ञान मोही पंच दोही उर्ज निकट बत्यो ताकि शरण साधुआ दूत संग निवार रहाओ। कोट जन्म जोन प्रम्यो हार पर्यो द्वार कृपा गोविंद पई मिल्यो नाम आधार दुर्लभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार। कानड़ा महला पंजवा कर यारवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सहज सुभाए आपने आए कछु ना जानो कछु दिखाए प्रभ मिल्यो सुख बाले पोले रहाओ। संजोग मिलाए साध संगाए कथु ना जाए करें बसाए गुण निधान प्रगट्यो ए चोले चरण लुभाए आन सजाए थान सनाए सर्व समाए रसक रसक नानक गुण बोले। कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमित रूप अगम अगोचर रहो सर्व समाई रहाओ। कहन पवन नाही पायो पायो अनेक उकत चतुराई जतन जतन अनेक उपावरे तो मिलो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निध जन नानक संत रे नाई। कानड़ा महला पंजवा माई सिमरत राम राम राम।

मंतन सर्वसो हर गुण निदे सुख मोर ईत ऊत राम पूरन निरखत रिद खोर संत सरन तरन नानक बिन सियो दुख कोर।

मृत मृत निकट निकट सदा है। हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड, बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई। कानड़ा अष्टपदिया।

मन गुरमत नाम समावे गो, नाम सुने नामो मन भावे, नामे ही तृप्तावे गो। कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पात बनावे गो। नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवे गो। माया पटल पटल है भारी, कर कूमन केर कुलावे गो। पाप विकार मनूर सब भारे।

अज्ञान लाए सवालिया, गुर ज्ञान लाए जगावे गो। नानक पाणे अपने ज्यो पावे तिवे चलावे गो। कानड़ा महला चौथा, जप मन हर हर नाम तरावे गो। जो जो जपे सोई गत पावे, ज्यो त्रू प्रहलाद समावे गो। रहाओ।

मिल सतगुरु नाम त्यावै गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मल लह जावै गो। ज्यो लोहा तरयो संग काष्ट लग, शब्द गुरु हर पावै गो। संगत संत मिलो सत्संगत, मिल संगत हर रस आवै गो। बिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावै गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर रस मीठ लगावै गो। खिन खिन नाम दे वडियाई, सतगुरु उपदेश समावै गो। भगत जना को सदा निव रही है।

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो जो जो भगत होए सो पूजो परमन परम चुकावे गो जात न जात देख मत परमो सुख जनक पगी।

गुर गरुड़ शब्द मुख पावे गो, माया पुयंग तिस नीड नावे, दिख चार चार लिव लावे गो, स्वान लोभ नगर में सबला, गुरखिन में मार कडावे गो, सत संतोख धर्म आन राखे, हर नगरी

ज्यों गुर उपदेश तरे प्रहलादा, गुर सेवक पैज रखावै गो। सतगुर बचन बचन है नीको, गुर बचनी अमृत पावै गो। ज्यों अमरीत अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन त्यावै गो। सतगुर सरन सरन मन पाए।

हर हर हर हर हर सर सेवे तीन दरगे मान दिवावे गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे हर गल मिल मेल मिलावे गो गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचय नाम दियावे गो हर हर रूप हर रूपो होवे हर जन को पूज करावे गो साकत नर सत

रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे, जन्म मरना पा गए सतसंग पाये हर त्याये, बहुर दुख ना ला गए, कर दया दाते पुरख विदाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन पूर बांचे, हर दर्श सहज।

गोविंद गोविंद गुरु मत ध्याये, सादर गए पाये मान। गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान, नानक गुरु गोविंद हर जित मिल हर पाया नाम।

सत्संगत सतगुर तन तनो तन तन तनो जित मिल हर बुलग बुलोगिया। सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे, हर बोलत सब पाप लहो गया। श्लोक महला चौथा। हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोय, हौ मैं ममता नाथ होए दुर्मत कड्डे धोए। नानक अंधिन गुण उचरे जिनको तुर लिखिया होए। महला चौथा। हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए, हर आपे आप वरसदा हर जेवड अवरना कोए। जो हर प्रभ पावे सो थिए, जो हर प्रभ करे सो होए। कीमत किने न पाया बेअंत प्रभु हर सोए। नानक गुरमुख हर सा लाहिया तन मन शीतल होए। पौड़ी। सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना। सब त्यावे तुद मेरे प्रीतमा तू सत सत पुरख निरंजना। एक दाता सब जगत पिखारिया हर जाते सब मंग मंगना। सेवक ठाकर सब तू है तू है गुरमति हर चंग चंगना। सब कहो मुखो रिखी केस हरे जित पावे सब फल फलना। श्लोक महला चौथा। हर हर नाम से आए मन हर दर गए पावे मान। जो इच्छे सो फल

गुरुमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा धार प्रभ जन नानक जप हर नाम महला चौथा हर हर नाम पवित्र है नाम

रंग परंग सिद्ध सब साजी, बहु बहु विद पांच उपावनी, सब तेरी जोत जोती विच वरते, गुरमती सुदै लावणी, जिन हो है दयाल तिन सतगुर मेले, मुख गुरमुख हर समझावनी, सब बोलो राम रमो श्री राम रमो, जित दालद दुख भुख सब ले जावनी। श्लोक महला चौथा, हर हर अमृत नाम रस, हर अमृत हर उर्धार, विच संगत हर प्रभु वर्तदा, बुज्जो शब्द विचार, मन हर हर नाम से आया, दिखाऊं मैं।

पहला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल जुग करनी सार मत गुरु मत कीरत पाई है हर नामा हर उरहार वड पागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर पंडार बिन नामे जे कर्म कमावणे नित हो मैं होए खुआर जल हस्ती मलना वाली है फिर भी फिर पावे चार हर मेलो सतगुरु दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरुमुख सुन हर

सब चवो मुखो जगन्नाथ जगन्नाथ जग जीवनो जित पव जल पार उतारा। श्लोक महला चौथा। हमरी जेबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाहा। हम क्यों कर जपे ए आणिया हर तुम बड अगम अगाहा। हर देहो प्रभु मत ऊतमा गुर सत गुर के पग पाहा। सत संगत हर मे

गुरु सतगुरु मेल दयाल। गुरु सेवा हर हम पाया, हर हुआ हर कृपाल। सब आशा मन सा विसरी, मन क्यू का आल जंजाल। गुरु तुठे नाम दृढ़ाया, हम किए शब्द निहाल। जन नानक अकुट तन पाया, हर नामा हर तन माल। पौड़ी हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सब ऊपर वडे वडौना। जो त्यावे हर अपरंपर, हर हर हर त्याए हरे ते होना। जो गावे सुने तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना। तुम जैसे हर पुरख जाने, मत गुरमत मुख वड वड भाग वडोना। सब त्यावो आद सते, जुगाद सते, परतक सते, सदा सदा सते। जन नानक दास दसोना। श्लोक महला चौथा। हमरे हर जग जीवना, हर जप्यो हर गुरु मंत्र। हर अगम अगोचर अगम हर, हर मिलिया आए अचिंत। हर आपे कट कट वर्तदा, हर आपे आप बेअंत। हर आपे सब रस भोगदा, हर आपे कवला कंत। हर आपे पिखिया पाईदा, सब सिष्ट उपाई जी जंत। हर देवो दान दयाल प्रभ, हर मांगे हर जन संत। जन नानक के प्रभ आए मिल, हम गावे हर गुण चंत। महला चौथा। हर प्रभ सज्जन नाम, हर मैं मन तन नाम शरीर। सब आशा गुरमुख पूरिया, जन नानक सुन हर तीर। पौड़ी हर उत्तम हरिया नाम है, हर पुरख निरंजन मौला। जो जप दे हर हर दिन सरात, तिन सेवे चरण नित कौला। नित सार संभाले सब जी जंत, हर वक्त है निकट सब जौला। सो बुझे जिस आप बुझाए ती, जिस सतगुरु पुरख प्रभ कौला। सब गावो गुण गोविंद हरे, गोविंद हरे, गोविंद हरे। गुण गावत गुणी समौला। श्लोक महला चौथा। सुतिया हर प्रभ चेत मन, हर सहज समाज समाए। जन

पंचे शब्द वजे मत गुरमत बड पागी अनहद वजिया अनद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजिया आद जुगाद वेश हर एको मत गुरमत हर प्रभ पजिया हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब तन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर भरे वहन जिना सतगुरु मन्या जन नानक वड पाग लहन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वरनी है किस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चटसाल है जिस हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सतगुरु जित मिल हर लेखा लिखा। श्लोक मैला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सतगुरु भाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन

हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए। जिन सुर मस्तक लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए। तन मन शीतल होया सांत वती मन आए। नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख ले जाए। पौड़ी हों वारिया तिनको सदा सदा जिना सतगुरु मेरा प्यारा देखिया। तिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया। हर अगम दियाया गुरमति तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया। गुरु बचन से आया जिना अगम हर ते ठाकुर सेवक रल एकिया। सब कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे। हर लाहा हर भगत ने सेखिया। श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे रम रामो राम रमीत। कट कट आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत। हर निकट वसे जग जीवना प्रगास कियो गुरमीत। हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले जिन लिखिया तुर हर प्रीत। जन नानक नाम ते आया गुर बचन जप्यो मन चीत। महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लो पाग वसे वड पाग। गुरु पूरे देखा लिया नानक हर लिवलाग। पौड़ी तन तन सुहावी सफल करी।

मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजाने हर मेल दिखाए आप हर गुरबचनी नाम समाने तिन वित्तो नानक वारिया जो जप दे हर निर्वाणी श्लोक महला चौथा हर प्रभ रत्ते लोयना ज्ञान अंजन गुरुदे मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले।

सब जाए नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे वसगत कीता एक मन मुख कर हारायन एक नामेल गुरु तिना जीता हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरु बचन सभा।

वो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो हो, जिन जगत उपाए सब वो वस कीता। श्लोक महला चौथा, मन अंतर हो मैं रोग है, परम फूले मन मुख दुर्जना। नानक रोग बजाए मिल सतगुरु।

बिन नहीं कोई, कट कट अंतर रव रहा, जप्यो जन कोई, सगल जपो गोपाल गुण, प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा, गुरुमुख मिले से सज्जना, हर प्रभ पाया रंग, जन नानक नाम सलाए तू, लुड लुड दर गए।

रामा राम राम मैं अंक न पाया, हम बार प्रत पारे तुमरे, तू बड़ पुरुष पिता मेरा माया रहाओ। हर के नाम असंख्य अगम है, अगम अगम हर राय।

जन को कृपा करो मधुसूदन। हर देवो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है। जन नानक गुरुमुख पाया कल्याण महला चौथा। हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत। तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा गुर के पग सिमरो दिन राती। मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी। सस चंदन जस सस्या हर जन हर हर हर लिव लाई। सब साकत खोज पया ज्यो किरत संजोग चलियो। नर निंदक पग नागन छो जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया। कहां भया दैत करी बखीली सब कर कर चर परिया। जे तेजी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखे जन नानक शरण पया। कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुरु उपदेश हर नाम ते आयो। सब किल बिख दुख लाथे रहाओ। रसना एक जस दाए न साके बहु की जय बहु रसनते। बार बार खिन पल सब गावे गुण कह ना सके प्रभु।

कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन को क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प आरापो, कोई मिले प्रभु मिलते, हर के गुण बहुत बहुत बहुत होबा, हम कुछ कर कर बरनते, हमरी मत वसगत प्रभु सुमरे, जन नानक के प्रभु समरथे, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अतः सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ, सो हर हर नाम से आवे हर जन, जिस बद भाग मथई, जह दरगे प्रभ लेखा मांगे, तह छुटे नाम से आए थई, हमरे दोख बहुत जन्म जन्म के, दुखों में मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल ना वाए, सब किल बिख पाप गथई, जन के रिद अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम पज थई, जह अंति अवसर आए बनत है, तह राखे नाम साथई, जन तेरा जप गावे हर हर, प्रभ हर जपियो जगन्नाथ थई, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पात्र रख बुढ़ थई, कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ जाने, और कोई निंद करे हर जन।

हर सेवा से काल जो न साके चरनी आए पवे हर जाने जाको राख ले मेरा स्वामी ताको सुमत दे पहकाने ताको कोई अपर न साके जाकी भगत मेरा प्रभु माने हर के चोज विदान देख जन जो खोटा खरा इक निमक पछाने ताते जन को आनंद भया है रिद सुध मिले खोटे पछताने तुम हर दासे समरथ स्वामी इक मांगो तुझ पासो हर दाने जन नानक को हर कृपा कर दीजे सद बसे हृदय मोहे हर चराने।

सतगुरु प्रसाद पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी दुख निवारण नारायण सगल भगत जाते सुख सागर पवनिध तरण हर।

सफल सफल सफल दर्शने परस परस गुण गाये नानक तत् तत् सो मिलिए हीरे हीर विदाई।

सिद्ध मुन इंदिरा भगत दान जस मंगी जोग ज्ञान ध्यान सेख ना गए सगल जपे तरंगी कहो नानक संतन बलिहार है जो प्रभु के सत्संगी कल्याण महला।

मन रसक रसन नाम जपत तें पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान पुगत सुरत शब्द तत बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन विद ताकी कहा करो तर्क ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे।

गोविंद नानक आसरो कल्याण महला पंजवा। मन तन जापी है भगवान गुरपुरे सो प्रसन्न भये सदा सुख कल्याण रहाओ। सर्व कार्य सिद्ध भये गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाथिया दुख काल। कर कृपा प्रभु मेरिया करो दिन रहन सेव। नानक दास

सुरत मत चतुराई शोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरन कर

जय हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिन दी जय। राम नाम तुल और न

हम निर्गुणी मनूर अत सीखे, मेरे सतगुर पारस की जय रहाओ। सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछे, नित आशा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगे, मिल दर्शन तृप्त मन दी जय। माया मोह सबल है भारी, मोह कालक दाग लगी जय। मेरे ठाकुर के जन

साकत सूत बहु गुरुजी भरिया क्यों कर तांतनी जय संत सूत किस मिकते नाही साकत संग न की जय सतगुर साध संगत है नीकी मिल संगत राम रवि जय अंतर रतन जवे हर मानक गुर कृपा ते ली जय मेरा ठाकुर वड़ा वड़ा है।

कृपा कृपा कर साध मिलावो जग सम्मन को थम दी जय बसदा तले तले सब ऊपर मिल साधु चरण रुली जय अप उत्तम हो वो सब शिष्ट चरण तल दी जय गुरमुख जो

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय। जो जल मीन जलन जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय। माँ अपाग अपाग है जिनके तिन साधु तूर न पी जय। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे दंड तरम राय का दी जय। सब तीर्थ बरत जग पुन किए हिवे गाल गाल तन छीजे। अतुल्ला तोल राम नाम है गुरमत को पुजे ना तोल तुली जय। तब गुण ब्रह्म ब्रह्म तू जाने जन

मन तन अर्थ करो सब आ गए रस गुरमत ज्ञान दृढ़ी जय रहा ब्रह्म नाम गुण साफ तरोवर नित चुन चुन पूज करी जय आत्म देव देव है आत्म रस लागे पूज करी जय विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल।

जो पीप पलास खाए ली जाए, सब नर में प्राणी उत्तम होवे, राम नाम में बास बसी जाए, निर्मल निर्मल कर्म बहुकीने, नित साखा हरी जड़ी जाए, परम फुल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया, बेकार बास जग

नाम बिना नक से नर देखो तिन पस पस नाक वडी जाय साकत नर अंकारी कही है बिन नाम है त्रिग जीवी जाय जब लग सांस सांस मन अंतर तप बेगल शरण परी जाय नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखी जाय कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण धुवी जाय किल बिखो दहन होए खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा की जय रहाओ मंगत जन दीन करे दर ठाडे अत तरसन को दान दी जय त्राहे त्राहे शरण प्रभ आए मोको गुरमत नाम दृढ़ी जय काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उठ जूझ करी जय अंगीकार करो रख ले वो गुर पूरा कार्ड कटी जय अंतर अगन

ज्यो सूरज किरण रविया सर्ब ठाई, सब कट कट राम रवि जय। साधु साध मिले रस पावे, तप निज पर बैठिया पी जय। जन को प्रीत लगी गुर सेती, ज्यो चकवी देख सूरी जय। निरखत निरखत रैन सब निरखी, मुख काढ़े अमृत पी जय। साकत स्वान कहिए बहु लोभी, बहु दुर्मत मैल भरी जय। आपन स्वाय करें बहु बाता, तिना का विसाहु क्या की जय। साधु साध शरण मिल संगत, जित हर अस्ताड कदी जय। पर उपकार बोले बहु गुनिया, मुख संत भगत हर दी जय। तू अगम दयाल दया पत दाता, सब दया तार रख ली जय। सर्व जी जग जीवन एको, नानक प्रतपाल करी जय। कल्याण महला चौथा, रामा हम दासन दास करी जय। जब लग सास हुए मन अंतर, साधु तूर कवि जय रहाओ। शंकर नारद शेख नाग मुन, पूर साधु की लोची जय। पवन पवन पवित्र हो है सब, जय साधु चरण धरी जय। तज लाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रही जय। कर्म राय की कान चुकावे, दिख दुबदा काड कटी जय। परम सुखे बहु उबसुक कही है, मिल साधु संग हरी जय। आते बिलम पल टिल न की जय, जय साधु चरण लगी जय। राम नाम कीर्तन रतन वथ, हर साधु पास रखी जय। जो बचन गुर सत्य।

जेवद भाग होए अपनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जय सब माया मोह बिकम जग तरिए सहजे हर रस पी जय माया माया के जो अधिकारी विच माया पचै पची जय अज्ञान अंधेर महा पंच बिखरा अहंकार पार लग ली जय नानक राम राम राम राम राम राम ते गप की जय सतगुरु मिले ता नाम दृढ़ाए राम नाम रले मिली जय छक्का पहला।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राज करवाती विपास महला पहला चौक दे कर पहला नाए तेरे तरना नाए पत पूज नाओ तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरे नाओ मन्ने सब कोए बिन नाव में पत कब होना होए अवर सियाण तो सगली पाज जय बख्शे तै पूरा काज रहाओ नाओ तेरा पान नाओ दीवान नाओ तेरा लश्कर नाओ सुल्तान नाए तेरे मान।

सोजन जान साची दरगे पावे मान कहना सुनना अकथ पर जाए कपनी बदनी नानक जल जाए प्रवासी महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अष्टपद तीर्थ संग गहे गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह गुरु समान।

अगर न करना जाए रहा जैसे हर हट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर परियत है, तैसो ही यो खेल खत्म का, ज्यो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर परगासी, मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी कौन गिरही कौन उदासी, जिसकी आशा तिस ही सौंपते एहो रहा निर्वाण, जिससे होआ सोई कर मान्या, नानक गिरही उदासी सो करवाण। प्रभाती महला पहला, दिष्ट बिकारी बंधन बांधे हों तिसके बल जाई, पाप पुन की सार न जाने फूला फिरे अजाई, बोलो सच नाम करतार सुन बहुर ना आवन।

ताँ को समझावन जाये जे को भूला होई। आते खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई, नाव पर भाते सब त्याई है छोड़ो दुनी परीता। प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता, परवाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तस्कर शब्द निवारिया मगर उठा साबास। जा तू राखे राख ले साबत हो गए रास, ऐसा नाम रतन निध मेरे गुरमत देह लगो पग तेरे रहाओ। मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार, मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार। पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार, कट कट एक वखाणी है कहो न देखिया जाए। फोटो पूठो रालिए बिन नावे पच जाए, जा तू मेले ता मिल रहा जा तेरी होए रजाए। जात जन्म ने पूछिए सब कर ले हो बताए, सा जात सा पत है जे कर्म कमाए। जन्म मरम दुख काटिए नानक छूट सुनाए, प्रभाती महला पहला जागत बिगसे मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा। आसा आवे मनसा जाए पुरजी पानी किछ ना बसाए, जागस जीवन जागन हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ। कहो न बूझे अंग न सूझे ओंदी कार कमाई, आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर करमी मिले वडाई। दिन दिन आवे तिल तिल चीजे माया मोह।

जाए। कर्महीन सच पीछिया मांगे नानक मिले वडाई। प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया अधिक बको तेरी लिव रहिया। फूल चूक तेरे दरबार नाम बिना कैसे आचार। ऐसे झूठ मुठे संसारा निंदक निंदे मुझे प्यारा। रहाओ जिस निंदे सोई बिद जाने गुर के शब्दे दर निशाने। कारण नाम अंतर्गत जाने जिसनो नगर करे सोई बिद जाने। मैं लो उजल सच कोए उत्तम आख न ऊंचा होए। मनमुख खूल महा बिखाए गुरमुख होए सोरा चैनाए। अंधो बोलो मुग्ध गवार हीनो नीच बुरो बुरियार। नीदन को तन नाम प्यार यो तन सार होर बिख्याचार। उस तक निंदा शब्द विचार जो देवे तिसको जयकार। तू बक्से जात पत होए नानक कह कहावे सोए। अरवाती महला पहला खाया मैल वबाया पेंदे कर की हान। बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान। बाबा ऐसा बिखन जाल मन वासिया बिबल चाग सहज परगासिया। रहाओ बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए। जम गरबा दे मारिए छूटस्था चैनाए। जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए। मन मुख मूल गवाया दरगे मिले सजाए। जग खो तो सच निर्मलो गुर शब्दी विचार। ते नर बिरले जानिए जिन अंतर ज्ञान मुरार। अजर जड़े नीजर चढ़े हमर अनंत स्वरूप। नानक जल को मीन से थे पावे राखो प्रीत। प्रभाती महला पहला गीत नाद हर्ष चतुराई। रह सुरंग सुरमाई स्पाई पैनन खां चीत न पाई। सात सहज सुख नाम वसाई। क्या जाना क्या करे करावे नाम बिना तन किसना सुखावे। रहाओ जोग विनोद स्वाद आनंदा मत सत पाए भगत गोविंदा। कीरत करम कार निज संदा अंतर्गव तो राज रविंदा।

विचारी त्रिपुट तरंग तट विचारी अकथो कथो क्यों मैं जोर तगत करी कराहे मोर अंतर वसे चूके मैं मोर किस से भी दूजा नहीं होर गुर का शब्द महारस मीठा ऐसा अमृत अंतर डीठा जिन चाख्या पूरा पद होए नानक प्राप्यो तन सुख होए परवाती महला पहला अंतर देख शब्द मन मानिया और न रांगन हारा एनस जिया देख संभाले तिस ही की सरकारा मेरा प्रभु रांग कणो अत रूड़ो दीन दयाल प्रीतम मनमोहन अत रस लाल सगूड़ो रहाओ ऊपर कूप गगन तनिहारी अमृत पीवन हारा जिसकी रचना सो विधि जाने गुरमुख ज्ञान विचारा पसरी किरण रस कमल विगासे सस्तर सूर समाया काल बिंदुस मन सामन मारी गुर प्रसाद प्रभु पाया अत रस रंग चलू ले राती दूजा रंग ना कोई नानक रसम रसाए राते रब रहा प्रभु सोई परवाती महला पहला बारे में रावल खप जावे चहो छह में सन्यासी योगी का पड़िया सिर खूथे बिन शब्द गल फासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हथ हस्त में पीछिया जाची।

दुख पाए। शब्द मिले से सूचा चारी साची दरगह माने। अंग दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने। सगले कर्म कर्म

आज सिख जाको क्या तिस उपमा कही है। लाल जवेहर रत्न पदार्थ खोजत गुरमुख लही है। चीने ज्ञान त्यान तम साचो एक शब्द लिवलावे। निरालंब निरहार नह केवल निरपौता लीलावे। सायर सपत करे जल निर्मल उल्टी नाम चरावे। बाहर जातो ठाक रहावे गुरमुख से समावे। सो गिर ही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछानिया। नानक कहे अवर नहीं दूजा सात शब्द मन मानिया। राज करवाती महला तीजा चौपदे इको अंकार सतगुर प्रसाद। गुरमुख बिरला कोई बूझे सब दे रहा समाय। नाम रते सदा सुख पावे साथ रहे लिवलाई। हर हर नाम जपो जन भाई गुर प्रसाद मन अस्थिर होवे। हम दिन हर रस रहा अघाई रहा। हम दिन पवित करो दिन राती इस जुग का लाहा भाई। सवा जन निर्मल मैल न लागे सच नाम सितलाई। सुख सिगार सतगुरु दिखाया नाम वड्डी वड्याई। अकुट पंडार करे कदे तोट ना आवे सदा हर सेवो भाई। आपे करता जिसनो देवे तिस वसे मन आई। नानक नाम ते आए सदा तू सतगुरु दिया दिखाई। करवाती महला तीजा निर्गुणी आरे को बस ले स्वामी। आपे ले हो मिलाई तू बेअंत तेरा अंत ना पाया सब दे दिहो बुझाई। हर जियो तुद विट्टो बल जाई तन मन अर्पी तुद आगे राखो। सदा रहा शरणाई रहाओ अपने पाने विच सदा रख स्वामी। हर नामो दे वड्याई पूरे गुरते पाना जापे हम दिन सह समाई। तेरे पाने भगत जे तुद भावे आपे बख्श मिलाई। तेरे पाने सदा सुख पाया गुर कृष्णा अग्न बुझाई। जो तू करे सो होवे करते अवर न करना जाई। नानक नावे जेवड अवर न दाता पूरे गुर ते पाई। करवाती महला तीजा गुरमुख हर साल आया जिन्ना तीन साल आहे हर जाता। विचों परम गया है दूजा गुर कै शब्द पछाता। हर जियो तू मेरा इक सोई तुद जपी तुद ऐसा लाही। गत मत तुझते होई रहाओ गुरमुख सालान से साध पाएन।

मल होवा चूका मन अभिमान सकल जन्म तिस प्राणी केरा हर के नाम समान मेरे मन गुर की सिख सुनी जाए हर का नाम सदा सुखदाता सहजे हर रस पी जय रहाओ मूल पछाणन तिन निज करवासा सहजे ही सुख होई गुर के सबद कमल परगासिया हों मैं गुरमत खोई सब नाम एक को सच वरते विरला बूझे कोई गुरमति मन निर्मल होआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वसिया विच मन ही मन माने सद बलिहारी गुर अपने विटो जित आत्म राम पछाने मानस जन्म सतगुरु न सेविया बिरथा जन्म गवाया नजर करे ता सतगुरु मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वडियाई पूरे पाग से आया प्रभाती महला तीजा आपे पांत बनाए बहुरंगी शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया कर कर वेखे करे कराए सर्व जियानो रिजक दिया कली काल में रव्या राम कट कट पूर रहा प्रभे को गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहा गुप्ता नाम वर्ते विच कल जुग कट कट हर पर पूर रहा नाम रतन तिना हृदय प्रगटिया जो गुर सरणाई पग पया इंद्री पंच पंचे वस आने खिमा संतोष गुरमत पावे सो तन तन हर जनवड पूरा जो कह बैराग हर गुण गावे गुर ते मोह फेरे जे कोई गुर का कहया ना चित धरे कर आचार बहु संतोषं चे जो किछ करे सो नरक पड़े एको शब्द एको प्रभु वर्ते सब एक से उत्पत्तल है नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रले प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सालाए पूरा पाग हो गए मुख मस्तक सदा हर के गुण गाए रहाओ अमृत नाम भोजन हर दे कोट मदे कोई विरला ले जिसनो अपनी नजर करे गुर के चरण मन माए वसाए दुख अनेरा अंदरों जाए आपे फाचा ले मिलाए गुर की बाणी सो लाए प्यार एथे ओथे एव आधार आपे देवे सृजनहार सच्चा ननाए अपना भाणा सोई तगत सुगड़ सुजाना नानक तिसके सब कुर्बाना प्रभाती महला चौथा विपास एक ओंकार सतगुरु प्रसाद रसक रसक गुण गावे गुरमत लिव उन मन नाम लगान अमृत रस पिया गुर शब्दी हम नाम विटो कुर्बान हमरे जग जीवन हर प्राण हर उत्तम रिद अंतर भायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर नाम बखान कित विद क्यों पाये प्रभ अपना मोको करो उपदेश हर दान सत संगत में हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान वड्डे पाग सत संगत पाई गुर सतगुर परस भगवान गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान जन नानक को गुर कृपा भारी हर नाम दियो खिन गान प्रभाती महला चौथा उगवे सूर गुर मुखर बोले सब रैन संभाले हर गाल हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करें प्रभु हर पाल मेरा मन साधु तूर जवाल हर हर नाम दृढ़ायो गुरमीठा गुर पद चारे हम बाल रहाओ साकत को दिन रहन भारी मुल्फाते माया जाल
छिन पल हर तब हृदय नवस्यो रिन बादे बहु विद्वान सत्संगत मिल मत

हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल दिख पौ जल डुबदे काड लियो प्रभ गुरु नानक बाल गोपाल प्रभाती महला चौथा। सिख सिन हर प्रभ कृपा धारी गुण गाए रस प्रतीक गावत सुनत बहु कहे मुक्ते जिना गुरमुख खिन हर पीक मेरे मन हर हर राम नाम रसतीक गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस जीक रहाओ जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिना मस्तक उजल टीक हर जन शोभा सब जग ऊपर ज्यो विच उडवा सस पीक जिन हर हृदय नाम नवस्यो तिन सब कारज फीक जैसे सिगार करे दे मानुक नाम बिना नकटे नकीक कट कट गुनैया रमत राम राए सब वर्ते सब मैं ईक जन नानक को हर कृपा धारी गुर बचन ते आयो करी नीक। प्रभाती महला चौथा। अगम दयाल कृपा प्रभधारी मुख हर हर नाम हम कहे पतित पावन हर नाम ध्यायो सब किल बिख पाप लहे जप मन राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ पाया नगर नगर हर बसयो मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगत्यो कर मंदल हर प्रभ लहे जो नर परम परम उद्याने ते साकत मूड मुहे जो मृग ना भी बसे बास बसना त्रम त्रम्यो चार गहे तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ मत देवो हर प्रभ लहे जन नानक को गुर हाथ सिर करयो हर राम नाम रव रहे। प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम हर हर जप्यो हर प्रभु गढ़पा सतगुरु बचन सुखाने हीरे हर तारी हर प्रभु कृपा मेरे मन पज राम नाम हर निम खफा हर हर दान दियो गुर पूरे हर नामा मन तन बसा रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर जप शोभा गुरमुख करपफा हलत पलत जन पै सुहेले मुख उजल गुरमुख तरफा अनपौ हर हर हर लिव लागी हर उर्धार्यो गुर निमखफा कोट कोट के दोष सब जन के हर दूर किए एक पलफा तुमरे जन तुम ही ते जाने तब जान्यो जन से मुखफा हर हर आप करो हर जन में जन नानक हर प्रभ इकफा। प्रभाती महला चौथा। गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जपबा तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा दिख दुख दे बाह दे कडबा जप मन राम नाम अर्धांबा उपजंप उपाय न पाये कतहु गुरपूरे हर प्रभ लाबा रहाओ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रसदा लो मनूर कंचन मिल संगत हर उर्धार्यो गुर हरवा हौ मैं बिखिया नित लोग लुवाने उत्कलत मोह लुबा तिन पग संत न सेवे कबहु ते मन मुख पूंगर परदा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम करे हार तुम शरणवा ज्यों जानो त्यों राखो स्वामी जन नानक दास तुम नवा। सत्ता पहला प्रभाती विपास करताल महला चौथा।

जप मन हर हर नाम निधान, हर दरगे पावे मान, जिन जपिया ते पार प्राण रहाओ। सुन मन हर हर नाम कर ध्यान, सुन मन हर कीरत अठ सठ न जान, सुन मन गुरुमुख पावे मान, जप मन परमेश्वर प्रधान, खिन खोवे पाप कुटान, मिल नानक हर भगवान। प्रभाती महला पंजवा विपास इको अंकार सतगुर प्रसाद। मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत् रच जोत निवाजिया, सेजा तरत बर्तन को पानी, निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गते, हरख सोगते रह निरारा, का तू पावे प्राण पते रहाओ। कातड़ पोग रस अनक पुंचाए, मात पिता कुटंग सगल बनाए, रिजक समाहे जल फल मीत, सोहर से वो नीता नीत। कहा सखाई जय कोई न होवे, कोट अपराध एक खिन में धोवे, बात करे नहीं पछोतावे, एक का बक्स फिर बहुर ना बुलावे।

गुरमिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहो मुरार। करवाती महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा। नाम तेरा जन के पंडार, गुण गावे प्रभ दर्श प्यार। तुमरी भगत प्रभ तुम्हें जनाई, काट जेवरी जन लिए छुड़ाई रहा। जो जन राता प्रभ के रंग, तिन सुख पाया प्रभ के संग। जिस रस राया सोई जाने, देख देख मन में हैराने। सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जा के हृदय वसिया प्रभ सोए। सोई नेचल आवे न जाए, हम दिन प्रभ के हर गुण गाए। ताको करो सगल नमस्कार, जाके मन पूरन निरंकार। कर कृपा मोय ठाकुर देवा, नानक उदरे जन की सेवा। करवाती महला पंजवा, गुण गावत मन होए आनंद। हाथ पैर सिमरो पगवंत, जाके सिमरन कलमल जाहे। इस गुरु

मार्ग सीधा सगल त्याग नाम हर गीदा तिस गुर कैसवा बल जाइए हर सिमरन जिस गुर ते पाइए बूढ़त प्राणी जिन गुरे तराया जिस प्रसाद मोह नहीं माया हलत पलत जिन गुरे सवारिया तिस गुर ऊपर सदा हो वारिया महामुक्ते किया ज्ञानी गुर पूरे की अकट तवानी पार ब्रह्म नानक गुरुदेव वडे पाग पाये हर सेव प्रभाती महला पंजवा सगले दुख मिटे सुख दिए अपना नाम जपाया कर कृपा अपनी सेवा लाए सगला दुख मिटाया हम बारिक शरण प्रभु दयाल अवगण काट किए प्रभु अपने राख लिए मेरे गुरु गोपाल राव पाप पाप बिन से किन भीतर तय कृपाल गुसाई सास सास पार गम आरादी अपने सतगुर के बल जाई अगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत ना पाये लाहा खाट हो ये तनवंता अपना प्रभु ध्याई है आठ पैर पार ब्रह्म त्याई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया परवाती महला पंजवा सिमरत नाम किल बिकसग नासे सच नाम गुर दीनी रासे प्रभ की दरगे शोभा वंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोष सब बिनसे

कलेश जो तिस पावे सो फल होस तिस गुर को हो सब बल जाई जिस प्रसाद हर नाम दियाई ऐसा गुर पाये वडवागी जिस मिलते राम लिवलागी कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी सगल गटा के अंतर जामी आठ पैर अपनी लिवलाए जन नानक।

पाए भगत हर सो मन माना, सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगै अतोले, सदा सदा प्रभ गुण निध गाय, कहो नानक वड पागी पाई। प्रभाती महला पंजवां।

गुरपुरा पाये वडबागी, दर्शन को जाये कुर्बान रहाओ। किलगित में तो सबद संतोख, नाम आराधन हो आजोग, साध संग हो आपरगास, चरण कमल मन माय निवास, जिनकी आकिन लिया राख, प्रभ पूरा अनाथ का नाथ, जिसे निवाजे कृपाधार, पूरन कर्मता के आचार, गुण गावे नित नित नित नवे, लक्ष चौरासी जोर न भवे।

गुर गुर करत सदा सुख पाया, दीन दयाल पर तुरपाला, अपना नाम आप जपाया रहाओ। संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूरन भैयास, सर्व कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे। प्रभात।

राम राम राम राम जाप, कल कलेश लोभ मोह बिन सुजाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बालक कछु न जाने, राखन को प्रभु माई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक। रहाओ प्राण आधार दुख बिगार, दैनहार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखनहार, मन आराध प्रभु मेक। संत ऋण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक।

जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रहत सच्चा सुख पाए, सुख दाता दुख नेता हारा, अवर न सूजस भी जी कारा, तन मन तन हर आज्ञा राख्या, नानक कहे महारस चाख्या, प्रभाती महला पहला, निवली करम पुलंगम पाथी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किछ सोजी नाही, पर में पूला बूढ़ मरे, अंधा परया पर पर कोवे, अंतर की मलक दे ना लहे, नाम बिना फोकट सब कर्मा, जो बाजीगर परम पुले, खट कर्म नाम निरंजन सोई, तू गुण सागर

क्यों पयाल जाए क्यों चलिए जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती ब्रज व्यास पराया तिनका जग अठारह काए कीर्तना चले चलाया गणत ना गनी हुकम पछाना बोली पाए सुवाए जो किस वरते तुरे सवाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे न लागे सदा रहे शरणाई मनमुख मुगद आगे चेते नाही दुख लागे पछताई।

शीतल गुर बूझ बुझाई, प्रभ निवाजे किन कीमत पाई, कहो नानक गुर बूझ बुझाई, नाम बिना गत किने न पाई, प्रभासी महला पहला।

ज्ञान रतन प्रगट होए, मनमुख मूल न जाननी, मानस हर मंदर न होए, हर मंदर हर जियो साजिया, रखिया हुकुम सवार, तुर लेख लिखिया सो कमावना, कोई ना मेकन हार, सबद चीन सुख पाया, सच्चै नाए प्यार, हर मंदर सब देशो होना, कंचन तोट अपार, हर मंदर एहो जगत है, गुरबिन कोरन तार, दूजा पाओ कर पूज दे, मनमुख अंग गवार, जिथे लेखा मंगिए, तिथे दे जात ना जाए, सात रते से उबरे, दुखिए दूजे भाए, हर मंदर में नाम

पवित्र पावन सृजन निर्मल हर के नाम समाए, हर मंदिर हरता हाथ है रखिया शब्द सवार। इस विच सौदा एक नाम गुरमुख लैन सवार, हर मंदिर में मन लोहत है मोया दूजे भाए। पारस पे कंचन भया कीमत कही ना जाए, हर मंदिर में हर वसे सर्व निरंतर सोए। नानक गुरमुख बन जिए सच्चा सौदा होए, प्रभाती महला की जा कह पाए जागे सृजन जागरण करें। होमे मेल उतार सदा जागे कर अपना राखें, पंच तस्कर का दे मार। मन मेरे गुरमुख नाम ध्याए जित मार घर पाइए, मन से ही कर्म कमाए रहाओ गुरमुख सहज तुम उपजे। दुखों में विचों जाए हर नामा हर मन।

तय सुहोग विपास प्रभाती मैला पन्यवा अस्पदिया इको अंतार। सतगुरु प्रसाद मात पिता पाई सुत बनता चूगे चोग आनंद स्यों जुगता उर्ज परयो मन मी

राम पाला अंकर कपट सुरे बेताला वर्मी मारी साप न मुआ प्रभ सब कुछ जाने जिन तू किया कुंवर काप गेरी के बस्तरा अपदा का मारिया गे के नस्ता देश छोड़ पर देश धाया पंच चंडाल नाले।

वेश ना पाये महा दुखियारी, बोले ना ही हुए बैठा मोनी, अंतर कल्प पवाई है जोनी, अंते रहता दुख दे ही सहता, हुकुम ना बूझे व्याप्या ममता, बिन सतगुर किने न पाई परम गते, पूछो सगल वेद सिमरते, मन मुख कर्म करे अजाई, जो बालू कर खौरना ठाई, जिसनो पै गोविंद दयाला, गुर का बचन तिन बांधियो पाला, कोट मदे कोई संत दिखाया, नानक तिन कै संग तराया, जे होवे पाग तां दर्शन।

ता गांडा जब तब संजम नाम समा लिया अपने ठाकुर नगर निहा लिया मंगल सुख कल्याण तिथाई जय सेवक गोपाल गुसाई प्रभु सो प्रसन्न तय गोपाल जन्म जन्म के मिटे विताल होम जग उर्द तप पूजा कोट तीर्थ स्नान करी जा चरण कमल निम्ख हृदय धारे गोविंद जपत सब

भरपूर मात पिता हर प्रीतम नेरा मीठा जन भरवासा तेरा कर गए लीने अपने दास जप जीवे नानक गुणतास विपास प्रभा की बाणी भगत कबीर जी की।

जो जन जान बजे पुरखोत्तम काची अवगत बाणी नामा कहे जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया

की हृदय अंतर कर तलकाती। ठग दुष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल

रे लंपट कृष्ण अवाखं जिन आत्म तत्व न चीनिया सब फोकट तर्म अवीनिया कहो बेणी गुरुमुख त्यावे बिन सत गुरु बाप न पावे।

सिमर राम सिमर ए है तेरे काज है। माया को संग त्याग प्रभु जू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या

राम भज जन्म सिरात है, कहो कहा बार बार समझत न क्यों गवार, बिनसत न लगे बार पूरे समगात है। रहा सगल परम डार दे।

बिहात है। जय जावंती मैला नावा। रे मन कौन गत होए है तेरी, ए जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान।

योग सबदं ज्ञान सबदं वेद सबदं तां ब्राह्मणे खत्र सबदं सूर सबदं सूदर सबदं प्राकृते

कनिता विनोद सुत कतंच भात मेट हित बंध कतंच मोह कुटुंबत कतंच चपल मोहनी रूपं ते खंते त्यागं करोत रह।

तत आसन नानके गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटं रचंत सोयं लेपनं रचति चर्मणे नवंत द्वारं भीतरहंतं।

प्राप्तम धर्म लखन नानक जैसो परसन माधवे निरत मोहं अलप बुद्धन रतंत बनता दिनोद साहं जो बन बेह कर्म कनक कुंडले बचित्र मंदर शोभंत।

धरे। दयाल एक भगवान पुरखे, नानक सर्व जीव प्रित पालके। अनित्य वित्तं अनित्य चित्तं अनित्य आशा बहुविध प्रकारं, अनित्य हेतं अहम् भं अहम् बंधं।

होत। अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमत अग खंडने ऋद बसंत बैधीत दूते कर्म करत महानिर्मले जन्मे मरण रहंत स्रोता सुख समूह।

श्याल खरे विखम स्थान मन मोह मदर महा असाद पंच तस्करे हित मोह भय भर।

परम बादन अवर्ते ते सुत अक्षणे गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन मतन बलवंत बलात् कारणे चरण कमल लय भजंत तृण समान भृग जनमने हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन।

मजारुदर दुर्गंधा नानके अथ गर्भेण अज्ञानड़ो परमाणु पर जंत आकाश है।

हर लब्दो मित्र सुमित्तो विदारण कदे न चित्तो जाता अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो अपजसन मिटंत सतपुत्र सिमर तवर।

ऊपर बने आकाश तले धर सोहती दैदिस चमके भी जल मुख को जो हती खोज

मिथ काटत अनूप मरम न जानिए, गाहक दुनी अपार सुतत पठानिए। इस तय चित

जाए। जप तप संजम हरक सुख मान महत अर गर्बे, मूसन निमख के प्रेम पर वार वार देऊ सरबे। मूसन

फिर अंबर कनहर छाया बर्फ परे सरताल चात्रिक जो तरसत रहे तिनको कौन हवाल। कबीर चके जो निस बीछ रहे आए मिले पर बात जो नर

सतगुर क्या करे जो सिखा में चूक अंधे एक ना ला गई जो बांस बजाये फूक। कबीर है गए बाहन सगन कन छत्रपति की नार ताश पटन कर ना।

हर सिमरिए ऐसा सिमरो नित अमरा पुरबासा करो हर गया बहोरे बित कबीर सेवा को दोए भले

कवि केवल काची धात साबत रखे ता राम भजे नहीं ता बिन की बात। कबीर केसो कुकिया ना सोए सारे रात।

कबीर राम रतन मुख को तेरी तारक आगे खोले कोई आए मिले जो गाती ले दो महंगे मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं पाले कटक कुटुंब संदेही में मर गयो बाहर पई न बंब। कबीर आखी केरे मात के पल पल गई बिहाए।

जीवन के पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफल कलंक। कबीर साधु संग पर आपकी लिखिया होए लिलात, मुकुट पदार्थ पाये खाक न अवकट काट। कबीर एक करी आदि हूँ तो आदे,

खेलत खेलत हाल करे जो कुछ होए ता होए। कबीर जो तुम्हें खाद तिरम के पाके से तू खेले काठी सरसों

खल डूंगर पवे ओमन अज करी दे कूजड़ा सै को माखी ओम ओइदा राती वड्डियां कुक कुक उठन पास सिज तिना दा जीरिया जिना विदानी आस करीदा जे मैं होंदा वारिया निता आयड़िया फेरा जलै

कंध कुहारा सिर कड़ा वन के पर लोहारे खरीदा हूँ लोड़ी सो अपना तू लोड़ है अंगियार खरीदा इतना आटा।

जिंद न काई नेख वारी आपो अपनी चले मसाइक शेख। फरीदा दोजी बलंदिया मलक बैठा आए गर्मी का।

ओ लबी वाते थप्पड़ तू मैं क्या हो चिकर डुबे हाथ फरीदा नंदी संत नारायण वड़ी सी मोई आते।

हंस न कोदरा खाए। चल चल गईया पंखियां जिनी वसाए तल, फरीदा सर परिया पी चलसी थके कवले कले। फरीदा इत सिराने तोए सन कीड़ा लड़ियो मास केतड़े।

फरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माहे मंदा किसनो आखी है जा किस दिन कोई ना है। फरीदा जे दिह नाला कपया जे गल कपे दुख पवन ना इकी मामले सहा ना इकी दुख चबन चलन रतन से सुनियर बह गए हेरे मिट्टी पाके जानी चल गए। फरीदा बुरे दा पला कर गुस्सा मन न हंडा।

जो जन पीर निवाजिया तिना अंक न लाज। महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुवनड़ी देहे विरले केई पाये ने जिना प्यारे ने। कंदी रहन ना चाहे तो भी लेखा देवना जे कर रब रजाए वैन चिदाओ गौ करे। फरीदा दुखा से पी दियो गया सूला से पी रात खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा पत्थर वात। लम्बी लम्बी नदी वह कंदी के रहे के बेड़े नो कप

रब खजूरी पत्तियां मां कहने वहन जो जो वंजे दीहड़ा सो उमर हथ पवन फरीदा तन सुखा पिंजर किया तलिया खूंडे काज अजय सुरज न बहुड़ो देख बंदे के पाज कागा तरंग तंडोलिया सगला खाया मास एगे लेना मत हो फिर देखन की आस कागा चूड़ ना पिंजरा बसे ता उदर जाहे जित पिंजरे मेरा सो वसे मास न पिद्दू खाहे फरीदा गोर निमाणी सड करे निकरिया कर आ

मामल आखी से था बंदगी चलन अज के कल खरीदा मोतैदा बन्ना एवें दिसे ज्यों दरिया वैता अगे दोजक तपिया सुनिए हूल पवै कहा इतना नू सब सोजी आई इक फिर देवे कर।

सिर तल उत्तर पाओ। मैं जानिया वड हंस है ताने की पासंग, जो जाना बग बकुड़ा जन्म न पेड़ी अंग। क्या हंस क्या बगुला जाको मदर करे, जो सिख पावे नानका सागो हंस करे। सरवर पंखी है तोरे साही वाल पचास, तन लहरी गद किया सच्चे तेरी आस। कम को अखर कम गुण कम को मणिया मंत, कम को वे सोह करी जित वस आवे संत। निमन को अखर खवन गुण जो बा मणिया मंत, के त्रै तैने वेश कर ता वस आवी संत। मत होंगी हे आना ताण होंदे हे निताना, अण होंदे आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए। इक सिक्का ना गालाए सबना मैं सच्चा तनी, ह्याओ न कही ठाए मानक सब अमोल वे। सबना मन मानक ठाहन मूल मचांगवा, जे तो प्रिया

भर भरो भरपूर सगल घट रहो व्यापे व्यापक देखे जगत जाने कौन तेरी गते सर्व की रक्षा करे आते हर पते अब मासी अब गते।

आन नहीं तुम भरे हर अंत नहीं पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर कुले ब्रह्म संसार एक दिन क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार भर परे ही ते परे अपर अपार पर आपनो भावन कर मंत्र न दूसरो धर उप तो कर लो एक निमक तो हर आन नई समसर उजियारो निर्मर कोट पर छते जाए नाम लिए हर हर जन नानक भगत दल कुल ब्रह्म

जन नानक भगदर तुल ब्रह्म समसर ए जी क्या बसन है। हाके बल बल बल बल, बल, बल, बल, बल, बल, बल, बल, बल।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत आनंद रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं।

जय कृपाल हर हर भयो, हर गुरु नानक जिन परसो, से जन्म मरण दो तेरे हो। सत सत हर सत सत सत सत भणिए, दूसर आन न आवर पुरख है, पुरातन सुनिए। अमृत हर को नाम ले मन सब सुख पाए, जे रसन साखो तै जन तृप्त अधाए। जे ठाकुर सो परसन भयो, सतसंगत तै प्यार, हर गुरु नानक जिन परसो, तिन सब कुन कियो उधार। सच सभा दीवान सच सचे तै धरयो, सचे तख्त निवास सच तपावस करयो। सच सुन जो सन

सिद्ध साधक 35 कोर तेरे केम न परिये। ब्रह्मादिक सन काद सेक गुण अंत न पाए, अगो गो नहीं जाए पूर सब रो समाए। जय का सिलक दयाल।

भगत एव मन फैरावे बलो चरा गंधार में सब कलो धरेक नाम धर्म प्रगट सकल हर भवन में जन नानक।

हर तारन तरन समरथ सवैद कुल समूह उधारन सो चित चेत अचेत जाम सत संगते भरम अंधेर मोयो कत भो मूरत घड़ी च सापल सिमरन राम नाम रखना संगला होतो काज अलग सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख भाव सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म स्योरों रंच करेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सोधे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बूझन की सब सोज परी बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत

ज्ञान के काट भरम भरी। रे मनमूस बिलावे गर्वत कर्तव करत महाम भुना। संपत धौल धूल संग झूलत माया मगन भरमत घुगना।

बनता साजन सुख बंदते तासु मो बड़ो सुघना बोयो भीत अहं मम अंकुर बीतक औध करत अधना मृत मंजार पसार मुख निरखते भुंसत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नामिक जगे जानत सुपना। देहे न देहे ननी ननीता माया मत कहा लो मारो देहे न देहे ननी ननीता माया मत कहा लो गारो छत्र न पत्र न चौर न चावर बैठी जात हृदय न विचारो रथ न अश्व न गज सिंहासन छिन में त्यागत नाम सिधारो सूर न वीर न मीर न खानम संग न को दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोस न छोटा कर्त विकार दो कर झारो मित्र न पुत्र कल्प साजन सुख उल्टत जात बिरख की छारो दीन दयाल पुरख प्रभु पूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो प्राण मान दान मग जोहन चीत चीत दे ले तारी साजन सैन मीत सुत भाई ताऊ ते ले रखी निरारी धावन पावन सूर कमावन एहद करत फौज तन जारी करम धर्म संजन सुख सुचनेमा करम धर्म संजन सुचनेमा चंचल संग सगल बिदहारी पस पंखी बिरख अचतावर बहुद जौन भम्यो अत भारी छिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उधरे और माया मगन चले सब डारी ब्रह्मागत शिव छंद मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावे इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरत धरण गगन आवत फुन धावत सिद्ध मानुष

बुझे मन दर्श मग पावत जरो न जात रहो जन भूर लग नींद न साकस बोर चले हर पंथ मगे नानक रोग दोख अगमो छिदे हर नाम खग उदम कर लागे लौ भाती बिचरे अन सास बौ खटुआ भस्म लगाए तीरथ बौ घमते सूखम दे बंधे बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावते जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक भात फाटे कर खटुआ सोये मले तले ते एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख दयाय वरदाता संत सहार सदा दिखयाता

गंभीर धीर मत सागर, जोगी जंगम ध्यान भरे। गांग राज भगत प्रहलाद आत्म रस।

गुण वर्ण चार घट दर्शन ब्रह्मागत स्मरंथ गुणाम गावे गुण शेष सहस जेदा रस आज अंत लिव लाज धुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान अंतर जान्यो कब कल सुजस

भगत दीन गुण रही सहज आत्म रंग माणे, योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ आर न जाए। सुखदेव परिखत गुण रहे गौतम रिख जस गायो, कब कल सुजस नाम।

जातु दृष्ट अमृत धार काल को खन उतारे तिमर अज्ञान जाए दर्श द्वारे ओ जो से

सतसंगत सहज सारे जागीले गुर बिचारे निमरी भूत सजीव परम प्यारे कौटीरत कल सहारे सतत दीप मझारे लेना जगत गुर पर सुमुरारे तै तो दिलियो नाम अपारे बिमल जास बिखारे साधक सिद्ध सुजन किया को अधारे सूता जनक राजा अवतारे शब्द संसार।

समानी हर हर दर्श समानी आत्मावंत ज्ञानी जानी अकल गत गुरु परवानी जाकी दृष्ट अकल ठानी बिमल बुद्ध सुठानी पैर शील सना।

लैणा जगत गुरु परसु मुरार, दृष्ट धरत तम हरन दहन अघ पाप परासन, सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन, लोभ मोवस करण शरण जाचिक प्रित पालन, आत्मरत संग्रहण कहन अम

गरल नाथ कन न थियो अम्यो अंतरगत पियो रुद बिना सजागयो अलग कल धरी जुगंतर सतगुरु सहज समाद रहो सामान निरंतर उदारो चित दारद हरन तिखंते कलमल प्रसन्न सब रंग सहज कल उचरे जस जमतो लेने रसने नाम औखद नाम आधार अर नाम सम

नाम परस जन पायो सत प्रगट हो रवलो। दर्शन परसे गुरु कै अब सठ मजन हो, सच तीर्थ सच स्नान और भोजन भाव सच, सदा सच भाषंत सो है सच पायो गुरु सबर, सच नाम सुगंती बो है जिस सच संजम वर्त सचे कब जन कल खाने। दर्शन परसे गुरु कै सच जन्म परवाणी, हमें दृष्ट शुभ करे हरे अघ पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोवश करे सदै बल, सदा सुख मन वसै दुख सै।

चीजों को एक ओंकार सदगुरु प्रसाद सोए पुरुष वरसाचा जाता एक नाम असल संसारे जिन भगत भग

तरव तिरव कर संसारे सात सरोवर मवल सराब। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम जय जयकार जपंत नरा। हर नाम रसन गुरुमुख बरदायो उल्ट गंग पर।

सोईनाम अचल भगते भवतार अमरदास गुरु को पुरिया चित नाम लागते तीस ध्यावे जखन कपि सर मन वसया सोई नाम सिमर गंगे उतामे चरण चित अमृत रसया चित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सत कर संगत उदरिया सोई नाम अचल भगते भवतार अमरदास गुरु को पुरिया नाम चित संसार किरण रहो सुर कर साथे उत्तर दक्षिण पूर्व देश पश्चिम जस भाके जन्म तयो सखे अत जित नाम हर दे निवासे सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आशा से भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर ध्यायो सोई नाम भगतवत भव जल हरन गुरु अमरदास तय पायो नाम ध्यावे देव कैपीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड धारे जय नाम समाधेव हरक सोग समतर सहारे नाम शिरोमणि सर्वमयि भगत रहे निवधार सोई नाम पदार्थ अमर गुरु कुछ दियो करकार सत सूरो शील बलवंत सत भाय संगत सघन गुरु मत निर्वैर लिया जिस धीरज धुर धवल भुजा सहित बैकुंठ बीना परचे संत प्यार जय कर तारे संजोग सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुरु की को जोग नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी धन सतगुरु सेवो जिस पसाय

हृदय बसो अत हो सोए रस नहीं जातो। मुखों भगत उतरे अमर गुर इतरंग रातो। मस्तक निशान

चरण तपर सत्यत चरण गुर अमर पवल्य, हथ तपर सत्यत हथ लगे गुर अमर पे, जी तपर सत्यत जी गुर अमर भजे।

सर्वनि गुर अमर सुनि जै सत्यक सोहियो जित ही बसे गुरु अमरदास निज जगत पिते सत्यक सो सुर जालक भणे जो सुर ने गुर अमर निते।

है जालता पदार्थ इतने गुरु अमरदास जिथे मिले सच नाम करतार सुदृढ़ नानक संग्रह हो ताते अंगद।

तात गुण कवण वखाणो, जो गुण अलख अगम तिने गुण अंत न जानो। बोलतो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उधरणे, गुरु अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पासरण। आप नारायण कलाधार जग में परवरयो, निरंकार आकार ज्योत जग मन।

जात तप सत संतोष तिक दर्शन गुर सिख सरण परे ते उबरे छोड़ जमपुर की लिखे भगत भाए भरपूर हृदय उचरे करतारे गुरु गोहर दरिया पलक डूबंते तारे नानक कुल निमल अवतरे गुण करतारे उचरे गुरु अमरदास।

क्रोधवश करे पवन उदंत न धावे। निरंकार के वसे देश हुकम बोझ विचार पावे। कलमाए रूप करता।

धर्म धन कर गयो भगत सिंह सर लड़यो भय निर्भव हर अटल मन सबद गुरु ने जाग दियो काम क्रोध लोभ मोह अपत

एक मन पुरखने अंजन धाओ, गुर पर साध हर गुण सद गाओ। गुम गावत मन होए दिगासा, सतगुर पूर जने की आशा। सतगुर सेव परम पद पायो, अबला से अबगत दयायो। किस भेंटे दारिद्र न चमते, कल सहारता।

छूटत प्रवाह अमेव अमरा तत अमृत सरोवर सद भरया। ते पीने संत करे मन मज्जन उपजनो सेवा करिया। तिन भव निवार अनभय पद दीना शब्द मात्र ते उधर धरे। कर कर्ण छकुन हरदास तने गुरु रामदास सर अवर भरे। सतगुरु मत गुरु

निरंजन घरे लहा। सतगुरु दयाल हर नाम दिलाया, इस पर साधवस पंच करे। कर कर ठाकुर हरदास तनी, गुरु राम दास सर अभर भरे। अनुभव अनुमान अकल लेव लागी, पारस भेटिया सहज घरे। सतगुर प्रसाद परम पद पाया, भगत भाए भंडार भरे। मेटिया जन मंत्र मरण भव, भागा के

भरत परवासी तुम पुबली न होते सतगुरु शब्द अथाओ अम्यो धारा रसगुत्ते मत माता।

सतगुरु नाम एक निव मन जप दृष्टि जन दुख पाप पौखत हो जियो तारण करण छिन मात्र जाको दृष्ट धारे शब्द हृदय विचारे काम क्रोध खोए जियो जीवन शब्द दाता अगम

नाम सो अपार सार दीनो गुरुद धरे नल कौ पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुवास जास सिमरत अंतरे जाके देख।

पांव तैनीर सर अवर अनल अनाद कियो। सखन खन ससुर दिन सैर करो फल फूल दियो। सुर नर सपत सम

बंसत सिद्धो विद मिलायो पूरन भवन ठौर बसोरसे बासन सुजो दान सधायो गोविंद वाल गोविंद पुरी समझलन तीर विवास बनायो गयो दुख दूर बरखन को तो गुरु मुख दे गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अधम हरो निस्बासुर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भांडरो भन दास आस जगत गुरु की पारस भेत परस करो रामदास गुरु हर

ज्ञानियों शब्द हर हर जपे नाम नवनिध आपे रसन ऐनित रसे सत कर जानियों उनु प्रेम रंग पाइए गुरमुखे ध्याइए अनमार्ग तजो भजो हर ज्ञानियों वचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत

गुरु जप सत कर अगम गुण जान निधान हर मन धरो ध्यान ऐस करो बचन गुरु हृदय धर सुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुरु सिख करो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भव जपे प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रम तजो नाम गुरु मुख।

गुर मिलत मुन जन रे तरे नार दाद संकार हर गुरु मुखे तरे एक नाम लग तजो रस अन्न।

जप मन रे। श्री गुरु साहिब सब ऊपर करे कृपा सतयुग जिन धूपर। श्री प्रहलाद भगत उदयन

सिर थप्यो हर का नाम अखेन अप्यो अप्यो हर नाम अखेन दे सौ जुग गुरु सेवा कर फलियं बंदे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरुमुख कयन पर तख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूप पोखण भरण सतगुरु गुरु सेव

करें प्रभात शुद्ध मन गुरु पूजा दिज सहित करन। कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपे ध्यान धरन। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद बरन। सतगुरु गुरु सेव अल

तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडली सुरजी सत संगते परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन

तीरे धर्म अंग अलख अगम खेल किया आपने उठाए लियो। असत्य कथा कथी न जाए तीन लोक रया समाए, सुते सिद्ध रूप धरो साहन के साहरियों।

इंद्रियों बले छलन सबल मलन भंग फलन कान उर नय करंत बजी डंक चढ़े दल रविंद जियो राम रवण दुर्त दमन सकल भवन कुशल करण सर्व भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जरम करम मच्छ कच हो बरा

सच जान मंत्र एह नित बासुर कल्याण लहे परम गत जियो काम क्रोद लोभ मोह जन जन संसार धो होमे का फंद काट साध संग रत जियो देह गे ते सने चित बिलास जगत एओ चरण कमल सदा सेओ दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही धार तजनिकार मन

पाता। गुरमुख संगत सबे विचारो, वाओ वाओ का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहा, अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मा विक्रुद्रादिके काल का काल निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाए परमार्थ, सत्संगत से ती मन खचना। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अना

गुर समरथ गए किरिया धूप बुद्ध समत समारन को उन धम दुजा फैरंत सदा अग पुंज तुरंग निवारन को मथुरा जन जान कही जे सासु और कछु न विचारन को हर नाम बहुत बड़ो कल ने भव सागर पार उतारन को संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है ब्रह्म पंथ धर्यो धर्मी धर आप रहे ले उदाहरण।

रव के सुत को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चित लावत है निर्मल नाम सुधास पर पूर्ण सब त्रंग प्रगट तिन आदर। गहर गंभीर अथायत वन सुबर सदा सब विदरत नागर, संत मराल करे कंतु हल तिन जम प्रास मिट्यो दुख का।

उन ध्यान धरे फिरत सगल जुग कभू को पावे आत्म परगास को। वेद बाणी सहते ग्रंथ जस गावे जाको से मुन गहना सजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप गजा झूठ देख किए फिरत उदास को। सोतन सतगुण सुख भाई कृपा।

अंतर्गत तेज कुं लोक प्रजा से देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अतलुभते अलसमूजू कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तखत गुरु रामदासे। तारे ओ संसार माया मद मोहिते अमृत नाम दियो समरथे उन कीरतवंत सदा सुख संपते रिद्ध अर सिद्ध न छोड़ो।

जाके बसीस धर्यो गुरु हथे, तीन भवन भरपूर रहो सोई, अपन तरस कियो ना जगत कोई, आपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे, असुरे नर गण गंधर्व को जंत फिरे, अविनाशी अचल अजौनी, संभो पुरखो तुम आपार परे, करण कारण समरथ सदा सोई, सर्व जी मन ध्यायो, श्री गुरु राम दास जयो जय जग में, हर परम पद पायो, सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन, मन धन गोविंद दियो, अंगद अनंत मूरत निज धारी, अगम ज्ञान रस रस हियो, गुरु अमरदास।

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा खूब भगत हर के जुगणन अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा और कबीर भणन तिनको अवतार।

मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तिणन। बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिणन। कर्म कर तो दर्श परस पारसन बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो। जै सित सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन। जै सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जै सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जै सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुण बल भण मिल संगत धन धन करो। जै सतगुर लग प्रभु पाईए सो सतगुर सिमरो नरो।

जय तिखत अत होए रहत मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानो, तीनी भगत प्रेम निवलाई। आते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद।

जन्म ते गुरमत ब्रह्म पछाणियो, कल जोड़ कर सो जस वखाणियो। भगत जोग को जैतवार है।

वेदन भर सहता भय बंधन पर पीर निवारण कल संहार तुए जस भगता कुल सोदी गुरु राम दास तन धर्म भुजा अर्जन हर भगता।

कहे मथुरा अमृत बैन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन सिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धर्यो आद पुरख पर तथे लिखो अक्षर मस्तक धुरे प्रगट ज्योत जगमगे तेज भूमंडल छायो परस परस परस परस गुरु

बौरस सालने सवार दी खटवत मीठे पाए त्यों बाणी पगत सलां दे हर नाम चित लाए मन तन तन आगे राखिया सिर वेचिया गुर आगे जाए पै पगती पगत बहु लोच दे।

चित पासे हर गुण गाए, तन तन कर जुग नानका, जे चले सतगुरु भाए। सतगुरु ना सेवियो, शब्द ना रखियो उधार, तिग तिना का जीविया, चित आए संसार। गुरमति पौ मन पवे, ता हर वस लगे प्यार।

0: नाम रतन प्रकाशिया मन तन निर्मल होए। नाम हीन नक्के सिरे दिल नावे बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सके कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर के शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे भंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार।
1: गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश, तिथे ऊंग न पुख है हर अमृत नाम सुखवास। नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम प्रगास। काम क्रोध का चोलड़ा सब गल आए पाए, एक उपजे एक बिनस जाए हुक्मे आवे जाए। जम्मन मरण न चुकई रंग लगा दूजे भाए, बंधन बंद भवायन करना कछु न जाए। जिनको कृपा धारियन तिना

उत्कलत मोहेत है अंत बेली को न सिखाए। सतगुरु सेवे सो सुख पाए नाम वसै मन आई। नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाई। मनमुख नाम ना चेतनी बिन नामे दुख रोए। आत्मा राम न पू

मनमुख बोले अंगले तिसमें अग्नि का वास, बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करें प्रगास, ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुरु वचन ना करें विश्वास, ज्ञानिया अंदर गुरु शब्द है नित हर लिव सदा विकास, हर ज्ञानिया की रख

बिख का मारण हर नाम है, गुर गरुड़ शब्द मुख पाए, जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए, मिल सतगुरु निर्मल होया बिख हो मैं।

सतगुर पुरख निर्वैर है नित हृदय हर लिवलाए निर्वैर है नाल वैर रचाएंदा अपने कर लूकी लाए अंतर क्रोध अहंकार है अंदिन जले सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल नित पौंक दे बिखा दे दूजे भाए बिख माया कारण परम दे फिर कर कर पत गवाए बेसवा के रे पूत ज्यो पिता नाम तिस जाए हर हर नाम न चेतनी करते आप खुआए हर गुरुमुख कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए जन नानक तिस बलिहारण जो सतगुरु लागे पाए नाम लगे से उबरे बिन नामे जमपुर जाए नानक बिन नामे सुख नहीं आए गए पछताए चिंता तावत रह गए ता मन पया।

जिनको पूर्व लिखिया तिना पेटिया गुरु गोविंद, नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद। सतगुर सेवन आपना गुर शब्दी विचार, सतगुर का पाना मन लैन हर नाम रखे उरदार। एथे ओथे मनियन हर नाम लगे व्यापार, गुरमुख शब्द सुजाप दे तित साचे दरबार। सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार।

जन की टेक हर नाम हर बिन नामे ठवर न ठाओ गुरमती नाव मन वसै सहजे सहज समाओ वडपागी नाम ते आया एह निसलागा पाओ जन नानक मंगे तूर तिन हो सतगुरु बाणे जाओ लख चौरासी मेदनी तिसना जलती करे पुकार ए मोह माया सब पसरिया नाल चले नांती वार बिन हर शांत ना आवे किस आगे करी पुकार वड पागी सतगुरु पाया बूझिया ब्रह्म विचार तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर उरदार असी खत्ते बहुत कमाम दे अंत ना पारा वार हर कृपा करके बख्श ले हो हों पापी वड गुनहगार हर जियो लेखे वार ना आवई तू बख्श मिलावन हार गुर तुठे हर प्रभ मेलिया सब किल कट विकार जिना हर हर नाम ते आया जन नानक तिन जयकार विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर के पै पाए जन्म मरण नहीं चल भये गुरमुख नाम ते आए गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लवन नानक लाल अमोल का गुरमुख खोज लहन मनमुख नाम ना चेत्यो तिग जीवन तिगवास जिसदा जित्ता खाना पहनना सो मन ना वस्यो गुणतास ए मन शब्द ना पेदियो क्यों होवे करवास मन मुखिया दोहागनी आवन जान मोयास गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास हर हर नाम उरधारिया हर हृदय कमल प्रगास सतगुर सेवन आपना हो सद बलिहारी तास नानक तिन मुख उजले जिन अंतर नाम प्रगास शब्द मरे सोई जन सिजै बिन शब्द मुक्त न होई पेख तरह बहु कर्म विगुते पाए दूजे परज विगोई नानक बिन सतगुरु नाव ना पाईए जेसो लोचै कोई हर का नाव अत वड ऊंचा ऊंची हु ऊंचा होई अपड़ कोई न सकई जेसो लोचै कोई मुख संजम हच्छा ना हो वई कर पेख पवे सब कोई गुर की पौड़ी जाय चढ़े कर्म प्राप्त होई अंतर आए वसै गुर शब्द विचार है कोई नानक शब्द मरे मन मानिए साचे साची सोए माया मोह दुख सागर है बिख दुत्तर तरे आना जाए मेरा मेरा कर दे पच मोए हों मैं करत विहाय मन मुखा उरवार न पार है आद विच रहे लपटाए जो तुर लिखिया सो कमावना करना कछु न जाए गुरमति ज्ञान रतन मन वसे सब देखिया ब्रह्म सुवाए नानक सतगुरु बोझै वड पागी चढ़े ते पौजल पार लंगाए बिन सतगुरु दाता को नहीं जो हर नाम दे आधार गुर कृपा ते नाव मन वसै सदा रहे उरधार तिसना बुझै तिपत होए हर कै नाए प्यार नानक गुरमुख पाईए हर अपनी कृपा धार बिन शब्द जगत बर लिया कहना कछु न जाए हर रखे से उबरे शब्द रहे लिव लाए नानक करता सब कित जानदा जिन रखी बनत बनाए होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण बिख माया मोह न मिटई विच होमे आवन जान सतगुरु मिले मल उतरी हर जपिया पुरख सुजान जिना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सतगुरु बाण माया मोह बहु चित्व दे बहु आशा लोभ विकार मन मुख अस्थिर नाथिय मर बिनस जाए खिनवार वड पाग होवे सतगुरु मिले होमे तजै विकार हर नामा जब सुख पाया जन नानक शब्द विचार बिन सतगुरु भगत न हो वही नाम

गवाए। सत्संगत हर मेल प्रभ हर नाम वसै मन आए। जन्म मरण की मल उतरे जन नानक हर गुण गाए। तुर हर प्रभ कर तै लिखिया सो मेटना ना जाए। जियो पिंड सब तिसदा प्रतपाल करे हर राए। चुगल निंदक पुखे रुल मोए ए ना हाथ ना किथा उपाए। बाहर पखंड सब कर्म करे मन हृदय कपट कमाए।

मन आवन जान ना सुजई ना सुजै दरबार माया मोह पलेटिया अंतर अज्ञान गुवार तब नर्स पा जा गया सिर डंड लगा बहु पार गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार नानक आप ओह उदरे सब कुटंब तरे परवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस्त्रा पे हर दरगे गुर सब जापे बिन शब्द मुआ है सब कोए मन मुख मुआ अपना जन्म खोए हर नाम न चेते अंत दुख रोए नानक करता करे सो होए गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ज्ञान ओए सदा आनंद विवेक रहे दुख सुख एक समान तिना नगरी इको आया सब आत्म राम पहचान मन मुख बालक बिरद समान है जिना अंतर हर सुरत नाही विच हो मैं कर्म कमाव दे सब धर्म राय कह जाही गुरमुख अच्छे निर्मले गुर कह शब्द सुवाए ओना मैल पतंग ना लग गई जे चलन सतगुरु भाए मन मुख झूठ ना उतरे जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन।

नानक गुरमुख मन स्यों लुजै, जिना सतगुरु पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार। ओए मानस जून ना आखियन पशु टोर गावार, ओना अंतर ज्ञान ना ध्यान है हरसो प्रीत ना प्यार। मन मुख मोए विकार में मर जमे वारो वार, जीव दिया नो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उद्धार। नानक गुरमुख सोहने सिद्ध सच्चे दरबार, हर मंदर हर साजिया हर वसै जिस नाल, गुरमती हर पाया माया मोह पर जाल। हर मंदर वस अनेक है नव नाम समाल, तन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दा हर पाल। वड पागी गढ़ मंदर खोजिया हर हृदय पाया नाल, मन मुख दे दिस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार। माया मोह न चुकई मर जमे वारो वार, सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार। जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार, हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान। किलविक पाप सब कटिए हो मैं चुके गुमान, गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान। हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम, तनासरी तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कार कमाए। तन मन सौंपे जी सो भाई लय हुकम फिराओ, जय बैसावे बैसे भाई जय पे जय तह जाओ। एवड तन होर को नहीं भाई जेवड सच्चा नाओ, सदा सच्चे के गुण गावा भाई सदा सच्चे के संग रहाओ। पैनन गुण चंगियाईया भाई अपनी पथ के साथ आपे खाए, तिसका क्या सालाई है भाई दर्शन को बल जाए। सतगुर विच वडिया वडियाईया भाई कर्म मिले ता पाए, एक हुकम मन ना जाननी भाई दूजे भाई फिराए। संगत तोई ना मिले भाई बैसन मिले ना थाओ, नानक हुकम तिना मनाए सी भाई जिना तुरे कमाया नाओ। तिन विटो हो वारिया भाई तिन को सद बलिहा रह जाओ। से दाड़िया सचिया जे गुर चरनी लगन, अंदिन सेवन गुर अपना अंदिन अनदरहन। नानक से मोह सोहने सच्चे दर दिसन, मुख सच्चे सच दाड़िया सच बोले सच कमाए। सच्चा शब्द मन वस्या सतगुर माहे समाहे, सच्ची राशि सच तन उत्तम पदवी पाहे। सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे, सच्ची दरगह

दर्शन क्यों त्रिप्रिय है, नानक मिले सुभाए गुरमुख के मन रहसी है। जिना प्री प्यार क्यों जीवन फिर बहारे, जासो देखन अपना नानक जीवन भी हरे। जिना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सचै लाया, राती अतैडे हो नानक प्रेम समाया। गुरमुख सच्ची आस की जित प्रीतम सच्चा पाई है, अंदर रहे आनंद नानक सह समाई है। सच्चा प्रेम प्यार गुरु पूरे ते पाई है, कबू ना होवे पंग नानक हर गुण गाई है। जिना अंदर सच्चा ने हो क्यों जीवन फिरी विहुनिया, गुरमुख मेले आप नानक चिरी विछुनिया। जिनको प्रेम प्यार तो आप पहलाया कर्म कर, नानक लेहो मिलाए मैं जाचक दीजे नाम हर। गुरमुख हस है गुरमुख रोवे, जे गुरमुख करे साई भगत होवे। गुरमुख होवे सो करे विचार, गुरमुख नानक पावे पार। जिना अंदर नाम निदान है गुरबाणी विचार, तिनके मुख सद उजले तिस सच्चे दरबार। तिन बैंदियां उठदियां कदे ना विसरे, जे आप बख्शे करतार। नानक गुरमुख मिले ना विछड़े, जे मेले सृजनहार। गुर पीरा की चाकरी महा करड़ी सुखसार, नदर करे जिस आपनी तिस लाए हे प्यार। सतगुर की सेवे लगिया पौजल तरह संसार, मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार। नानक सतगुर मिले प्रभ पाईए सब दुख निवारण हार। मन मुख सेवा जो करे दूजे पाए चितलाए, कुट कलत कुटुंब है माया मोह वधाए। दरगे लेखा मंगी है कोई अंत ना सकी छाए, बिन नाम है सब दुख है दुखदाई मोह माए। नानक गुरमुख नदरी आया मोह माया विछड़ सब जाए। गुरमुख हुक्म मन्ने सह केरा हुक्मे ही सुख पाए, हुक्मो सेवे हुक्म अरादे हुक्मे समय समाए। हुक्म वर्त नेम सुच संजम मन चिंदिया फल पाए, सदा सुहागन जे हुक्मे बूझे सतगुर सेवे लिव लाए। नानक कृपा करे जिन ऊपर तिना हुक्मे लय मिलाए। मनमुख हुक्म ना बुझे बपुड़ी नित हो मैं कर्म कमाए, वर्त नेम सुच संजम पूजा पाखंड परम न जाए। अंकरों कुसुद माया मोह बेदे जो हस्ती छार उड़ाए, जिन उपाय तिसे न चेते बिन चेते क्यों सुख पाए। नानक परपंच किया तुर करते पूर्व लिखिया कमाए, गुरुमुख प्रतीत पाई मन मानिया अंदिन सेवा कर समाए। अंतर सतगुरु गुरु सब पूजे, सतगुरु का दर्श देखे सब आए। मनिए सतगुरु परम विचारी, जित मिले तिसना पुख सब जाए। हौ सदा सदा बलिहारी गुर अपने, जो प्रभ सच्चा दे मिलाए। नानक कर्म पाया तिन सच्चा, जो गुर चरणी लगे आए। जिन प्रिया सोने हो से सज्जन मैं नाल, अंतर बाहर हौ फिरा पी हृदय रखा समाल। जिना इक मन इक चित ध्याया सतगुरु सो चित लाए, तिनकी दुख पुख हो मैं वड्डा रोग गया निर्दोख पए लिव लाए। गुण गावे गुण उचरे गुण मैं स्वय समाए, नानक गुर पूरे ते पाया सहज मिलिया प्रव्याए। मन मुख माया मोह है नाम न लगे प्यार, कूर कमावे कूर संग्रह कूर करे आहार। दिख माया तन संच मरे अंत होए सब चार, कर्म तर्म सुच संजम करे अंतर लोभ विकार। नानक मन मुख जे कमावे सो थाए न पवे दरगे होए कुवार। सब ना रागा विच तो भला भाई जित वस्या मन आए, राग नाद सब सच है कीमत कही ना जाए। रागे नादे बहारा इन्नी हुक्म ना बूझिया जाए, नानक हुक्मे बूझे तिना रास होए सतगुर ते सो जी पाए। सब किस किससे होया ज्यो तिसे धीर जाए, सतगुरु विच अमृत नाम है अमृत कह कहाए। गुरमति नाम निर्मलो निर्मल नाम से आए, अमृत बाणी तत् है गुरमुख वसै मन आए। हृदय कमल प्रगासिया ज्योति ज्योत मिलाए, नानक सतगुरु दिन को मेलियन जिन तुर मस्तक पाग लिखाए। अंदर तिसना अग है मन मुख पुख ना जाए, मोह कुटुंब सब कूड़ है कूड़ रहा लपटाए। अंदिन चिंता चिंतवे चिंता बद्दा जाए, जम्मन मरण ना चुकई हो मैं कर्म कमाए। गुर शरणाई उबरे नानक ले छड़ाए, सतगुर पुरख हर त्याई दा सतसंगत सतगुर भाए। सतसंगत सतगुर सेवदे हर मेले गुर मेलाए,
यो पौजल जगत संसार है गुरु बोहित नाम तराए गुर सिखी पाणा मन्या गुर पूरा पार लंगाए गुर सिखा की हर तूर दे हम पापी भी गत पाए गुरु मस्तक हर प्रम लिखिया गुरु नानक मिलिया आए जम कंकर मार बिदारियन हर दरगे ले छाए गुर सिखा नु सावास है हर तुखा मेल मिलाए गुर पूरे हर नाम दिड़ाया जिन विच्चों परम चुकाया राम नाम हर कीर्त गाए कर चानन मग दिखाया हों मैं मार एक लिव लागी अंतर नाम बसाया गुरमती जम जोहे न सके सच्चे नाए समाया सब आपे आप वर्ते करता जो पावे सो नाए लाया जन नानक नाउ ले ता जीवे बिन नामे खिन मर जाया मन अंतर हों मैं रोग परम पूले हों मैं साकत दुर्जना नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन रात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुरु नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुरु के गुल बोले।

गुर कै शब्द अरा दिए नाम रंग बैराग जीते पंच बैराया नानक सफल मारू एह राग जामू इक ता लख तौ जिती पिनने दर कितड़े बामन बिरथा गयो जन्म जिनकी तो सो विसरे थोरठ थोरस पीजिए कभू न फीका हुए नानक राम नाम गुण गाये दरगह निर्मल सोए जो प्रभ रखे आप तिन कोई न मारे अंदर नाम निदान सदा गुण सारे एका टेप अगम मन तन प्रभ धारे लगा रंग अपार को न उतारे गुरमुख हर गुण गाए सहज सुख सारे नानक नाम निधान हृदय उरहारे करे सो चंगा मान दुई गणत लाहे अपनी नजर निहाल आपे लहो लाए जन देहो मति उपदेश विच्चों परम जाए जो सुर लिखिया लेख सोई सब कमाए सब कछ तिस दे वस दूजी नाहीं जाए नानक सुख आनंद भये प्रभ की मन रजाए गुर पूरा जिन सिमरिया से भय निहाल नानक नाम आराधना कारज आवे रास पापी कर्म कमाव दे कर दे हाय हाय नानक ज्यो मथन माधानिया क्यों मथे धर्म राय नाम से आए साजना।

جگت پکھاری پھر تو ہے سب کو داتا رام، جگت

نانک اے بد ہر پجو اک من ہوئے اک چت تیرت برت

जिसका सब आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। के वस्त जी नह जाई, नित नित रख उधारो, तम संसार चरण लग।

सरस बाण औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पटमंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कांगरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग में गावे पांचों संग बिरंगन लावे।

दुख सुख पाई है। इक ना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए। नानक हुक्मै जे पुजे ताहु मैं कह ना कोए। गावे को तान

जे को मन जाने मन कोई, मन्ने मार्ग ठाक न पाई, मन्ने पथ स्यों प्रगट जाय, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होय, जे को मन जाने

वह ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दर गहमान पंचे सोह दर राजहान पंचा का गुर एक।

संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तब लै उपर कीता पार धरती होर परै होर होर तिस ते भार

अगम अगम असंख लो असंख कह सिर भार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमा।

गत तीरथ मल नाहो सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत ना होए स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कमण सुवेला वखत कमण कमण थित कमण वार कमण से रुती माह कवण जित होवा आकार वेर न पाइया पंडती।

पवह समुंद ना जानिए है समुंद साहा सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होमनी जे तिस मनो ना विसर है अंत न सिफती कहन ना अंत अंत न करने देन ना अंत।

आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहु अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाऊं।

आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना कमाए केते मंगह जोद अपार केतियां गणत नहीं बीच।

आखह पड़े करह वखियान, आखह बरमे आखह इंद, आखह गोपी तै गोविंद, आखह ईश्वर आखह सिद्ध, आखह केते कीते बुद्ध, आखह दानव आखह देव, आखह सुर नर मुन जन सेव, केते आखह आखन पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, केते कीते होर करे ता आख ना सकह केई के, जेवड़ भावे तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखै बोल बिगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार, सो दर केहा सो कर केहा, जित बह सर्ब संभाले, वाजे नाद अनेक असंग

देवतियां दर नाले गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारी गावन पंडित पन्न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ पयाली गावन रतन उपाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल।

आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग बजोग दुहकार चलावह लेखे आवह भाग आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन केले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै।

अनिल अनाद अनाहक जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एकावार कर कर वे कह सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सया देश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी पौ लख हो लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एक राहे पत पवड़िया चढ़िया हुए अतीस सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नगरी पा

जोर जोर ना जीवन मरन नह जोर, जोर ना राज माल मन शोर, जोर ना सुती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटे संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्म।

ऐ जाय धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आख हो कर्म। केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बर में काड़त करिय है।

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद बनोद कोड आनंद सर्म खंड की वाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध

राजा धर्म दुआरी गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारी गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारी गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठी।

कामन तुदनो पंडित पंडर खीस जुग जुग वेदा नाली गामन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच्छ पाए आली गामन तुदनो रतन उपाए तेरे अठ सठ तीरथ नाली गामन तुदनो जोध महाबल सूरा गामन तुदनो खानी चारी गामन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सेई तुदनो गावन जो तुद पावन

ही सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन पपाई कर कर देखे कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह सहा पत साहिब नानक।

मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखां कियां वड्याईया, तुद मिन सिद्धी किनै ना पाईया, कर्म मिलै ना ही ठाक रहाईया।

कीती रात खसम बसार है ते कमजात नानक नावे बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करहु गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरन।

खाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन के बड़ भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरन संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवां काहे रे मन चितम है उद्दम जा आ

जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता हुए न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पहु करिया ऊडे ऊड़ आवै सह कोसा तिस पासे बचरे शरिया तिन कवन खलावै कवन चगावै मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमय अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्याव

तुझ जी। जन नानक तिन कुर्बाना, हर त्यावे है हर त्यावे है तुझ जी। से जन जुग मह सुखवासी, से मुकत भये जिन हर त्याया जी। तिन तूती जमती फासी, जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी। तिनका भउ सब गवासी, जिन सेविया मेरा हर जी। ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जी। जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी। परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी। हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करह हर पूजा जी। तप ताप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत सास्त जी। कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी। जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी। तुद जेवड अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू निश्चल करता सोई, तुदे आपे पावे सोई वरते जी। तू आपे करह सो होई, तुदे आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी। तुदे आपे सिरज सब गोई, जन

या सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला इत सरवर पहले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डुबी अले मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हों जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा।

ज्यों होवै साहिब स्यों मेल, कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानक से दे आवन।

सो कर राख वडाई तोय रहाउ विसे चसियां कड़ियां पहरा थिती वारी माह होआ

साकत हर रस साधना जानिया, इन अंतर होमै कंडाही, ज्यो ज्यो चलह चुभै दुख पावह, जमकाल सह सिर डंडाही, हर जन हर हर नाम सुमानी, दुख जन्म मरण भव खंडाही, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही, हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डाही, जन नानक नाम।

सिद्ध हुआ सिद्ध लाई रिद आखा आउ गुपत प्रगट हुए बैसा लोक राखे पाउ मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाउ सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाऊ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाऊ मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाउ श्री राग महला पहला।

लिखे बोलन बोलना लिखे खाना खाओ लिखे वाट चलाइया लिखे सुन वे खाओ लिखे सहा लवाई है पढ़े के पुछन जाओ बाबा माया रचना तो अंधे नाम वसारिया ना तिस एह ना ओह रहाओ जीवन मरना जाए कै इथे खाजे काल जिथे बह समझाई है।

जित बोले पत पाई है सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूर्ख मन अजान जो तिस भावे है से भले होर के कहन बखान तिन मत तिन पत तिन धन पल्ले जिन हिरदै रहिया समाए तिन का क्या सा लाहना।

जित सेवियै सुख पाईऐ तेरी दरगाह चलै मान। रहाउ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा नाम। सुनह वखाण है जेतड़ी हों तिन बलिहार जाऊं। ता मन खीवा जानिए जा महली पाए थाऊं। नाउ नीर चंगे आईया सत परमल तन।

जित खादै तन पीड़ी मन मह चलह वेकार रहाउ रत्ता पहनन मन रत्ता सोपेदी सत दान नीली स्याही कदा करनी पहरन पैर ध्यान कमर बंद सन।

तहाँ कर मंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार हुक्म सोई तुद भावसी होर आखण बहुत अपार नानक सच्चा पातशाह।

रहाउ पूज लग्या पीर आखिया सब मिले संसार नाउ सदाए अपना होवे सिद्ध सुमार जां पत लेखै ना पवै सभा पूज खुआर जिनको सतगुरु।

कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे परवाह मन रे सच मिल पहु जाए पै बिन निरपह क्यों थी है गुरमुख शब्द समाए रहाउ किता आखण आखी है आखण तोट ना होए।

लहै दरगाह झूठ खुआर रहाउ आप सुजान ना भुलै सच्चा वड किरसान पहला धरती साधकै सच नाम दे दान नौनिद उपजै नाम एक कर्म पवै निशान गुर कौ जान ना जाने क्या तिस चज अचार अंधलै नाम वसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान ना चुकई।

गुरमुख नाम सलाहिया हौ मैं निवरी पाही रहाउ। सुन सुन गंडन गंडिया लिख पढ़ बुझह पार। तृष्णा अहनिस अगली हौ मैं रोग विकार। ओह वे परवाहु अतोलवा गुरमुख कीमत सार। लख सियाणप जे करी लख सियों प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया।

हट गए नाही सहसा सोग। गुरमुख जिस हर मन वसै तिस मेले गुर संयोग। काया कामन जे करी भोगे भोगण हार। इस सियो नेहो ना की जई जो दिसै चलन हार। गुरमुख रवह सुहागणी सो प्रभ सेज पतार। चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए। अंतर कमल परगासिया अमृत भरिया अगाए। नानक सतगुर मीत कर सच पाव है दरगाह जाए। श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया। गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाईए। तुलिए पूरे तोल कीमत किने ना पाईए। रिद मानक मोल अमोल पाई रे हर हीरा गुर माहे। सत संगत सत गुर पाईए अहनस शब्द सलाहे। रहाओ सच वखर धन रास लै पाईए गुर परगास। ज्यों अगन मरै जल पाए त्यों तृष्णा दासन दास। जम जंदार ना लगई त्यों भौजल तरै तरास। गुरमुख कूड़ ना पावई सच रते सच पाए। साकत सच ना पाए।

सुख होए, खोटे वणज बणजिए मन तन खोटा होए, ठाही फाथे मिर्ग ज्यो दुख घणो नेतरोए, खोटे पोते ना पवह तिन हर गुर दर्स ना होए, खोटे जात ना पत है खोट ना सी जस कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए, नानक मन समझाई है गुर कै शब्द साला, राम नाम रंग रतिया पार ना भरम तिना, हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माह, श्री राग महला पहला कर दूजा, तन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार, पबन केरे पत ज्यो तल टुल जुम्मन हार, रंग मान लै प्यारिया जा जौबन नौ हुला, दिन थोरड़े थके।

आपे रसिया आप रस आपे रावण हार आपे होवे चोलड़ा आपे सेज पतार रंग रत्ता मेरा साहिब राव रहिया भरपूर रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहु बिदरंगला सखिए मेरा लाल नेत्र वै सुहागनी देख हमारा हाल प्रण

तीज कर्मा करो सलल अपाव सारिंग पानी मन किरसान हर हृदय जमाए लै इउ पावस पद निर्वाणी काहे गर्भस मूड़े माया।

आपे वेखै सुने आपे ही कुदरत करे जहानू जो तिस भावै नानका हुक्म सोई परवानू श्री राग महला पहला घर चौथा कीता कहा करे मन मान देवन हारे कै हाथ दान भावै दे ना दे सोए कीतै कै कहे क्या होए आपे सच भावै तिस सच अंधा कच्चा कच न कच रहाओ जाके रुख बिरख आराओ जेही तात तेहा तिन नाओ फुल पाओ फल लिखिया पाए आप बीज आपे ही खाए कच्ची कंद कच्चा विच राज

अपना एक मन एक चित पाए, सतगुरु मन कामना तीर्थ है, जिसनो दे बुझाए, मन चिंदिया वर पावना, जो इच्छा सो फल पाए, नाउ त्याई नाउ

तब मह एक वर्त दा एको रहिया समाय जिसनो आप दयाल हुई सो गुरमुख नाम समाय पढ़ पढ़ पंडित ज्योत की वाद करह विचार मत बुद्ध भवी ना बुझई अंतर लोभ विकार लख 84 भ्रम दे भ्रम भ्रम होए खवार पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार सत

होए ज्योति ज्योत समाय जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आय मन भुखा भुखा मत करह मत तू करह पुकार लख चौरासी जिन सिरी सब सह दे आधार।

ते निर्मले हौ सद बलिहार है जास हृदय जिनके हर वसै इत घट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याए तुर मस्तक जिनको लिखिया ते गुरमुख रहे लिव लाए रहाओ हर संत हो देखो नदर कर निकट वसै भरपूर गुरमत जिन्नी पछाणिया से देख है सदा हदूर जिन गुण तिन सद मन वसै औगणवंतिया दूर मनमुख गुण तै बाहरे बिन नावै मरदे झूर जिन शब्द गुरु सुन मन्या तिन मन त्याया हर सोए अन दिन भगती रत्या मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंभ का बिन सजाए दुख रोए जिस अंदर नाम परगास है ओह सदा सदा थिर होए एहो जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम ना चेतै लिव लाए पग खिसै रहना नहीं आगे ठौर ना पाए ओह वेला हाथ ना आवई अंत गया पछताए जिस नदर करे सो उभरै हर सीती लिव लाए देखा देखी सब करे मनमुख बूझ ना पाए जिन गुरमुख हिरदा सुध है सेव पई तिन थाए हर गुण गावहै हर नित पढ़है

समाए तिनका जन्म सफल है जो चल है सतगुरु पाई कुल उधार है अपना धन जनेंदी माए हर हर नाम ते आई है जिसनो कृपा करे रजाए जिन्नी गुरमुख नाम ते आया विचो हो आप गवाए वो अंदर हो बाहर हो निर्मले सच्चे सच समाए नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर त्याय श्री राग महला तीजा हर भगता हर तन रास है गुरपूश कर है वापार हर नाम सलाहन सदा सदा वखर हर नाम आधार गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया हर भगता अतुट भंडार भाई रे इस मन को समझाए हे मन आलस क्या करह गुरमुख नाम त्याय रहाओ हर भगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार पाखंड भगत ना होवे दुबदा बोल खुआर सो जन रलाया ना रले जिस अंतर विवेक विचार सो सेवक हर आखी है जो हर राख है उरतार मन तन सौंपे आगे धरे हो मैं विचो मार तन गुरमुख सो